नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 जून सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत कर रहे हैं।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध है। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी समय सुन सकते हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमारस्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिड

0: सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, दीपक कभी बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोलें, बस अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देगा। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुने भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारा अगला कार्यक्रम 6:35 से श्री रामचरितमानस गान। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला गजतत वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति चारूबाला खरे की। पुराने फिल्मी गीत सुनिएगा भोले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुबह 7 बजे से। हमें राही प्यार के ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे सुबह 7:30 से।

त्रिवेणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 8:15 पर और दिन में 8 बजे, दिन में 2 बजे। 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम का प्रसारण होगा। सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार वसंत देसाई पर। 10 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी, कहानी अंजलि, लेखक अरगवान अभी और संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान की।

11 बजे आप सुन सकते हैं मैटिनी शो, 12 बजे समाचार, 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल, सुरीला सफर ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1 बजे। इसमें हम शामिल करते हैं श्रोताओं की टिप्पणियां। त्रिवेणी कार्यक्रम 2 बजे से, 2:30 पर कार्यक्रम सदाबहार नगमें।

श्रोताओं के पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत का प्रसारण होगा दिन में 3 बजे से। दिन में 3 बजे नाट्य तरंग कार्यक्रम में सुनिएगा नाटक अभिशप्त गांधार, लेखक डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवाएंगे कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से अमरकांत दुबे की बातचीत। छाया गीत कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण होगा शाम 5 बजे से। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:30 पर। संध्या रंजन ये कार्यक्रम शाम 6:35 पर। शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला गजतत्व वाद्य कलाकार डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति चारुबाला खरेगी।

और लेखिका नाटककार सई पराजपे द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7 बजे। प्रस्तुति तेजश्री कामले की। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा प्रोग्राम जिज्ञासा। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनो कहानी होगी, स्वामिनी का भाग 2। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी है, वाचन स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 8:15 से। आपके लिए ये कार्यक्रम रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार वसंत देसाई पर। छाया गीत कार्यक्रम का प्रसारण समय आपको याद दिला दें, रात 10:00। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 10:30 पर। जरोखा में ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरितमानस गान भाग 218। प्रसंग है अयोध्या कांड।

भरत के आचरण तथा विचारों से मुनि वशिष्ठ अत्यंत प्रभावित थे। उनकी अंतरात्मा को भरत बहुत भले लगे थे। अतः चित्रकूट की सभा में एक बार फिर वशिष्ठ जी ने श्री राम से भरत की विनती सुन लेने और उसके बाद साधुमत, लोकमत, राजनीति तथा शास्त्रों की व्यवस्था के अनुसार कार्य करने का परामर्श दिया। भरत धर्म धुरंधर तथा तन मन और कर्म से राम को समर्पित थे। श्री राम को ये ज्ञान था, इसलिए उन्होंने मुनि की सौगंध तथा मृत पिता के चरणों की दुहाई देते हुए कहा, विश्व में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। छोटे भाई के मुंह पर उसकी बड़ाई करते राम को संकोच होता है, किंतु उन्होंने स्वीकार किया कि भरत जो कहें वही करने में भलाई है। तब वशिष्ठ जी ने भरत को संकोच त्याग कर अपने हृदय की बात कहने का आदेश दिया, किंतु गुरुजन को अपने अनुकूल पाकर भी भरत जी सहसा कुछ न कह सके और सोच में पड़ गए। बचपन से उन्होंने श्री राम के प्रेम की रीति देखी है, उनसे उन्हें इतना दुलार मिला जो कदाचित विधाता को सहन नहीं हुआ और उसने माता को माध्यम बनाकर स्वामी और सेवक के बीच अंतर डाल दिया।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण आज के तहत जानते हैं अपने केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में।

शाम को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी हम आपको थोड़ी जानकारी दे दें। शाम 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी खेती बारी। हमारा ये कार्यक्रम होगा शाम 5:32 पर।

नवचेतना कैरियर सलाह पर आधारित हमारा कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 7:45 पर।

शाम को प्रसारित होने वाले फिल्म संगीत के कार्यक्रमों के बारे में भी हम आपको थोड़ी जानकारी दे दें। 6:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। जानकारी कार्यक्रम होगा 7:15 पर। ऑल टाइम हिट्स हर रोज की तरह आज भी आप सुनेंगे रात्रि 7:30 पर।

0: विशेष श्रृंखला के तहत वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण इस विषय पर कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:10 पर। फिल्म संगीत के कुछ और कार्यक्रमों के बारे में हम आपको जानकारी दे
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी।

जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

हम आपको बता दें कि अपनी ट्यून किया है FM हजारीबाग और इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक गीतों का हमारा कार्यक्रम लोक रंग। आज आप सुन रहे हैं सियाराम पासवान, उदय पासवान और सत्येंद्र मिश्र को।

0: श्रोता साथी, ऐसी खूबसूरत लोकगीत के साथ ही लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम लोकरंग यहीं समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे सियाराम पासवान, उदय पासवान और सत्येंद्र मिश्र को FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, जो पेश है सामाजिक वार्ता का हमारा कार्यक्रम प्रसंग। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं स्नेहा की वार्ता, आधुनिक युग में रेडियो की प्रासंगिकता।
1: आधुनिक युग में रेडियो की प्रासंगिकता। टेलीविजन के आने के पहले तक रेडियो जनसंचार का अच्छा माध्यम माना जाता था, और जब टेलीविजन का दौर आया तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रेडियो की आवाज दब कर रह जाएगी, लेकिन यह अपनी विशेषताओं के कारण लगातार जन जन तक सूचना

शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने का काम बखूबी कर रहा है। आज भी रेडियो एक प्रासंगिक माध्यम के रूप में हमारे समक्ष मौजूद है। शहरों में निश्चित रूप से लोग टेलीविजन की ओर आकर्षित हुए हैं, लेकिन कस्बों और गांवों में अभी भी रेडियो की पहुंच सबसे ज्यादा है। गांव में अभी भी रेडियो की पहुंच इतनी ज्यादा क्यों है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है और हर जगह पर बिजली अभी भी नहीं पहुंची है। रेडियो की यह खासियत है कि उसे चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं होती है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि अंधकार के बीच में रेडियो एक प्रकाश का काम करता है। जहां सड़क नहीं, बिजली नहीं, यातायात के साधन मौजूद नहीं है, वहां भी रेडियो की उपस्थिति है। रेडियो श्रोताओं को साथ में लेकर चलता है और श्रव्य माध्यम होने के नाते वो उनकी कल्पना शक्ति को भी समृद्ध करता है। सस्ता, सुलभ और सुविधाजनक माध्यम होने के कारण आज भी यह सभी जनसंचार माध्यमों में अग्रणी है। जिनके पास अक्षर ज्ञान नहीं है, वे लोग अखबार नहीं पढ़ सकते हैं, पर रेडियो सुन सकते हैं। जो लोग अंधे हैं और न अखबार पढ़ सकते हैं और न ही टेलीविजन देख सकते हैं, रेडियो उनका साथी भी है और पथ प्रदर्शक भी। रेडियो न केवल जनता का मनोरंजन करता है, बल्कि उन्हें जागरूक भी करता है। जैसा कि हम सब देखते हैं कि सरकार की जो योजनाएं होती हैं, उसके विषय में रेडियो पर टेलीविजन के मुकाबले ज्यादा जागरूक किया जाता है। रेडियो आज भी सूचना, शिक्षा और जनमत निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। दूर दराज के इलाकों में लोगों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु सामुदायिक रेडियो की स्थापना की जा रही है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए सामुदायिक रेडियो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सामुदायिक रेडियो में ज्यादातर कार्यक्रम उनके खुद के स्थानीय बोली में होता है। गांव के लोगों पर उसका ज्यादा असर होता है। सामुदायिक रेडियो की और क्या खासियत है? सामुदायिक रेडियो लोगों के लिए, लोगों का, लोगों के द्वारा बना एक सशक्त माध्यम है, जो देश के हर ग्रामीण को अपनी बात कहने की पूरी आजादी देता है। विश्व में 95% जनसंख्या तक रेडियो की पहुंच है, जिसमें सामुदायिक रेडियो दूर दराज के समुदायों और छोटे समूहों तक कम लागत में पहुंचने वाला संचार का सबसे आसान साधन है। सबसे ज्यादा सामुदायिक रेडियो स्टेशन तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में है। कहीं ये सामुदायिक रेडियो आदिवासियों की आवाज बन रहा है, तो कहीं पहाड़ी समुदायों की आवाज बन रहा है। सामुदायिक रेडियो केंद्रों द्वारा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक विकास, संस्कृति, लोकगीत कार्यक्रमों की प्रसारण किया जाता है। यहाँ काम करने वाली टीम स्थानीय होती है, जिसे समय समय पर कुछ संस्थाएं ट्रेनिंग देती रहती हैं। ये टीम ज्यादातर सामुदायिक स्तर पर वॉलंटियर का काम करती हैं। सामुदायिक रेडियो के खुलने से ग्रामीण क्षेत्र में लोग रेडियो ज्यादा खरीदने लगे हैं। स्थानीय स्तर पर भैंस खो जाना, सर्टिफिकेट खो जाना, बच्चा खो जाना जैसी सूचनाओं की जानकारी प्रसारित की जाती है। कई बार सामुदायिक की खोई हुई चीजें उन्हें रेडियो के द्वारा आसानी से मिल जाती हैं। भारत सरकार ने 2006 में सामुदायिक रेडियो दिशा निर्देश की अधिसूचना जारी की। इस संगठन में ये कहा गया कि गैर सरकारी संगठन, नागरिक, सामाजिक संगठन, शिक्षा संस्थान को सामुदायिक रेडियो स्टेशन संचालित करने की अनुमति देता है। वर्तमान समय में पूरे देश में 200 से ज्यादा सामुदायिक रेडियो चल रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान सामुदायिक रेडियो की क्या भूमिका रही? कोरोना महामारी के संक्रमण से बचने, अफवाहों से सचेत रहने व आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए देश भर के सामुदायिक रेडियो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना जैसे भयावह बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए जब केंद्र सरकार द्वारा 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा से ग्रामीण समुदायों में खलबली मच गई थी, क्योंकि ग्रामीण समुदाय इस प्रकार के अप्रत्याशित कदम के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में सामुदायिक रेडियो ग्रामीण समुदायों की मदद के लिए आगे आए और उनकी समस्याओं, जरूरतों को शासन प्रशासन तक पहुंचाई, ताकि जरूरतमंदों को राशन एवं अन्य रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें पहुंचाई जा सके। लॉकडाउन के दौरान उन्हें संक्रमण एवं अफवाहों से बचने के लिए सचेत करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कई प्रकार शिक्षाप्रद कार्यक्रमों के साथ ही
लोक संगीत एवं लोक गाथाओं का प्रसारण भी किया गया। विपदा के समय में भी ज्यादातर सामुदायिक रेडियो स्टेशन सीमित संसाधनों के बावजूद समुदायों की सेवा में निरंतर अपनी भूमिका निभाते आ रहे हैं।

0: शुरू किया है और कई जगह पढ़ाई शुरू हो चुकी है। रेडियो अपने शुरुआती दौर से ही बच्चों को रेडियो स्कूल और रेडियो चले हम जैसे कार्यक्रमों के जरिए अंग्रेजी की बुनियादी शिक्षा देने के साथ ही हर बच्चे को अनिवार्य शिक्षा देने पर बल देता आ रहा है। रेडियो समुदाय के हर वर्ग, मसलन बच्चों, महिलाओं, किसानों, किशोरों तथा वृद्ध लोगों से विभिन्न कार्यक्रमों जरिए जुड़ा है। रेडियो के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं, पंचायत राज, ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर स्थानीय भाषा में कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। अतः अगर हम कहें, रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जो देश के लगभग सभी लोगों के पास प्रभावी कार्यक्रम लाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। रेडियो मानव की उंगलियों द्वारा संचालित कठपुतली हो, क्योंकि रेडियो का बटन थोड़ा सा घुमाकर कोई भी व्यक्ति एक कोने से दूसरे कोने जा सकता है। अच्छा, ये सब तो हो गई रेडियो की बातें, पर क्या आप जानते हैं कि भारत में रेडियो कब और किसके द्वारा आरंभ किया गया? भारत में 23 जुलाई 1927 को प्रायोगिक तौर पर प्रसारण शुरू किया गया। उस समय की भारत सरकार एवं इंडियन ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड के बीच समझौता के तहत रेडियो प्रसारण प्रारंभ हुआ। यह कंपनी 1930 में निस्तारण में चली गई, तो इसका राष्ट्रीयकरण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रखा गया। आजादी के बाद 1956-57 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो AIR या आकाशवाणी रखा गया। जहां तक आकाशवाणी का सवाल है, आजादी के समय 1947 में इसके केवल 6 केंद्र एवं 18 ट्रांसमीटरों का केंद्र था तथा इसकी पहुंच केवल 11% लोगों तक थी। आज आकाशवाणी में 231 केंद्र तथा 373 ट्रांसमीटर हैं तथा इसकी पहुंच 99% लोगों तक है। भारत जैसे बहुभाषी बहुसांस्कृतिक देश में आकाशवाणी से 24 भाषाओं में इसकी घरेलू सेवा में प्रसारण होता है। आकाशवाणी मीडियम वेव, शॉर्ट वेव एवं FM के माध्यम से प्रसारण सेवा प्रदान करती है। एक समय था जब रेडियो ही संचार का प्रमुख साधन था, लेकिन आज जमाना बदल गया है। धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक बैठे व्यक्ति सतत एक दूसरे के संपर्क में रहता है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी घटना पल भर में सभी जगह प्रसारित हो जाती है। तेज गति से चल रहे इस कालखंड में रेडियो की बात बड़ी असहज लगती होगी, लेकिन यह सच है कि किसी जमाने में रेडियो की अपनी अलग शान थी। रेडियो रखना, रेडियो सुनना, रेडियो के कार्यक्रमों में भाग लेना गौरव की बात होती थी। टेलीविजन के आने के बाद रेडियो श्रोताओं में कमी आई है, लेकिन FM के आने के बाद पुनः रेडियो के दिन लौट आए हैं। आजादी के बाद रेडियो का इतिहास सरकारी ही रहा है। भारत में रेडियो सरकारी नियंत्रण में ही रहा था। आम आदमी को रेडियो चलाने की अनुमति हेतु अनेक क्षेत्रों में दबाव आया। सन 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, रेडियो तरंगों पर सरकार का एकाधिकार नहीं है। सन 2002 में NDA सरकार ने शिक्षण संस्थानों को कैंपस रेडियो स्टेशन खोलने की अनुमति दी। उसके बाद 2006 में शासन ने स्वयंसेवी संस्थानों को रेडियो स्टेशन चलाने की अनुमति दी, परंतु इन रेडियो स्टेशनों से समाचार या समसामयिक विषयों पर चर्चा के प्रसारण पर पाबंदी है।
1: अभी आप सुन रहे थे स्नेहा की वार्ता, आधुनिक युग में रेडियो की प्रासंगिकता। इसी के साथ ही सामाजिक वार्ता का हमारा कार्यक्रम प्रसंग यहीं समाप्त होता है। FM 102.1 MHz पर हवा आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, लीजिए पेश है हमारा कार्यक्रम गीत संगीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

हम आपको बता दें कि अपने ट्यून की एफएम हजारीबाग और इस वक्त आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी एल्बम पर आधारित हमारा कार्यक्रम गीत संगीत। आज आप सुन रहे हैं आशा भोसले, पंकज उदास और साथियों को।

0: पंकज उदास के गाए इसी खूबसूरत से गजल के साथ हैं। गीत संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग के अंदर से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:59 हुए हैं और कुछ ही पलों में हम आपको शामिल करेंगे अपने दिल्ली केंद्र के प्रसारण में, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज, और इसके तुरंत बाद 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचार अपने रांची केंद्र से। तो समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: June 16-18
2: और याद रखिए एंट्री बिल्कुल फ्री है।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा
3: खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। DRDO ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक

0: मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
3: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर को भी बढ़ाया स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड लेक्चरर तालित मिजेन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
4: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
6: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं, बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफ्रीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
7: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज की अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमरीका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमरीकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 6-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with U.S. Secretary of State Marco Rubio over U.S. strikes on oil ship that killed 3 Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it opened to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's singles semi-finals of Australia Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead in ongoing match against Paraguay in Group D at Los Angeles. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be arriving in Nice, France this evening, embarking on a two-nation European tour spanning France and Slovakia. This is the Prime Minister's 7th official visit to France since 2014 and carries special diplomatic weight. Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron are set to hold their first bilateral summit since the elevation of India-France ties to a special global strategic partnership earlier this year. The Prime Minister will also participate in the G7 summit in Ivan, reaffirming India's standing as an indispensable voice of the Global South on the world stage. Our correspondent joins us now from Nice, France.
8: On arrival this evening, Prime Minister Modi will proceed to his hotel, where he will attend a community reception bringing together members of the Indian diaspora from across the south of France. The engagements on 14th of June opened on a note of innovation and ambition. Prime Minister Modi, alongside President Macron, will inaugurate Bharat Innovates, India's flagship innovation showcase at the Palais des Expositions de Nice. More than 120 Indian startups and companies will come together with leading investors and business leaders from France and across the world, spotlighting India as a global destination for deep tech, artificial intelligence and entrepreneurship. Thereafter, the two leaders will proceed to the historic Villa Kerglos for their bilateral summit, where defense, space, civil nuclear energy, technology and people-to-people ties are expected to feature prominently on the agenda. India and France share over 25 years of strategic partnership with deep cooperation in defense, space and a fast-growing economic relationship with bilateral trade crossing $15.82 billion in 2025-26. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
6: After concluding his engagements in Nice, the Prime Minister will visit Slovak Republic from 14 to 16 June. Our correspondent, Smithy M. Paluruthi from Bratislava, has filed this report.
9: The Slovak capital, Bratislava, is all set for the maiden visit of the Indian Prime Minister. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the Slovak Prime Minister Fico during the visit and explore new avenues of cooperation. The Prime Minister will also meet President Pellegrini during the visit. The Prime Minister's state visit assumes greater significance in view of the continuous increase in bilateral trade, which crossed $1 billion USD in 2024 and reached $1.8 billion USD last year. The visit will further reinforce India's commitment to strengthening cooperation with European Union member states. Midi M. Paluruthi, Akashvani News from Bratislava in Slovak Republic.
6: Defence Minister Rajnath Singh today congratulated Defence Research and Development Organisation DRDO for successfully conducting 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layered defence against long-range ballistic missiles and anti-ship capability at medium range. In a social media post, the minister said that these tests have put India in elite group of nations having ballistics missile defence capabilities to engage ballistic missiles up to intercontinental ballistic missile. Mr. Singh said that DRDO has successfully demonstrated multiple crucial technologies bolstering nations' defense capabilities against different types of enemy threats. The passing out parade is being held today at the Indian Military Academy IMA in Dehradun, the capital of Uttarakhand. President Draupadi Murmu is attending the occasion and has reviewed the parade. This year's passing out parade is historic, as for the first time, women cadets are passing out alongside gentlemen cadets from the academy. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द लास्ट 12 इयर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड द मोदी गवर्नमेंट कैरिड आउट मेनी फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स फॉर द वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर फार्मर्स वुमेन एंड यूथ आकाशवाणी न्यूज ब्रिंग्स यू अ स्पेशल फीचर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के Today, we focus on the steps taken by the government to strengthen and celebrate the nation's cultural legacy.
4: Over the last 12 years, India's cultural journey has flourished and is rooted in tradition and open to the world. Government has undertaken numerous initiatives, both nationally and internationally, that have instilled a deep sense of pride in the country's cultural heritage among its people. The making of Kashi Vishwanath Corridor, Mahakal Lok Project, redevelopment of Maa Kamakhya Temple, reconstruction of Juna Somnath Temple, and establishment of Ram Temple in Ayodhya are the major highlights of the Modi government. Through spiritual circuits and modern pilgrim amenities, India's civilization pride is being seamlessly revived. Among the key initiatives driving this transformation have been the Museum Grant Scheme and the Cultural Function and Production Grant Scheme. These schemes have helped preserve India's civilizational heritage while simultaneously encouraging cultural creativity and grassroots participation. Under the Museum Grant Scheme, the nation's cultural infrastructure has been upgraded by establishing 21 new museums and modernizing 23 existing ones. Over the years, the scheme has emerged as a key support system in Nagaland. Talking to Akashwani News, Mr. Talit Jain, guide lecturer with the Nagaland's Department of Art and Culture, highlighted the benefits of the scheme in the state.
10: 2016-17 Museum Grant established, we upgraded a new annexe, and there we have set up Games and Sports Gallery and then the Textile Gallery. Through the Museum Grant Scheme, the one thing most impactful thing we can say is it gave us some opportunity to build new infrastructure to preserve our traditions and culture.
4: The Cultural Function and Production Grant have also emerged as one of the Cultural Ministry's key instrument for supporting cultural activities across the country. The Manipur Dramatic Union, the oldest proscenium theatre organization in Manipur, is gearing up to launch a series of new theatrical production following a fresh infusion of financial aid. Talking to Akashwani News, Secretary of Dramatic Union Sorokhai Bam Sarat Chandra expressed gratitude to the government for sustaining regional arts through robust financial frameworks.
11: Since the inception of this organization, we have received from the Ministry of Culture so many production grants. Under this cultural production grant, under the new ministry, we have received this year, we have received 125 lakhs. We are very thankful to the government of India, particularly this Ministry of Culture.
4: India has taken big step to protect its culture and share it with the world. Ancient temples have been restored, holy places improved, and old traditions brought back to life. At the same time, new roads, clean facilities, and better services have made it easier for people to visit these places. People around the world are showing interest in India's way of life. Today, India's rich culture is not only shining at home, but also spreading light across the world. Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
6: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the morning news. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and lodged a strong protest over the attacks by the U.S. Navy in the Gulf that killed three Indian mariners. In a post on X, Dr. Jaishankar said such lethal actions against commercial shipping are not justified. The conversation comes days after three Indian crew members were killed in a U.S. strike on the Palau flag tanker MT Setebello off the coast of Oman, triggering a sharp response from New Delhi. India and Bangladesh have reaffirmed their commitment to maintaining peace, tranquility and stability along the India-Bangladesh border. The 57th Director General Level Border Coordination Conference between the Border Security Force and Border Guard Bangladesh was held at BSF headquarters in New Delhi from 8th to 11th June. The conference provided an important platform to review the prevailing border situation and discuss issues of mutual concern relating to border security and border management. The Trump administration said it is prepared to accept a civilian nuclear energy program in Iran as part of a broader nuclear agreement, provided Tehran dismantles the infrastructure that could enable it to build a nuclear weapon. The clarification came as a senior administration official outlined details of a proposed U.S.-Iran nuclear agreement yesterday that officials said could be signed within days. The official drew a clear distinction between civilian nuclear power generation and nuclear weapons capabilities, arguing that Washington's objective is not to eliminate Iran's nuclear energy sector, but to prevent Tehran from retaining

0: इस बीच एनटीए ने परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। आयुष मंत्रालय और हेबल्ट की ओर से कल एक ऐतिहासिक ऑनलाइन योगाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। देश विदेश के लाखों लोग एक साथ ऑनलाइन योगाभ्यास कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने देशवासियों से इस मुहिम का हिस्सा बनने की अपील की है। नागरिक टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड से जुड़ सकते हैं।
1: आयुष मंत्रालय, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था और हैबिट के साथ मिलकर हम एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें देश और दुनिया भर के लोग एक साथ ऑनलाइन योगाभ्यास करेंगे। मैं सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वे इस ऐतिहासिक प्रयास का हिस्सा बने, योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए और एक स्वस्थ विश्व का निर्माण करें।
0: राज्य में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। दो सीटों के लिए हो रहे इस त्रिकोणीय मुकाबले में झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और भाजपा समर्थक परिमल नाथवानी मैदान में हैं। झामुमो और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उनके सभी विधायक एकजुट हैं, जिससे वे दोनों सीटें आसानी से जीत लेंगे।
2: कई विधायकों में बहुत ही नाराजगी है और उन लोगों ने मन बना लिया है कि किसी भी तरह से ऐसे लोगों को हराना होगा। तो आप देखिएगा, 10 से 12 लोग भारतीय जनता पार्टी के इधर उधर करेंगे, क्योंकि वो व्यथित है।
3: 34 के 34 गठबंधन के साथ हैं। अपने प्रत्याशियों को जिताने के बाद जो शेष बचेगा उसकी भी गारंटी।
0: इधर भाजपा नेताओं का दावा है कि उनके पास आवश्यक आंकड़ों से अधिक विधायकों का समर्थन है और वे दूसरी सीट पर जीत दर्ज करेंगे।
4: जो भी यहाँ पर विधायक इनके हैं, जिनको करप्शन का शेयर नहीं मिल रहा है, वो अंदर ही अंदर नाराज है और एक बिकाऊ विधायक की तरह राज्यसभा के बाजार में बिकने को तैयार है। और हम इसलिए दावे के साथ कह रहे हैं कि निश्चित तौर से भाजपा के उम्मीदवार की जीत होगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे।
0: नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित एक दिवसीय मीडिया और सोशल मीडिया सम्मेलन में देश भर से 350 से अधिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें झारखंड से अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार सहित 16 अधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन में भ्रामक सूचनाओं से निपटने, चुनावी साक्षरता और निर्वाचन रणनीतियों पर गहन चर्चा की गई। रांची के सभी मतदान केंद्रों पर आज से 2 दिवसीय विशेष मतदाता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत लगाए गए इन कैंपों में नागरिक अपना नाम जोड़ और सुधार सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी मतदाताओं से बूथों पर जाकर अपने नाम जांचने की अपील की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश की जेलों को हाईटेक बनाने के लिए 16,86,00,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके तहत गढ़वा के नगर उटारी और गुमला कारागार में 531 आधुनिक सीसीटीवी कैमरे, स्कैनर और मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे। इस अत्याधुनिक तकनीक से जेलों की सुरक्षा व निगरानी व्यवस्था बेहद मजबूत होगी। रांची में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। पिछले 10 दिनों के भीतर शहर में 37,000 से अधिक ऑनलाइन और ऑफलाइन चालान काटे गए हैं। ट्रैफिक एसपी राकेश कुमार सिंह ने पुलिस से वाहन चालकों से हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और गति सीमा का पालन करने की सख्त अपील की है।
5: 1 जून से 10 जून तक 34,000 से अधिक गाड़ियों का चालान काटा हुआ है और ज्यादातर जो उल्लंघन हो रहा है

0: रोड पे जहां तहां पार्किंग कर देना जिससे ट्रैफिक बाधित होना, विदाउट हेलमेट ओवर स्पीडिंग ज्यादा देखने में आ रहा है। इसमें हमारा फोकस है कि लोगों के अंदर एक बिहेवियरल चेंज आए और एक ट्रैफिक सिविक सेंस रांची वासियों में डेवलप करने के उद्देश्य से हम लोग ये अभियान चला रहे हैं।
1: पश्चिम बंगाल सिविल सेवा परीक्षा के परीक्षार्थियों और यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे आज से रांची हावड़ा रांची परीक्षा स्पेशल ट्रेन चला रहा है। ट्रेन संख्या 0816 आज रात 9:30 बजे रांची से खुलकर सुबह 6:30 बजे हावड़ा पहुंचेगी, वहीं वापसी में यह कल रात हावड़ा से खुलेगी। संताल परगना के रास्ते झारखंड में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, जो अगले 72 घंटों में पूरे राज्य को कवर कर लेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार संताल सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। हालांकि इस वर्ष अलनीनो के प्रभाव के कारण राज्य में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना जताई गई है।
2: एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिफिशियंट रेनफॉल रहेगा और उसी की उम्मीद है, और पूर्वानुमान में भी सुना होगा कि इस साल थोड़ा सा ओवरऑल भारत के लिए भी मानसून थोड़ा सा डिफिशियंट रहने का चांसेस है और बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों को हर स्थिति के लिए तैयार रहने की भी जरूरत है।
1: झारखंड T20 लीग में आज 2 मुकाबले होंगे। पहले मैच में रांची टाइटंस के भिड़ंत कोयलांचल सुपर किंग्स से होगी, वहीं दूसरा मैच छोटा नागपुर रॉयल्स और संताल स्ट्राइकर्स के बीच खेला जाएगा। JSCA स्टेडियम में होने वाले इन मैचों को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है। झारखंड की पहलवान प्रियंका महतो और प्रशिक्षक राजीव यादव अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप ट्रायल के लिए रांची से सोनीपत रवाना हो गए हैं। राष्ट्रीय पदक विजेता और JSSPS की प्रियंका 14 जुलाई को दिल्ली में होने वाले ट्रायल में हिस्सा लेंगी। चयनित खिलाड़ी बाकू में होने वाले विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के झारखंड में दस्तक देने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मॉनसून वक्त पर, दस्तक बेअसर। प्रभात खबर के शब्द हैं, पंचायत सेवक रहते 20 साल पहले ली थी 500 रुपए की घूस, 80 साल की उम्र में जाएंगे जेल। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, मतदाता सूची में नामांकन जांचने के लिए बूथ पर जाएं लोग। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जिन शिक्षकों की नियुक्ति 2004 के पहले उन्हें भी पुरानी पेंशन का लाभ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कैबिनेट सचिव ने की 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाई। रांची के सभी मतदान केंद्रों पर आज से 2 दिवसीय विशेष कैंप SIR के तहत नाम जोड़ने और सुधारने का होगा कार्य। मुख्यमंत्री की मतदाताओं से बूथों पर जाने की अपील। राज्य सरकार ने राज्य की जेलों को हाईटेक बनाने के लिए दी प्रशासनिक स्वीकृति। गढ़वा और गुमला कारागार में आधुनिक CCTV कैमरे लगाने पर खर्च होंगे 16 करोड़ से अधिक। संताल परगना के रास्ते झारखंड में मॉनसून ने दी दस्तक। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में पूरे राज्य को कवर करने की जताई संभावना। और झारखंड T20 क्रिकेट लीग में आज खेले जाएंगे 2 रोमांचक मुकाबले। JSCA स्टेडियम में रांची टाइटंस और कोयलांचल सुपर किंग्स के बीच होगी पहली भिड़ंत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा

और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहां जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ के चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान है, चलते रहेंगे।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16-18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और 7

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ, 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ली?
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और?
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: आखिर की उम्फल में आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज को। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है 3 इडियट। शान और शांतनु मोहित्रा की खूबसूरत सी आवाज में आई सुनते हैं खूबसूरत सा गीत।

0: बजाय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोता साथियों, शान और शांतनु मोइत्रा को आप सुन रहे थे फिल्म थ्री इडियट में। इसी के साथ ही मॉर्निंग मेलोडी का आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम आपको शामिल करेंगे अपने विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों में।

ओ रोमियो फिल्म का गाना आप सुन रहे थे विशाल भारद्वाज की आवाज में। गुलजार की रचना थी, विशाल शेखर का संगीत था। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

हेलीकॉप्टर लीला फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। पालोमी की आवाज में स्वानंद किरकिरे के बोल थे, विशाल मिश्रा का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गाने और कुछ जानकारियां भी देते हैं। दोस्तों, आपने एक खबर सुनी ही होगी कि देश के पहले शूटिंग सुपरस्टार, दिग्गज शूटर और कोच जसपाल राणा ने पिछले दिनों इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने 1994 से लेकर 2000 तक राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में 13 स्वर्ण पदक सहित 23 पदक जीते थे। उत्तराखंड के टिहरी के चिलामू गांव में जन्मे यशपाल ने 12 बरस की अवस्था में ही पहला राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन महज 49 साल की उम्र में ही इस दुनिया से वे चले गए। वे एक सवाल छोड़ गए कि आखिर क्या वजह है कि युवाओं के दिल इतने कमजोर हो रहे हैं। क्या 49 साल उम्र होती है इस दुनिया से विदा होने की? अब तो लोगों की उम्र लंबी हो रही है। सवाल यह है कि युवाओं को दिल की बीमारी इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? क्या उनके खानपान में गड़बड़ी है? क्या उनके कामकाज का तरीका सही नहीं है? क्या वे जरूरत से ज्यादा तनाव ले रहे हैं? क्या वे तकनीक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं? क्या उन्हें काउंसलिंग की जरूरत है? आइए आज इन सवालों के हम जवाब खोजें और ध्यान रखें युवाओं के स्वास्थ्य का। आपके घर में जो बच्चे हैं, युवा हैं, देखें कि उनका खानपान कैसा है, उनके डाइट में क्या क्या चीजें शामिल है, कहीं फास्ट फूड का प्रयोग ज्यादा तो नहीं कर रहे। सुनते हैं ये गाना फिल्म हक, आकाश ओझा की आवाज है, कौशल किशोर के बोल हैं, विशाल मिश्रा का संगीत है।

0: हक फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आकाश ओझा की आवाज में कौशल किशोर के बोल थे, विशाल मिश्रा का संगीत था। और इससे पहले हमने जो गाना सुनवाया था वो था हेलीकॉप्टर लीला फिल्म का, पलोमी की आवाज थी, स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: थी धन्य जवान।

लापता लेडीज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। श्रेया घोषाल की आवाज में स्वानंद किरकिरे के बोल थे, राम संपत का संगीत था। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

पेश प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने के सुप्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई पर।

वसंत देसाई का जन्म महाराष्ट्र के जिला सावंतवाड़ी के गांव सोनावड़े में 1912 में हुआ। उनका बचपन सिंधुदुर्ग जिले के कस्बा कुडाल में बीता, जो कि महाराष्ट्र के कोंकण का जाना माना प्रदेश है। यहाँ वो अपने मामा के पास पढ़ाई लिखाई के हेतु भेजे गए थे। महाराष्ट्र के इस कोंकण प्रदेश में दशावतारी नाटकों का चलन प्राचीन काल से ही है। इसका प्रभाव वसंत देसाई के बाल मानस पर पड़ना लाजमी था। अनेक नाटकों में वे बतौर अभिनेता और गायक भाग लेने लगे थे। 1929 में अगली पढ़ाई के लिए वे कोल्हापुर पहुंचे। वहां पर इनका परिचय हुआ मराठी और हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ फिल्मकार चित्रपति शांताराम राजाराम वनकुदुरे, जी हाँ वी शांताराम जी से, जो प्रभात फिल्म कंपनी के सह संस्थापक थे।

वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी में काम करने लगे थे। ये बात सन 1930 के आसपास की है, जब वसंत देसाई ने फिल्म खूनी खंजर में अदाकारी भी की थी। ये एक मूक फिल्म थी दोस्तों। वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी की ही जगह में रहा करते। दिन भर काम करने के बाद रात्रि विश्राम से पहले वो श्रम परिहार हेतु हारमोनियम बजाया करते। एक बार वी शांताराम जी के कानों पर जब ये आवाज पड़ी तो वो चकित हुए और फिर उन्होंने संगीत विभाग में बतौर असिस्टेंट के रूप में वसंत देसाई को भेज दिया। महान संगीतकार गोविंद राव टेंबे के संगीत निर्देशन में प्रभात फिल्म कंपनी ने जो पहली बोलती फिल्म बनाई अयोध्या राजा, उसके वो सहायक संगीत निर्देशक थे। ये फिल्म हिंदी में अयोध्या का राजा नाम से बनी थी। जैसा कि वी शांताराम जी हमेशा किया करते थे, जो भी फिल्म मराठी में बनाते उसका हिंदी संस्करण भी हुआ करता। इस दौर के दिग्गज संगीतकार केशवराव भोले और मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर, इनके भी वसंत देसाई सहायक रहे थे। वी शांताराम की बतौर निर्देशक जो पहली फिल्म थी उसका नाम था पड़ोसी, और मराठी में जो

वसंत देसाई 1936 के आसपास मुंबई आ गए थे। यहाँ उन्होंने आंधड़ेंची शाळा, जो कि एसबी वर्तक लिखित नाटक था, इसका संगीत दिया था। एक और मराठी नाटक छाया को भी उन्होंने संगीत दिया था। वसंत देसाई को बतौर संगीतकार हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक मिला जेबीएच वाडिया की फिल्म शोभा में, साल था 1942। उन्हें सही मायनों में ख्याति प्राप्त हुई इसी साल यानी 1942 में आई फिल्म शकुंतला से। हुआ यूं कि वी शांताराम ने अक्टूबर 1942 में अपनी एक अलग फिल्म कंपनी बनाई, राजकमल स्टूडियोज। इसके बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी शकुंतला। शकुंतला का मुख्य किरदार किया था वी शांताराम की पत्नी जयश्री ने। चंद्रमोहन थे दुष्यंत और स्वयं वी शांताराम जी ने प्रियम वध की भूमिका निभाई थी। कुल 13 गाने थे इस फिल्म में और एक गाना फिल्म के संगीतकार वसंत देसाई ने भी गाया था। फिल्म काफी चली और वसंत देसाई को भी ख्याति प्राप्त हुई। वसंत देसाई का संगीत शास्त्रीय रागों की गरिमा लिए होता था और सहज मधुरता का रसीलापन लिए होता था। दोस्तों, वसंत देसाई मर्मज्ञ संगीतकार थे। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि कमर्शियल फिल्मों में उन्हें सफलता नहीं मिली। वो व्यावहारिक दुनिया से अनभिज्ञ थे, उनकी बारीकियों को वो नहीं समझते थे, इसलिए दुनियावी बातों की तरफ उनका ध्यान कम था। संगीत की बारीकियों की ओर उनका ध्यान मगर बहुत लगा हुआ होता था। उनकी नजर पैनी थी संगीत की तरफ। हीरे को जैसे जौहरी ही पहचानता है, वरिष्ठ संगीतकार अनिल विश्वास को इस हीरे की पहचान थी। विविध भारती के संगीत सरिता में जब वे पधारे थे तो आपको भी जरूर याद होगा, वसंत देसाई की सांगीतिक बुद्धि की सराहना करते हुए उन्होंने बताया था कि आशीर्वाद फिल्म का ये जो गाना है जो लता जी ने गाया था, कैसे उन्होंने शुद्ध निषाद पर समाप्त किया था। आइए सुनते हैं इसी गाने को।

वसंत देसाई का हर गाना अपनी मिसाल आप है। 1950 में आई फिल्म दहेज का ये गाना सुनिए। जयश्री ने ये गाना गाया था, जो कानों में शहद घोलता है।

से जग में छम छम दीपक चांद बनाओ। पानी में भी आग लगा दो पत्थर को पिघलाओ। मेरे दम से जग में छम छम दीपक चांद बनाओ।

दोस्तों, वसंत देसाई ने मराठी फिल्मों का भी संगीत निर्देशन किया है। कुल 20 फिल्में उन्होंने की हैं। हर फिल्म का संगीत सुमधुर बन पड़ा है।

उनकी कुछ बहुचर्चित मराठी फिल्में हैं श्यामची आई, मोलकरण, स्वयंवर झाले सीतेचे, लक्ष्मण रेखा, तूच माझी राणी, कांचन गंगा, छोटा जवान, और इसके अलावा संगीत नाटकों को भी उन्होंने संगीत दिया है। आंधळ्यांची शाळा, छाया और देव दीनाघरी धावला।

0: वसंत देसाई अत्युच्च कोटि के संगीतकार थे। पौराणिक और पारंपरिक फिल्मों का उनका संगीत अमर है।
1: सनन, सनन, सनन।

दोस्तों, किसी संगीत की महफिल में संगीत अपने परमोच्च आनंद लहरों से सबको मुग्ध कर रहा हो और अचानक सितार का तार टूट जाए या बिजली गुल हो जाए। ऐसा ही एक दिन अकस्मात वसंत देसाई के जीवन में आया और उनकी धड़कन का साज थम गया। दिन था 22 दिसंबर सन 1975। वसंत देसाई का संगीत अमर है, जिसके ध्वनि प्रकाश में जीवन के लंबे घने अंधेरे रास्ते भी उजाले से भरे हुए साफ दिखाई देंगे।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने संगीतकार वसंत देसाई पर। शोध स्वर और आलेख अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
2: FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

0: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं लीजिए पेश है प्रोग्राम हेलो हजारीबाग।
1: 10 9 8 7

0: देखो फिर आ गया।
1: हेलो हजारीबाग, प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा, जीवन की प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो।

हेलो, हजारीबाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सूरज, कीजिए अभिवादन स्वीकार। नमस्कार श्रोताओं, आंखों को जिंदगी से एक बहुत ही गहरा और भावनात्मक रिश्ता है। बिल्कुल, आंखों का जिंदगी से बहुत गहरा और भावनात्मक रिश्ता है। कहते हैं ना कि आंखें देखकर किसी के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। आंखों से ही हम दुनिया देखते हैं। जो चीज़ें हम देखते हैं उससे विचारों का भी जन्म होता है और वही विचार भावनाएं बन जाती है और हमारे अंतर्मन की भावनाएं हमारे संस्कार बनाती है। यानी आंखों का हमारे ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। आंखें हैं तो दुनिया है, इसकी खूबसूरती है, भावनाएं हैं, सपनों हैं, आंखों से बहुत कुछ है। आप सोच रहे होंगे कि आज आंखों की इतनी बातें क्यों। वास्तव में आज अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस है। यह आंखों की एक दुर्लभ बीमारी से जुड़ा हुआ है। इस पर और भी चर्चा करेंगे, और भी बातें करेंगे, इतिहास के पन्ने पलटेंगे, अखबार में जो खबरें छपी हैं उसे हम आपके साथ साझा करें, कुछ खूबसूरत गीत भी होंगे। तो इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं एक खूबसूरत से गीत के साथ।

श्रोताओं, हेलो, हजारीबाग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और थोड़ी चर्चा मौसम की कर लेते हैं। तो दिन में अधिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है और रात्रि तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। और साथ ही बादल भी छाए रहेंगे और बारिश की भी थोड़ी संभावना व्यक्त की गई है। तापमान में बहुत ज़्यादा फेरबदल की संभावना नहीं है। और इसके अलावा कहें शहर की गतिविधियों की बातचीत कर ले तो मौसम से संबंधित जो परेशानियां हैं उसको लेकर थोड़े लोग जागरूक हैं। और इसके अलावा दूसरे दैनिक जो गतिविधियां हैं वो सभी संचालित हैं। तो इसके अलावा अब हम वापस लौटते हैं उस जानकारी की ओर जिसमें हम थोड़ी चर्चा कर रहे थे आंखों के दुर्लभ बीमारी के बारे में। एल्बिनिज्म की चर्चा आपने जरूर सुनी होगी, एक दुर्लभ कहें या अनुवांशिक बीमारी है जो शरीर में मेलेनिन नामक एक पिगमेंट के कम होने के कारण, या कहे इसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो पाता है, जिसके कारण ये बीमारी होती है। और इसमें त्वचा, बालों और आंखों का जो प्राकृतिक रंग जो हमारा तय होता है ना, वो इसी से तय होता है। और इससे प्रभावित लोगों में जो लक्षण इसके दिखाई देते हैं उसमें बाल, त्वचा और आँखें जो हैं वो बहुत हल्के होते हैं। और इसके अलावा कहें कि सफ़ेद और गुलाबी भी इनकी आँखें नज़र आती हैं और इन्हें देखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। एल्बिनिज्म से जुड़े कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे त्वचा और बालों का रंग के साथ भी इसका संबंध है, अभी इसकी चर्चा हम कर ही रहे हैं। त्वचा आमतौर पर दूधिया सफ़ेद होती है। धूप में रहने पर त्वचा पर टेनिंग होने की वजह सीधे सनबर्न हो सकते हैं। और इसके दूसरे प्रभाव भी कहीं कहीं देखे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि आँख आयरिस यानी आँख का जो अंगेन हिस्सा होता है उसमें पिगमेंट की कमी होती है, जिसके कारण आँखें नीली, हल्की स्लेटी और यहाँ तक कि कभी कभी गुलाबी या लाल भी दिखाई देती है, खास करके जब रोशनी के परावर्तन होते हैं तब। और मेलेनिन आँखों की सामान्य बनावट के लिए ज़रूरी है और इसकी कमी से धुंधला दिखना, आँखों का अनावश्यक रूप से कहें हिलना, भेंगापन की जो शिकायत हम देखते हैं उसके पीछे भी इसकी कमी बताई जाती है। रोशनी के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता भी ऐसे लोगों में देखी जा सकती है, जिसे कह सकते हैं कि फोटोफोबिया का कारण भी यही है। यह बीमारी वास्तव में कोई संक्रमण है नहीं, यह जेनेटिक है, अनुवांशिक है और यह माता पिता से बच्चों में जीन के द्वारा ये स्थानांतरित होती है। यदि माता पिता दोनों में इस दोषपूर्ण जीन के वाहक हैं तब बच्चों में इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। और तो कुछ चीज़ों का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए, हालांकि वर्तमान में इसका कोई इलाज नहीं बताया जाता है। इसका प्रबंधन केवल बचाव है, लक्षणों को कम करने पर ही हमें ध्यान भी केंद्रित करना चाहिए, जिससे सबसे बड़ी बात है कि धूप से हमें बचाव करना चाहिए। मेलेनिन की कमी से त्वचा को सूरज की हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उससे सुरक्षा नहीं मिलती, जिससे स्किन कैंसर का खतरा अधिक होता है। बाहर निकलते समय हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले सनस्क्रीन का हमें प्रयोग करना चाहिए और टोपी पहनने से भी इसका लाभ होता है। शरीर को ढककर चलने का प्रयास हमें करना चाहिए। और इसके अलावा कहें कि आँखों के आप नियमित जांच जरूर कराएं। आँखों को धूप से बचाने के लिए बहुत तरह के चश्मा है, यूवी प्रोटेक्टेड चश्मा भी, सनग्लास भी बाजार में उपलब्ध है, और अपने डॉक्टर की सलाह पर इसे जरूर आपको पहनना चाहिए। कमज़ोर दृष्टि के लिए चश्मे या लेंस का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो कुछ कहते हैं कि इसका कोई सटीक अभी इलाज नहीं है, तो इसका जो प्रबंधन है उससे हम इससे कुछ हद तक इससे हम नियंत्रण पा सकते हैं। तो आँखें हैं, आँखों की खूबसूरती है, आँखें से हम दुनिया देखते हैं और आँखों से जो देखते हैं उससे भावनाएं और विचार और भावनाएं पैदा होती हैं और वही विचार और भावनाएं हमारे संस्कारों की जननी भी है। तो संस्कारों के साथ आँखों का भी गहरा संबंध है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत संगीत आप सभी के लिए पेश कर रहे हैं।

श्रोताओं, अखबार के पन्नों को पलटे इससे पहले अतीत के पन्नों को पलटते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि आज के तारीख के साथ, आज के दिन के साथ कौन सी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम आपकी चर्चा करते हैं, ये 1971 ईस्वी की यह घटना है, आज ही की तारीख से जुड़ी हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने वियतनाम युद्ध से जुड़ी अमरीकी रक्षा विभाग के बेहद गोपनीय पेंटागन पेपर को छापना शुरू किया था। और 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और जिसके साथ ही दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासन का अंत हो गया। ये प्रमुख ऐतिहासिक घटना थी। 1983 ईस्वी की चर्चा कर लेते हैं। अंतरिक्ष में 11 साल बिताने के बाद अमरीकी अंतरिक्ष यान पायनियर 10 हमारे सौर मंडल की सीमा पार कर गया था। और 1889 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लेखक अभिनव भारत के संस्थापक विनय दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था। और 1865 ईस्वी की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जब आयरलैंड में महान कवि नाटककार विलियम बटलर येट्स का जन्म हुआ था और जिन्हें 1923 ईस्वी में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 13 जून का दिन साथियों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई बहुत ही क्रांतिकारी घटना के साथ जुड़ा हुआ है। 13 जून को कहें कि सबसे प्रमुख घटना 1940 ईस्वी में महान भारतीय क्रांतिकारी उद्यम सिंह को लंदन में फांसी दी गई थी, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। तो ये थी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाक्रम।

श्रोताओं, अभी जो गीत आप सुन रहे थे काबुलीवाला फिल्म का, ये मशहूर गीतकार प्रेम धवन ने इस गीत की रचना की थी। 13 जून 1923 को प्रेम धवन जी का जन्म हुआ था अम्बाला में, और कहते हैं कि लाहौर में इन्होंने स्नातक शिक्षा प्राप्त की थी और कई बेहतरीन फिल्मों, खास करके देशभक्ति गीतों के लिए प्रेम धवन को विशेष रूप से याद किया जाता है। तो आज इनकी जयंती है, तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए एक पवित्र पापी फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। इस फिल्म के गीत और संगीत दोनों प्रेम धवन ने ही तैयार किए हैं।

पवित्रता भी एक बहुत ही खूबसूरत संवेदनशील मानवीय संवेदनशीलता की एक अद्भुत कहानी कहती है ये फिल्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अखबार के पन्नों की ओर नज़र टिकाते हैं और जानते हैं कि आज के तारीख के साथ कौन कौन सी खबरें महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी हुई, अखबार ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया। एक विनोद भावे से जुड़ी हुई एक खबर अखबार ने प्रकाशित की है, दैनिक भास्कर का हजारीबाग पन्ना है। विनोद भावे विश्वविद्यालय में स्नातक में नामांकन के लिए आज से लिए जाएंगे आवेदन, 30 जून तक अंतिम तिथि। अखबार लिखता है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित अंगीभूत और संबंध कॉलेजों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 जून से शुरू होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में नामांकन अधिसूचना जारी कर दी है। आवेदन चांसलर पोर्टल के माध्यम से 30 जून की शाम 6 बजे तक ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार फर्स्ट मेरिट लिस्ट 4 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। चयनित विद्यार्थियों के दस्तावेजों का ऑफलाइन सत्यापन संबंधित कॉलेजों में 4 से 11 जुलाई तक होगा। ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया 4 जुलाई से 13 जुलाई तक चलेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों को आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरने की सलाह दी है। गलत

जानकारी देने पर नामांकन रद्द किया जा सकता है, आवेदन या नामांकन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। और अखबार आगे लिखता है कि केवल मेजर विषय का करना होगा चयन, विद्यार्थियों को केवल मेजर विषय का चयन करना होगा, अन्य विषयों का आवंटन नामांकन के बाद संबंधित कॉलेज द्वारा किया जाएगा और मेगा सूची 12वीं या समकक्ष परीक्षा से प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। इससे झारखंड सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये निर्धारित किया गया। ये पूरी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे थे और कुछ एक और ही महत्वपूर्ण खबर है, बहुत ही ये बैनर हेडलाइन है ये भास्कर की, ये खास महल की 800 एकड़ भूमि पर बने अवैध इमारतों पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। हजारीबाग में खास महल के 800 एकड़ भूमि को खोज रही है जिला प्रशासन, कब्जा करने वालों में हड़कंप। और इसे बहुत ही विस्तार से अखबार ने ये खबर प्रकाशित किया है और एक फोटो स्टोरी अखबार ने लगाई है, बहुत ही खूबसूरत फोटो। और ये है आरा गांव में जर्जर लकड़ी की पुलिया ही 500 लोगों के आवागमन का सहारा है और बहुत ही खूबसूरत और एक देहाती रंग से रंगी हुई खूबसूरत तस्वीर के साथ अखबार ने इस खबर को प्रकाशित किया है। कुछ एक और खबरें हम ले लेते हैं। ये हिंदुस्तान का अपना राजकाज पन्ना है, इसमें यह खबर प्रकाशित है। श्रावणी मेला से संबंधित यह खबर है। झारखंड पर्यटन विकास निगम ने तैयार किया मेगा प्लान, एजेंसी के चयन की तैयारी शुरू। देवघर व बासुकीनाथ में 4400 बेड क्षमता की बनेगी टेंट सिटी। और थोड़ी इस खबर को हम पढ़ते हैं और वो हम आपको बता दें कि अखबार लिखता है कि श्रावणी मेला 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड यानी JTDC ने व्यापक कार्ययोजना बनाई है। इसके तहत देवघर और दुमका बासुकीनाथ आने वाले लाखों कांवरियों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक तकनीक से युक्त 4400 बेड की विशाल टेंट सिटी बनाई जाएगी। इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी एक एजेंसी को दी जाएगी और इसके चयन की प्रक्रिया के लिए JTDC द्वारा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया है और इस एजेंसी की को पूरी तैयारी 15 जुलाई तक करनी होगी। और बहुत ही विस्तार से अखबार ने इन खबरों को इस खबर से जुड़ी हुई दूसरी बातों को भी साझा किया है, किस तरह की सुविधाएं होगी इसकी भी चर्चा अखबार ने की है। और एक खबर हम लेते हैं, ये हिंदुस्तान की खबर है, ओपन जेलों पर 10 दिनों में मॉनिटरिंग कमेटी बनाए राज्य सरकार, ये हाईकोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद राज्य में ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूट ओपन जेल की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का गठन नहीं किए जाने और सुविधाओं की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार के प्रति नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को 10 दिनों के भीतर 3 सदस्यीय मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने का निर्देश देते हुए कहा कि अब इस मामले में किसी प्रकार का अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। अदालत ने 24 जून तक अनुपालन रिपोर्ट और राज्य के सभी ओपन जेलों की स्थिति, प्रबंधन और उपलब्ध सुविधाओं का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करने का आदेश दिया। और दूसरी बातें भी इसमें छपी हुई है। और एक सिंगल कॉलम की एक खबर है और वो वनाधिकार पट्टा जारी करने की मांग, और सारांडा वन क्षेत्र 2005 से पूर्व बसे लोगों को वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनाधिकार पट्टा जारी करने की मांग की गई है। इस संबंध में भारत आदिवासी पार्टी के पश्चिम सिंहभूम जिला अध्यक्ष सुशील बारला के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल संतोष गंगवार से मिला। इसी क्रम में खनिज ट्रस्ट चायबासा में व्याप्त अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच हाईकोर्ट के निगरानी में कराने की मांग की गई और इससे संबंधित तस्वीर भी अखबार ने प्रकाशित किया है। और तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। अब आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत संगीत हम आप सभी को सुनवाते हैं।

प्रकाशित की है और तस्वीरों के साथ ये स्टोरी अग्रपाल ने प्रकाशित की है। तपती गर्मी में जन्नत सा सुकून देती है सरथल की पगडंडियाँ, खूबसूरत पहाड़, बहते झरने व सुंदर वादियाँ करती हैं आकर्षित, हर कदम पर प्रकृति स्वागत को तैयार। अखबार लिखता है कि कठुआ समुद्र तल से 7,200 फीट की ऊंचाई पर घास के विशाल मैदान, घने देवदार के जंगल, कुदरती नजारों के बीच पल पल बदलता मौसम, प्रकृति प्रेमियों के लिए यह स्थान किसी जन्नत से कम नहीं है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के सरथल के खूबसूरत पहाड़ और वादियां अभी तक पर्यटन के मानचित्र पर जगह नहीं बना सकी थी, लेकिन अब प्रकृति की गोद में सुकून का वक्त बिताने के इच्छुक लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। बेहतर सड़क संपर्क, दूसरी सुविधाओं ने यह राह और आसान कर दी है। कुछ छोटे छोटे शीर्षक के साथ इन्होंने अपनी बातें कही हैं इस स्टोरी में, जैसे धरा पर स्वर्ग, पहाड़ी पगडंडियां पर सैर के बाद देखें, ठहरने की सुविधा, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध, सरथल कैसे पहुंचे। तो सरथल कैसे पहुंचे इस पर अखबार लिखता है कि जिला मुख्यालय कठुआ से सरथल करीब 185 किलोमीटर है, अपने वाहन से भी यहां पहुंच सकते हैं। कठुआ से लखनपुर बरसोहली होते हुए बनी पहुंचा जा सकता है। यहाँ से सरथल 25 किलोमीटर दूर है, रास्ते में रंजीत सागर झील का विहंगम नज़ारा भी देख सकते हैं। अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटक पंजाब के पठानकोट के अटल सेतु पार करके बरसोहली पहुंचेंगे और फिर बनी व सरथल जा सकते हैं, जहाँ छोटे छोटे यात्री वाहन की आसानी से मिल जाते हैं। डोडा के भद्रवाह और हिमाचल के डलहौजी से भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। तो ये थी बहुत ही खूबसूरत खबर, यात्रा है, छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, बहुत सारे लोग यात्रा पर हैं, इनके लिए खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ और शीर्षक जो है से वो हम आपके साथ साझा करते हैं। ड्रोन CCTV सर्विलांस व आधुनिक तकनीकों से अवैध होगी अमरनाथ यात्रा, इस खबर की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो अखबार ने प्रकाशित किया है वो हम आपके साथ साझा कर दें। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को ड्रोन, CCTV निगरानी, सर्विलांस सिस्टम तथा अन्य आधुनिक तकनीकों के साथ ही पारंपरिक सुरक्षा उपायों के समन्वय के साथ अवैध बनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान यात्रा से जुड़े स्थानीय लोगों, पशुओं का पंजीकरण और सभी पहचान पत्र को QR कोड युक्त बनाने पर जोर दिया गया है। बैठक के दौरान शाह ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं को सर्वोच्च सुरक्षा एवं सुगम यात्रा के लिए कटिबद्ध है। इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। इसके अलावा मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, ये खबर भी अखबार ने प्रकाशित किया है। इसके अलावा वीडियो बनाने को भारत का अपना AI मॉडल लॉन्च, आधार में हेर फेर कर उम्र घटाई, 500 पहलवान अयोग्य घोषित। और इसके अलावा कमर्शियल इस्तेमाल के लिए खुदरा पंप से नहीं खरीद सकेंगे थोक में डीजल, ये कुछ प्रमुख खबरें थी। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबर लें, इससे पहले इस खूबसूरत गीत को सुनते हैं।

और श्रोताओं, चलते चलते कुछ और खबरें हम आपके साथ साझा कर दें। ये प्रभात खबर का अपना शहर पन्ना है और अखबार के कुछ एक खबरें हम आपको बता दें। पात्र लाभुकों का ही करें चयन, योग्य व्यक्ति न छूटे। डीसी हेमंत सती की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं बाल संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इसमें योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डीसी ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि पात्र लाभुकों के चयन में विशेष सतर्कता बरती जाए ताकि कोई भी योग्य व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे और अपात्र लोगों का चयन न हो। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए बच्चों के पौष्टिक आहार, स्वच्छता और प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया और तस्वीर के साथ अखबार ने यह खबर प्रकाशित की है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत झील परिसर में लगा जिला स्तरीय आम उत्सव सह बागवानी मेला। मेला में सजी मियां जाकी से अल्फांसो तक के कश्म। अखबार लिखता है कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा एवं JSLPS की ओर से शुक्रवार को झील परिसर स्थित एम्फी थिएटर में आम उत्सव सह बागवानी मेला का आयोजन किया गया। मेला का उद्घाटन उप विकास आयुक्त रिया सिंह एवं महापौर अरविंद राणा ने संयुक्त रूप से किया। मेले में जिला के विभिन्न प्रखंडों से आए आम उत्पादक किसानों एवं स्वयं सहायता समूहों ने स्टॉल लगाकर विभिन्न किस्म एवं आम से बने उत्पादों का प्रदर्शन किया और विक्रय किया। मियां जाकी, आम्रपाली, स्वर्णरेखा, मालदा, अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा समेत कई प्रजातियों के आम आकर्षण का केंद्र रहे और आम का अचार, मुरब्बा, जेली, चटनी, लड्डू, आमचूर की भी बिक्री खूब रही। और इसके अलावा जो एक दो और खबर है, 500वीं कोयला रेक रवाना, केरे डारी ने रचा कीर्तिमानी, तस्वीरों के साथ अखबार ने प्रकाशित किया है। केरे डारी कोयला खनन परियोजना ने टोरी पब्लिक साइडिंग से 500वीं कोयला रैक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह परियोजना प्रमुख अरुण कुमार सक्सेना के दूरदर्शी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन तथा कोयला प्रेषण विभाग के विभागाध्यक्ष अमित कुमार के कौशल नेतृत्व एवं समर्पित प्रयासों से संभव सका। और इससे जुड़ी हुई दूसरी बातें भी अखबार ने प्रकाशित की है। गणेश चंद्र राही की पुस्तक प्रकाशित, इस शीर्षक के साथ अखबार ने ये खबर प्रकाशित की है और इसमें पुस्तक की तस्वीर भी अखबार ने छापी है। ज्ञान को आचरण में लाएं, ये मुनिश्री है। मुनिश्री भाव सागर जी महाराज के सानिध्य में शुक्रवार को प्रातःकाल के बेला में पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर बड़ा बाजार हजारीबाग में धर्म सभा का आयोजन किया गया और अध्यक्ष नागेंद्र विनायका ने मुनि संघ से चर्चा की। इस दौरान मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज ने बताया कि हम प्रत्येक क्रिया अच्छे ढंग से करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। उन्होंने कहा कि दिगंबर जैन धर्म के अनुसार यह श्रुत पंचमी का दिन महापवित्र दिन है और इस दिन सबसे बड़े ग्रंथ षट खंडागम ग्रंथ की रचना हुई थी। भगवान महावीर के निर्माण के लगभग 683 वर्ष बाद जिनके पास श्रुत का ज्ञान था वे भी विलुप्त होने लगे। श्रुत पंचमी हमें याद दिलाती है कि यहाँ भी शास्त्र हो उसे सम्मान दो। प्रतिदिन दो पन्ने ही पढ़ेंगे तो धीरे धीरे मन बदलने लगेगा। ज्ञान को सिर्फ पढ़ो मत, आचरण में लाओ, तभी पुष्पदंत भूत बलि मुनि की तपस्या सार्थक होगी। तो ये थे कुछ प्रमुख खबरें। चलते चलते एक और खूबसूरत संगीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

और श्रोताओं, चलते चलते मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की इन पंक्तियों को पुनः स्मरण कर लेते हैं कि ज्ञान को सिर्फ पढ़ो मत, आचरण में भी लाओ, तभी पुष्पदंत भूत बलि मुनि की तपस्या सार्थक होगी। तो आज हेलो हजारीबाग में इतना ही। रेडियो के अपने साथी सूरज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम में हेलो हजारीबाग एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो घड़ी में दिन के 11 बजने वाले हैं। आइए अब हम आपको शामिल करते हैं अपने विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों में।

फूलों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से हाँ। सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से हाँ। कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से हाँ।

चाहे यार करो, चाहे फूलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करो।

गाइड फिल्म का गीत अभी आपने सुना, शैलेंद्र सचिन देव बर्मन, शकील बदायूनी का लिखा आदमी फिल्म का नगमा, नौशाद मोहम्मद।

आशा फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी की बोल थी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और अब तराना फिल्म का गाना। शैलेंद्र सिंह की बोल, शैलेंद्र सिंह की आवाज, रविंद्र रावल के बोल, संगीत राम लक्ष्मण का।

0: ये सुनिए मैटिनी शो, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ बहुत ही अनमोल यादें आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले तो जे ओम प्रकाश के एक लंबे इंटरव्यू का ये छोटा सा हिस्सा सुनिए, जिसमें वो एक दिलचस्प किस्सा सुना रहे हैं।
1: अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो बदकिस्मती से आज इस दुनिया में नहीं है
0: जी,
1: तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने जब सन 59 में अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया तो एक उलझन थी कि कंपनी का नाम क्या रखें। इतवार का दिन था, बहुत से अखबार आए तो ऐसे सामने आया धर्मयुग, तो हमने कहा धर्म को जरा अलहदा कर देते हैं, यहाँ फिल्म रख दीजिए, तो फिल्म युग से ही शुरू करते हैं।
2: क्या बात है, क्या बात है? मैं हमेशा सोचता था कि आपकी कंपनी का नाम फिल्म युग क्यों है?
1: वहाँ इंस्टेंटली सब ने पसंद किया
2: जी,
1: तो ये उसकी मेहरबानी है कि आज तक फिल्म युग कायम है।

0: जब ये खबर छपी कि मैं फिल्म बना रहा हूं और ये कंपनी का नाम है, तो मुझे मेरे दोस्त हजरत कतील शिफाई ने पाकिस्तान से खत लिखा,
1: वाह,
0: मुबारक का खत लिखा और साथ में एक नज्म भेजी कि मैं ये नज्म भेज रहा हूँ, ये गजल भेज रहा हूँ, अगर तुम्हारी फिल्म में कोई सिचुएशन हो
1: जी,
0: तो मेरी तरफ से एक तोहफे के तौर पर इस्तेमाल कर लेना।
1: क्या बात,
0: बहुत अच्छा लगा मुझे। उसका शुरू का जो शेर था और फिर मक्ता मैं आपको बता देता हूँ।
1: जी जी,
0: कतील साहब कहते हैं कि अंगड़ाई पर अंगड़ाई लेती है रात जुदाई की।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: अंगड़ाई पर अंगड़ाई लेती है रात जुदाई की, तुम क्या जानो तुम क्या समझो बात मेरी तन्हाई की।
1: क्या बात है, वाह।
0: कहता था कि उड़ते उड़ते आस का पंछी,
1: वाह,
0: दूर उफक में डूब
1: गया,
0: रोते रोते बैठ गई आवाज किसी सौदाई की।
1: क्या बात है साहब, क्या बात।
0: तो मैंने कतील साहब को जवाब दिया, मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, गजल का तो मुझे पता नहीं क्योंकि कहानी अभी बन रही है
1: जी,
0: लेकिन कहानी का जो मकसद है
1: जी जी,
0: वो आपके इस शेर से मैंने ले लिया है, वो पिक्चर का टाइटल होगा आस का पंछी।
1: क्या बात है।

0: कहा जाता है इससे, और इसी से मेरी जिंदगी की जो रफ्तार है या जिंदगी का जो सफर है वो भी एक आस का पंछी ही समझिए तो ठीक रहेगा।
1: क्या बात
0: अब है? इन्हीं जज्बात को अपने शंकर जयकिशन ने मेरी उसी पहली ही फिल्म में, पहले ही गाने की जब रिकॉर्डिंग हुई थी तो हजरत जयपुरी ने कैसे तर्जमानी की, सुनिए।
1: वाह क्या बात है, ये सुबीर सेन की आवाज है, सुबीर सेन जो हेमंत कुमार से काफी कुछ मिलती जुलती है।

0: क्यों, जैसे मैंने कहा कि उजाले उनकी यादों के, यादों के बारे में एडजेक्टिव्स बहुत से सुने थे, इसी तरह आस का पंछी मैंने पहली बार सुना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और चूंकि इस टाइटल से मेरे मेन कैरेक्टर को भी बहुत कुछ मिलता है।

भाई आज का पंछी फिल्म के एक गाने की धुन आपने सुनी और जाहिर है कि जब ये धुन बज रही होगी तो गाने के बोल आपके जहन में बाकायदा गूंज रहे होंगे। जी ओम प्रकाश की फिल्मों की खासियत ये थी कि उनकी फिल्मों के टाइटल अंग्रेजी के ए शब्द से शुरू होते थे, जैसे आज का पंछी, आपकी कसम वगैरह।

0: ये
1: बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश की फिल्मों का ये जादू रहा कि जब भी उन्होंने ए लव से अपनी फिल्में बनाई तो वो फिल्में बहुत ज़्यादा चली और उन फिल्मों का अपना एक जादू रहा है। अब जे ओम प्रकाश की बातें की, विविध भारती के खजाने से मैटिनी शो कार्यक्रम में आपके लिए गुलजार साहब का एक बहुत ही पुराना और रेयर इंटरव्यू लेकर आया हूँ। 15 मिनट का ये इंटरव्यू किसी जमाने में रिकॉर्ड किया गया था। गुलजार साहब से शबी अब्बास बात कर रहे हैं, मैटिनी शो की ये पेशकश।
0: ये आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम है विविध भारती, इनसे मिलिए। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाते हैं फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध लेखक और निर्देशक गुलजार से।
2: गुलजार भाई नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: देखिए गुलजार भाई, बड़ी कृपा की आपने जो आप आज आए, इस वास्ते कि हमें आपसे बहुत कुछ पूछना है। हाँ तो पूछूं?
3: छोटे जी मैं जानता हूँ कि इसीलिए आया हूँ यहाँ के।
2: मैं कुछ पूछूंगा। हाँ, हाँ। अच्छा देखिए साहब, तो गुलजार भाई आपको तो पता है कि इस फिल्मी दुनिया में जहाँ से आप संबद्ध हैं, तो वहाँ पे कोई म्यूजिक डायरेक्टर बनने आया था वो एक्टर बन गया, कोई डांसर डांस डायरेक्टर बनने आया था तो म्यूजिक डायरेक्टर और गीतकार बन गया, ऐसे बहुत सारी बातें हुई हैं। तो आप बताइए कि आप इस फिल्म जगत में क्या बनने के लिए आए थे?
3: छोटे जी बात आपकी सही है कि इतने सारे रास्ते एक दूसरे को काटते हुए गुजरते हैं यहाँ।
2: हाँ।
3: कि कई बार तो आदमी भूले भटके किसी और रास्ते पे निकल जाता है।
2: हाँ, हो जाता है, हो जाता है
3: सब। जैसे
2: तो आप तो जानबूझ करके आए,
3: म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए थे। हाँ। तो हारमोनियम पे बैठ के जब तर्ज बनानी शुरू की तो मालूम हुआ कि गाना बड़ा अच्छा था, गायक बन गया।
2: गायक बन गया,
3: ऐसा होता है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ लेखक ही की हैसियत से आया था।
2: अच्छा।
3: और ये कि फिल्म लाइन ही में लेखक बनूं ये कोई तमन्ना नहीं थी।
2: अच्छा।
3: साहित्य में अच्छा जगह बनाना चाहता था।
2: ठीक ठीक।
3: और लिटरेचर ही में रहना चाहता था, कविता लिखता था, शायरी करता था, अफसाने भी लिखे।
2: वाह।
3: लेकिन कुछ हल्का आहिस्ता आहिस्ता ऐसा बनता गया और कुछ थोड़ी सी मुश्किल हुई मेरी जबान की, क्योंकि मीडियम मेरा उर्दू का था।
2: ठीक।
3: जिसकी जगह कम होने लगी और रोजगार के लिए कुछ तो ढूंढना था आखिर, सिर्फ कविताएं लिख के तो पेट नहीं भरता था।
2: जी।
3: तो उस हलके में से एक रास्ता ये निकला कि भाई कहीं कोई कविता की जरूरत हो तो हमसे भी कलम हमने कान पे रखी है।
2: हाँ।
3: हमसे भी कुछ लिखवा लो।
2: हाँ, ठीक।
3: सुबह बाजार में हाँक लगाते गुजरते थे।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो उस हालत में कुछ दोस्त हमें बिमलदा के पास ले गए। बिमलदा से आप शायद नाम
2: सुना, बिमलदा
3: जी हाँ, उन्हें हम बिमलदा कह के बुलाते थे। और उनसे मिले, वहां पे एक गाना लिखा उनकी एक फिल्म में।
2: कौन सा गाना?
3: बंदनी में मोरा गोरा अंग ले।
2: वाह वाह, बड़ा सुंदर गाना था।
3: अब छोड़ जी क्या कहूँ, ये बात भी बहुत ही दफा कह चुका हूँ अपने परिचय में कि इसी गाने से परिचय हुआ था।
2: हाँ।
3: और वो गाना लिखा और उन्हीं दिनों बिमलदा एक और फिल्म शुरू कर रहे थे, काबली वाला।
2: जी।
3: और मैं क्योंकि बेरोजगार था और शायद शक्ल सूरत से कुछ हमदर्दी हो गई उन्हें।
2: जी।
3: लगा कि ये कुछ भूखा है।
2: जी।
3: तो मुझसे पूछा कि भाई और क्या करते हो आजकल? मैंने कहा जी कुछ नहीं करता, सिर्फ यही करता हूँ जो कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो रोजी कैसे चलती है?
2: जी।
3: तो भाई जहाँ लफ्ज जोड़ते हैं वहाँ दो वक्त का खाना भी जोड़ते हैं।
2: सही बात, सही बात।
3: तो तुमने बुला लिया कि भाई तुम ऐसा करो, मैं हम नई फिल्म शुरू कर रहे हैं काबली वाला, तो उसमें असिस्टेंट हो जाओ हमारे साथ।
2: जी।
3: और बड़ा अच्छा मौका था, जाहिर है
2: हो गया, पहुंच गए, हो गया।
3: और वहां असिस्टेंट होने के बाद ये जरूर महसूस हुआ
2: जी
3: कि लेखक की जगह अपनी है।
2: हाँ।
3: लेकिन फिल्म का मीडियम सिर्फ लेखक का नहीं।
2: अच्छा।
3: वो जो खुद मुख्तारी महसूस होती थी शायरी करने में।
2: हाँ।
3: वो महसूस हुआ कि फिल्म में तो नहीं होगा।
2: अच्छा। हुआ तो फिल्म के हिसाब से लिखना पड़ेगा,
3: तो एक सिचुएशन देंगे, कहानी कोई और लिखेगा, पिक्चराइज कोई और करेगा, एक्टिंग कोई और करेगा।
2: सही बात, सही बात।
3: तर्ज कोई और बनाएगा, मैं चाहे किसी धुन में गुनगुनाऊं।
2: ठीक ठीक।
3: तो महसूस हुआ कि वो खुद मुख्तारी अगर चाहिए और खुद जो कहना चाहते हो वही कहना है।
2: हाँ।
3: तो फिर इस मीडियम को सीखना चाहिए।
2: हाँ, मतलब फिर आपने निर्देशन भी।
3: जी हाँ, वहां से बस डायरेक्शन में बिमलदा के साथ हमने सीखना शुरू किया और लिखते रहे साथ। हाँ। में
2: लिखते तो आप अब भी हैं और लिखते रहेंगे आप।
3: तो मीडियम सीखने के बाद महसूस हुआ कि इस मीडियम में लेखक की अपनी एक हैसियत है और वो इस मीडियम को अगर जाने तो लिखे।
2: अच्छा। तो देखिए इसी बात से एक बात और निकलती है कि जब लेखक की अपनी हैसियत है तो इसका मतलब ये हुआ कि निर्देशक की भी अपनी हैसियत है ना।
3: जा।
2: तो अब आप तो दोनों है, तो आपकी दोनों हैसियत कभी आपके सामने आई? काम के दौरान?
3: जी हाँ, दोनों शख्सियतें।
2: कभी उनमें कोई क्लेश हुआ
3: जी
2: लेखक और निर्देशक?
3: वैसे छोड़े जी, आप तो मैं समझता था सिर्फ आप देहात की जबान बोलते हैं, आप अंग्रेजी भी अच्छी बोल लेते हैं बीच में।
2: अरे आप ही लोगों से साथ बैठ के
3: दोनों का झगड़ा तो होता है, दोनों शख्सियतों का
2: होता है ना
3: जी।
2: अच्छा,
3: और अक्सर ये हुआ है कि जो लेखक है ना मुझ में
2: जी,
3: वो पकड़ लेता है, इसलिए जी।
2: अच्छा,
3: वो इसलिए कि ख्याल फिल्म से ज्यादा जरूरी है। जो बात आप कह रहे हैं, जो ख्याल कह रहे हैं वो बहुत जरूरी है। अब आप शॉट चाहे किसी तरह से भी ले लीजिए, कोई भी चालाकी कीजिए, कैमरा कहीं भी रख के आप बहला तो लेंगे देखने वालों को, लेकिन वो बात बहुत जरूरी है और वहां पे आगे पकड़ लेता है वो लेखक।
2: अच्छा,
3: और उसका बड़ा फायदा है कि जो बात कहनी है उसमें एक मकसद और मतलब होना बहुत जरूरी है।
2: अच्छा, तो गुलजार भाई अब साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि फिल्मों में आने के बाद जब आप लेखक और निर्देशक बन गए तो फिर आपको ये दुनिया मतलब अब कैसी लगती है, जो पहले आपने सोच रखी थी ऐसी है या कुछ अंतर?
3: वैसे दुनिया बड़ी दिलचस्प है, बहुत अच्छी है।
2: अच्छा,
3: और रंगारंग है।
2: हाँ,
3: और अंग्रेजी में।
2: अच्छा,
3: फैसिनेटिंग है।
2: हाँ भाई,
3: बहुत फैसिनेटिंग।
2: अच्छा,
3: और इसलिए कि एक चीज कहने के लिए कविता तो मैंने कागज और कलम ली और ख्याल को उस पर कलम बंद कर लिया
2: जी,
3: लेकिन फिल्म के लिए जो ख्याल मैं कहना चाहता हूं और फिल्म में सेलुलाइट पर उसे डालना चाहता हूं, उसके लिए मैं अकेला नहीं हूं।
2: अच्छा,
3: और उसके लिए मुझे एक पूरी टीम बनानी पड़ती है।
2: हाँ,
3: जाहिर है उसमें कैमरामैन भी है, एक्टर भी है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है, और दूसरे कर्मचारी टेक्नीशियंस हैं, जितने
2: सभी उसमें शामिल,
3: और वो सारे जब तक आकर एक सुर पे न मिले और एक सम पे धा ना पड़े तो वो बात बनती नहीं,
2: बात नहीं बनेगी।
3: तो वो एक धा मारने के लिए वो सात आदमियों को जुड़ना पड़ता है और सातों के सातों की उंगली वहीं पे आगे पड़नी चाहिए, तब बात बनती है।
2: सही बात है, सही बात है।
3: इसलिए वो बहुत फैसिनेटिंग है।
2: सही बात,
3: क्योंकि एक काम करने के लिए फिर मुझे वो दूसरे का मीडियम समझना पड़ता है। हाँ, उसमें मुश्किलात समझनी पड़ती हैं, म्यूजिक डायरेक्टर की क्या है, कैमरामैन की क्या है, आर्ट डायरेक्टर की क्या है। तो ये तमाम जब दूसरे मीडियम मिल जाते हैं तो यूं महसूस होता है कि ये बहुत से फाइन आर्ट्स सारे के सारे जो हैं वो फिल्म में एक में जुड़े हुए हैं।
2: अच्छा गुलजार भाई, एक चीज आपसे ये भी पूछनी है कि जब से बहुत ज्यादा मारधाड़, खून खराबा और अश्लीलता यानी सेक्स पर पाबंदी लगाई गई है, तब से ये बात जो है वो फिल्म देखने और बनाने वालों में चर्चा का विषय बन गई है ना,
3: बहुत चर्चा।
2: तो आपका इसके बारे में क्या विचार है?
3: सर, इसके विचार दो तरह से हैं।
2: पहली तरह
3: ये है कि हमारी कुछ नौकरी जो है ज्यादा महफूज हो गई है, खासतौर पर जिस तरह की फिल्में मैं बनाता रहा।
2: अच्छा,
3: तो जाहिर है कि अगर वो सेक्स और वायलेंस के ऊपर पाबंदी पड़ेगी तो कुछ नौकरी मुझे और मिल जाएगी, मुझे ज्यादा साफ सुथरी फिल्में बनानी पड़ेंगी। और दूसरी बात यह है कि अगर मुझसे ये पूछा जाए, वही लेखक का ख्याल
2: जी,
3: कि भाई ये है क्या जो वायलेंस है
2: जी,
3: तो सच पूछिए वेस्ट की फिल्मों का बहुत असर है हम पे।
2: अच्छा अच्छा,
3: और वो प्रोपोगेट करते रहे हम।
2: अच्छा,
3: अब वो दिखा दिखा के ये वायलेंस से एक झूठा जोश पैदा करके वो ऑडियंस को कुछ लम्हों के लिए, कुछ घंटों के लिए उन्हें बस वो मुक्त कर दो, उसमें मदहोश कर दो और निकल जाओ।
2: ये चीज,
3: लेकिन उसके असर जो हैं वो बहुत बुरे हैं।
2: अच्छा, वो दूसरी बात हुई।
3: और जो चर्चा है वो यही है कि साहब उस पर पाबंदी लग रही है। अब वो पाबंदी लगने से जितनी सफाई हो रही है, अगर ये हो गई इसी तरह से
2: जी,
3: तो मेरा ख्याल है कहीं ये सोचना पड़ेगा
2: जी
3: कि जिस जो जिंदगी हम जीते हैं
2: जी,
3: क्या उसमें लिखा जा सकता है, क्या उसके बारे में फिल्में भी बनाई जा सकती हैं कि नहीं।
2: वाह वाह,
3: जो हर फन का बहुत बड़ा हिस्सा है।
2: वाह,
3: क्योंकि जब तक कोई फन जिंदगी में से निकल के नहीं आएगा
2: जी,
3: वो बनावटी रहेगा।
2: हाँ ठीक,
3: और ये इस तरह की फिल्में निहायत बनावटी लगती हैं, जिस तरह के डेंस, पता नहीं मुझे तो तजर्बा नहीं, शायद किसी को हो
2: जी,
3: जो डेंस और वो स्मगलर्स के डेंस लगते हैं और जो देखते हैं फिल्मों में
2: जी,
3: मैंने अभी तक हिंदुस्तान में तो कहीं नहीं देखे।
2: अच्छा,
3: शायद
2: अच्छा,
3: हूं कहीं भी, मेरी अच्छा, नजर से नहीं गुजरा।
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके विचार से सेंसर की ये पाबंदी फिल्मों के हक में कैसी रहेगी?
3: जी, फिल्मों के हक में भी अच्छी और मेरे हक में भी अच्छी है, आज से आज की मेरी नौकरी अच्छी पक्की हो जाएगी।
2: अच्छा गुलजार भाई, आपने तो विदेशों में भी कई फिल्मी मेले देखे हैं, अभी पिछले दिनों आप ताशकंद भी गए थे
3: जी,
2: तो वहां यानी दूसरे मुल्कों में भारतीय फिल्मों को कैसा समझा जाता है, यानी हमारी फिल्मों के बारे में वहाँ के लोगों का क्या विचार होते हैं?
3: खास तौर पे ताशकंद में
2: जी
3: हिंदुस्तानी फिल्मों को बहुत अच्छी तरह स्वीकार किया गया।
2: अच्छा।
3: बहुत अच्छी तरह अपनाया गया।
2: अच्छा।
3: और उसमें एक ये भी वजह है कि हमारे जो स्टार्स हैं यहाँ के,
2: हाँ,
3: वो वहाँ भी बहुत पॉपुलर हैं।
2: अच्छा।
3: जैसे एक तो राज कपूर साहब
2: जी,
3: और राजीव तो रूस में मतलब उसी तरह से घेर लिए जाते हैं आवाम से जिस तरह से यहाँ
2: यहाँ पे। वाह।
3: और जो नए अदाकार वहां गए हमारे साथ, उसमें चिंटू की भी वही हालत हुई जो राज कपूर साहब की थी।
2: वाह वाह।
3: तो एक वो पॉपुलैरिटी भी एक वजह है जिसकी वजह से हमारी फिल्में बहुत अच्छी तरह अपनाई गई और वहां दिखाई गई, जगह जगह गए हम
2: जी,
3: और कुछ फिल्मों के तो बहुत से शो हुए।
2: अच्छा।
3: और मुझे सही मालूम नहीं कि आखिर में क्या हुआ फेस्टिवल के बाद
2: जी,
3: लेकिन मेरा ख्याल है कि हम उसमें से काफी सारी फिल्में वहां बेच सके।
2: अच्छा।
3: या उनके सौदे किए जा रहे थे या बातचीत चल रही थी।
2: अच्छा।
3: और अगर ये इसी तरह बढ़ता रहे तो वो भी कारामद है।
2: बिल्कुल कारामद है। और साहब हमारी फिल्मों की तो मांग विदेशों में और बढ़ती जाएगी अगर ऐसे ही तरक्की होती रही। गुलजार भाई, एक बात तो आप ये भी बता दीजिए कि ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम से देश में एक नई खुशहाली आ रही है, तो आपकी फिल्मी दुनिया इसमें कितना योगदान कर सकती है और या कर रही
3: है? कर सकती है और कर रही में थोड़ा सा अंतर है।
2: हाँ, है ना।
3: और
2: हाँ,
3: दोनों को जांच लेना चाहिए।
2: हाँ, जांच लीजिए।
3: कर सकती में तो ये है कि हर फिल्म
2: जी
3: एक बड़ा मकसद ले सकती है।
2: ठीक।
3: और वही बात जैसे ऊपर कही मैंने कि अगर ये साफ सुथरी होने लगे
2: जी,
3: तो कहीं तो ये महसूस होगा कि हम कौम के लिए क्या कर रहे हैं या वतन के लिए क्या कर रहे हैं।
2: ठीक।
3: और वो फिल्में भी आएंगी जो हमें एक बार तो ये महसूस कराएंगे या एक बार तो ये महसूस होने देंगे कि साहब आप हिंदुस्तानी हैं, आपने हिंदुस्तान के लिए क्या बात सोची।
2: वाह, क्या बात कही।
3: और आप किस कौम से ताल्लुक रखते हैं और आपके कौम क्या है, कम से कम ये तो जान लें।
2: ठीक।
3: क्योंकि सिवाय आज तक के ये कि हम ये जानते हैं कि ये एक्टर है और मैं डायरेक्टर हूँ और ये, लेकिन ये कभी बहुत कम मेरा ख्याल है कहीं बहस होती होगी कि हम दो हिंदुस्तानी हैं और बाहर की फिल्मों को उस नुक्ते से देख रहे हैं कि साहब हमें कहां तक पहुंचना है या क्या करना चाहिए।
2: जी।
3: तो वो एक बार कौम की तरफ से कौमियत के साथ महसूस करना तो कहीं फर्ज है और कहीं अच्छा लगता है, वो होना चाहिए। और ये फिल्में कम काम कर सकते हैं क्योंकि बड़ी बड़ा एजुकेटिव मीडियम है
2: जी।
3: और कर कितना रही है उसमें ये कि कोशिश बहुत है।
2: अच्छा।
3: लेकिन पहुंच कम हुई है।
2: हाँ, ठीक है। तो
3: मतलब उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी।
2: हाँ।
3: और उसी के लिए ये 20 नुकाती प्रोग्राम चल रहे हैं, उम्मीद होगा।
2: हाँ जी। अच्छा गुलजार भाई, आपने पहले ही कहा था कि आप तो आपने फिल्म जगत में पहले सबसे जो कदम रखा था गाना लिखा था
3: जी। हाँ।
2: और आप कवि हैं, शायर हैं
3: जी। हाँ।
2: तो हम चाहेंगे भाई अंत में एक दो चार पंक्तियां अगर श्रोताओं तक पहुंच जाए आपकी आपकी जबानी तो क्या हर्ज जाए।
3: छोटे जी, हर्ज तो कुछ नहीं
2: जी,
3: अच्छी बात है।
2: अच्छी बात है ना।
3: अगर उन्हें अच्छी लगे।
2: अरे लगेगी
3: नज़्म में आपको सुना देता हूँ।
2: अच्छा।
3: और सुनने वालों तक भी पहुंच जाएगी।
2: हाँ, पहुंचे रहेगी।
3: वो जो शायर था।
2: अच्छा। वो जो शायर था
3: बहकी बहकी सी बातें करता था। मेरी तरफ ना देखिए। वो जो शायर था बहकी बहकी सी बातें करता था और आंखें कानों पे रख के सुनता था गूंगी खामोशियों की आवाजें, जमा करता था चांद के साए गीली गीली सिनूर की बूंदें।
2: वाह।
3: जमा करता था चांद के साए

0: सी नूर की बूंदें और ओक में भर के खड़खड़ाता था रूखे रूखे से रात के पत्ते, और वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के से लम्हे चुनता था। हाँ वही वो अजीब सा शायर रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की ठोड़ी चूमा करता था। हाँ वही वो अजीब सा शायर रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की ठोड़ी चूमा करता था। चांद से गिर के मर गया है वो, लोग कहते हैं खुदकुशी की है।
1: वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुलजार भाई, आज आपसे मिलके हमें और हमारे श्रोताओं को बहुत ही प्रसन्नता हुई और बहुत सारी जानकारी मिली है, तो इसके लिए तो भाई हम आभार प्रकट कर रहे हैं अपने श्रोताओं की ओर से भी और भारती की भी ओर से। और आप समझो समय भी हो रहा है, तो अब श्रोताओं
0: फिर मिलेंगे।
1: अच्छा नमस्कार,
2: इनसे मिलिए। आज के इस कार्यक्रम में आपने फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध लेखक और निर्देशक गुलजार से एक भेंट वार्ता सुनी। भेंट करता थे छोटे।
3: मुसाफिर हूँ यारो।
4: न जाने कितने बरस पहले गुलजार साहब से की गई ये बातचीत संग्रहालय से निकालकर मैटिनी शो में मैं आपके लिए लेकर आया था। और अब गुलजार साहब के इस गाने के साथ आज के इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। परिचय फिल्म का गीत आर डी बर्मन की तर्ज किशोर कुमार की आवाज।

0: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज्ड नमक।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
0: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
4: असम में भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी हैं। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। निदेशालय के अनुसार कमरहाटी सहित विभिन्न नगर पालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों के नियुक्ति के बदले बिचौलियों के माध्यम से नकद और सोने के रूप में रिश्वत ली गई थी। एजेंसी का कहना है कि मदन मित्रा 125 से अधिक ऐसी अवैध नियुक्तियों से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े

0: बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। समारोह में 500 से अधिक पुरुष और महिला कैडेट्स ने भाग लिया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25%, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.53% रही। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: आइए सुनिए यादों की महफिल।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है?
2: क्या है

0: साहिर लुधियानवी के बोल थे, फिल्म का नाम दीवार।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: योगेश के बोल थे सलील चौधरी की तर्ज फिल्म का नाम अन्नदाता।
1: जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन।
0: दिन की इस भागदौड़ में 12:38 विविध भारती सुरीला सफर।

हम चाहे कि तुझे को हम चाहे।

साहिबान, आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत नीरज का लिखा हुआ था, एसडी बर्मन की तर्ज थी और लता मंगेशकर की आवाज। इसी के साथ खत्म होता है आज का ये कार्यक्रम यादों की महफिल। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुरीला सफर।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग, आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम की आज की जो इबारत है वो है, कितना अच्छा हो कि आ जाए रिमझिम फुहार, बारिश सिर्फ मौसम नहीं बूंदों का है त्योहार, बादल की डोली पर आती है बरखा रानी, मन झूम उठता है जब बरसता है पानी, तपती धरती कर रही शिद्दत से इंतजार, कब छाएंगे मेघा कब होगी बूंदों की बौछार, इस बार सावन ऐसा आए घटाओं के संग खुशियां लाए, चलो बारिश का त्योहार मनाएं, हम सब मिलकर बारिश के गाने गाएं, आसमां अब के धरती पे लिख दे हरी कहानी, झूम के छाए घटा और टूट के बरसे पानी। अब समझ गए होंगे कि इतने सारे शब्द हैं जिनके जरिए हम गानों की डोर को तान सकते हैं। अब आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि कौन कौन से शब्दों पर आज गाने हो सकते हैं, पर यह तो तय है कि आज बारिश के इंतजार की बात है और इतने सारे शब्द जिन पर बहुत सारे गाने हो सकते हैं। सबसे पहले वो बात जो हमारी और आपकी, हम सबकी बात है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पहला गाना जो है वो गाइड फिल्म से आ रहा है। गाइड फिल्म किसके उपन्यास पर बनी थी, एक तो ये बात, दूसरी देवानंद और वहीदा रहमान के किरदारों के नाम क्या थे इस फिल्म में।

जरा सोचिए कि बिल्कुल जरा सा, 2 मिनट का ये गाना है, लेकिन ये गाना बारिश के लिए हम सबकी पुकार को एक तरह से आवाज देता है। और बहुत सारे श्रोताओं के आज की इबारत को लेकर कमेंट्स आए हैं, और उसके अलावा हमारे सवालों को लेकर भी बहुत सारे लोगों के जवाब आ रहे हैं, और ये सारी बातें करेंगे। लेकिन आपने जैसे गाइड फिल्म का गाना सुना, अल्लाह मेघ थे, इसी तरह का एक और गाना था, आपको बताना है फिल्म का नाम।

पलकों की छांव में फिल्म का ये गाना था और बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। गुलजार साहब ने लिखा पलकों की छांव में फिल्म का ये गाना है और इसके अलावा गाइड उपन्यास के लेखककार के नारायण थे और राजू और रोजी नाम थे गाइड फिल्म के हीरो और हीरोइन के नाम। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। 1977 में आई थी पलकों की छांव में फिल्म और 1958 में आर के नारायण का द गाइड आया था। और ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं की। और इसके अलावा बारिश का जो इंतज़ार है वो आप सभी को है, हम सभी को है, क्योंकि जिस तरह की गर्मी इस साल पड़ी है वो बहुत ही खौफनाक है। क्या आपने अपने पूरे जीवन में इस तरह की तेज़ गर्मियां इससे पहले देखी थी? और पिछले साल या बीते सालों की गर्मियों में और इस साल की गर्मी में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, ये भी बताइएगा कि इस साल की गर्मी के कहर ने क्या कुछ दिखाया है आपको। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि बहुत बरसों बाद एसडी बर्मन वाला ये गाना हमें सुनने को मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है आई बहार, आई बरखा बहार करे अंगना फुहार। और इसके अलावा और भी बहुत सारे बारिश के गाने इन्होंने लिख दिए हैं, बहुत सारे बारिश के गाने। आज वर्षा की बूंदें पूरे विविध भारती को तरबतर करने वाली हैं, कम से कम गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी भले बारिश के गानों के जरिए ही क्यों ना हो। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि सचिन देव बर्मन धोती कुर्ता पहनते थे और कितने आगे का संगीत देकर वो चले गए हैं कि आज के संगीतकार भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा और भी श्रोता हैं जिन्होंने अलग अलग शब्दों के जरिए अंदाजा लगाया है कि आज कौन कौन से गाने हो सकते हैं। जिंदगी की पहली बारिश बहुत सारी यादें लेकर आती है।

0: है, बारिश की बूंदें गिरते ही इंसान अनजाने में अपने अतीत में लौट जाता है। मिट्टी की पहली सोंधी खुशबू सीधे हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से को सक्रिय करती है जो यादों को वापस लेकर आता है। ये एक श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि आज की जो इबारत है उसमें रिमझिम और ठंड।
1: प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की देश के युवाओं और खिलाड़ियों की सराहना, कहा विज्ञान, स्टार्टअप और खेल के क्षेत्रों में छोटे शहरों व गांवों के युवा रच रहे हैं नया कीर्तिमान। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने धनबाद में मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया, कहा देश की जनता के विश्वास और सुशासन का जीवंत प्रमाण। सिमडेगा जिले ने मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य शत प्रतिशत किया पूरा। जनगणना के पहले चरण का लक्ष्य हासिल करने वाला राज्य का पहला जिला बना। मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। संताल और कोल्हान क्षेत्र में मॉनसून सक्रिय। और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज जसपाल राणा के आकस्मिक निधन से खेल जगत स्तब्ध, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने दी श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विज्ञान, अंतरिक्ष, विनिर्माण और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में देश के युवा उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में उभरने में छोटे शहरों और गांवों के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसी सरकारी पहलों ने नवाचार और युवा नेतृत्व वाले विकास को नई गति दी है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने धनबाद दौरे के दौरान केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि 12 साल बेमिसाल केवल एक नारा नहीं बल्कि देश की जनता के विश्वास और सुशासन का जीवंत प्रमाण है।
1: तो इन 12 वर्षों में मुख्य रूप से उन्होंने महिला, युवा, किसान और गरीब के लिए जो योजनाएं बनाई, उस योजना का लाभ आम जन तक मिले, तो ये उनके द्वारा लगातार उनको फोकस करके उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। देश की जनता का विश्वास, भरोसा माननीय प्रधानमंत्री जी पर है और लगातार जो चुनाव हो रहे हैं उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है, उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है।
0: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के नागरिकों और व्यवसायियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने मोदी सरकार के कार्यकाल को 12 साल बेमिसाल बताते हुए आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और जल जीवन मिशन जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की।
2: मोदी जी के 12 वर्ष में बहुत सारे योजना ऐसे चल रहे हैं जिसमें लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे कि गरीबों के लिए पीएम आवास योजना और गैस योजना चला है, आयुष्मान भारत योजना जिसमें गरीबों को इलाज के लिए योजना हो रही है, उसमें काफी लोग आयुष्मान भारत से लाभ ले रहे हैं। उसके बाद पीएम किसान योजना जिसमें हर साल किसानों को 6000 रुपए का अनुदान राशि दिया जा रहा है, इससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इस तरह बहुत सारा योजना भी चल रही है।
0: असम में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सिमडेगा जिले ने जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य शत प्रतिशत पूरा कर इतिहास रच दिया है। झारखंड में यह मुकाम हासिल करने वाला सिमडेगा पहला और अग्रणी जिला बन गया है। जनगणना निदेशालय ने उपायुक्त कंचन सिंह के नेतृत्व में मिली इस उत्कृष्ट सफलता की सराहना की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 29 जून को प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित भव्य कार्यक्रम में JSSC से चयनित 1018 नए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये नियुक्तियां राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिए की गई है। सरकार का लक्ष्य सहायक आचार्य के कुल 26,000 पदों को तेजी से भरकर स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से लापता तीन बच्चों का सुराग लगाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज शाम शहर में मशाल जुलूस निकालेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आक्रोश जताया है।
3: प्रबलम तीन बच्चों की बामदगी हो मतलब तो बात लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सबको उतरना पड़ेगा। और मैं ध्रुवा मंडल के अध्यक्ष महानगर कार्यकर्ताओं से कहता हूँ कि कल शाम में 6 बजे उसके बाद यदि बच्चे बरामद नहीं होते तो आगे के आंदोलन की कार्रवाई विचार करके तय। शादियों का इन पुलिस प्रशासन के लोगों से भय बिल्कुल खत्म हो चुका है।
0: रांची नगर निगम ने 30 जून तक 50 करोड़ रुपए होल्डिंग टैक्स संग्रह का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक 32 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। उपनगर आयुक्त गौतम प्रसाद साहू ने बताया कि 30 जून तक एकमुश्त टैक्स भुगतान करने पर नागरिकों को 10% तक की छूट दी जा रही है। गिरिडीह पुलिस ने जिले में गंभीर और जटिल आपराधिक मामलों की त्वरित व सटीक जांच के लिए विशेष जांच सेल का गठन किया गया है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि यह विशेष टीम हत्या, लूट और महिला उत्पीड़न जैसे संवेदनशील मामलों की वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर तफ्तीश करेगी।
4: इन्वेस्टिगेशन सेल हमने यहाँ पे बनाया है अलग से, एक सेल जिले में काम करेगी, दूसरा कोई अनुमंडल में काम करेगी। जिले की सेल सभी से कोऑर्डिनेट कर वैसे केसेस की सूची इनके पास रहेगी और वो पूरी टीम रहेगी जहाँ पे केस डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे उसका डिटेक्शन किया जाएगा, उसको हर तरह की संभव सहायता दी जाएगी जिला से ताकि उसका अतिशीघ्र उस केस का मतलब डिटेक्शन कर पाए।
0: जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी आशु कर्मकार सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि अपराधियों के पास से घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल, जिंदा गोलियां और खोखे बरामद किए गए हैं।
5: पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर एक छापेमारी दल का गठन किया गया और कदमा थाना की टीम द्वारा उसमें काम शुरू किया गया। तो ये घटना छापेमारी करने के लिए टीम गठित थी, उसके द्वारा कार्य शुरू किया गया और सती घाट पर खरते नदी के किनारे से 2 लोगों को पकड़ा गया। इस मामले में जो पिस्टल इस्तेमाल हुई थी देसी पिस्टल वो बरामद कर ली गई है और भी कुछ चीज पर टेस्ट आती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।
0: उत्तर प्रदेश के देवगांव कोतवाली क्षेत्र में एक कार और ट्रक के बीच में हुई आमने सामने की भीषण टक्कर में पलामू जिले के मेदिनीनगर के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिनका इलाज जारी है। सभी डेहरी में बारात में शामिल होने के बाद किछौछा शरीफ से वापस लौट रहे थे। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,48,000 रुपये प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। राज्य में मॉनसून ने संताल परगना के रास्ते दस्तक दे दी है, जिसके चलते मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोल्हान और संताल क्षेत्रों में इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 72 घंटों के भीतर मॉनसून पूरे राज्य को कवर कर लेगा। इधर रांची में आज दोपहर गरज और चमक के साथ तेज बारिश हुई। प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जसपाल राणा के आकस्मिक निधन पर झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने गहरा शोक व्यक्त किया है। एसोसिएशन ने उनके निधन को भारतीय खेल जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने मनु भाकर जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी देश को दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की देश के युवाओं और खिलाड़ियों की सराहना, कहा विज्ञान, स्टार्टअप और खेल के क्षेत्रों में छोटे शहरों व गांवों के युवा रच रहे हैं नए कीर्तिमान।

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने धनबाद में मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। कहा, देश की जनता के विश्वास और सुशासन का जीवंत प्रमाण। सिमडेगा जिले ने मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य शत प्रतिशत किया पूरा। जनगणना के पहले चरण का लक्ष्य हासिल करने वाला राज्य का पहला जिला बना। मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। संताल और कोल्हान क्षेत्र में मॉनसून सक्रिय। और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज जसपाल राणा के आकस्मिक निधन से खेल जगत स्तब्ध। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने दी श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

क्या तो शानदार गाना, बहुत ही प्यारा गाना। और योगेश जी ने इस गाने को लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ये गाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुंबई के ज्यादातर इलाकों से मैं परिचित नहीं हूं, इसलिए इनके नाम नहीं बता सकता। लता जी की आवाज कानों में अमृत घोलती है। एक और श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता कहते हैं कि अकोला में बारिश हुई है, लेकिन आज बहुत बुरी तरह से गर्मी पड़ रही है। और इसके अलावा कई श्रोता ये लिख रहे हैं कि मुंबई के साथियों को ही पता होगा कि इस गाने में कौन कौन से इलाके नजर आते हैं। नहीं, मुंबई के बाहर के श्रोताओं को भी पता होगा, क्योंकि ये जो इलाके नजर आते हैं ये अपने आप में बहुत ज्यादा मशहूर इलाके हैं। और इसके अलावा अमिताभ बच्चन इस गाने में बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लिखते हैं, ये बात एक श्रोता ने लिखी। एक और श्रोता ग्वालियर से लिख रही हैं कि पथरीला इलाका है और आज के गानों से थोड़ी राहत मिली है। एक श्रोता ने सुंदर कविता लिखी है। बताऊं क्या होते हैं बारिश के मायने, धड़कनों का मोर बन जाना है बारिश, सड़कों का संतूर बन जाना है बारिश, नदियों की गुल्लक भर जाना है बारिश, धरती का खुशबू हो जाना है बारिश, सूखे रेनकोट के भीतर तरबतर हो जाना है बारिश, शहरों का छप छप हो जाना है बारिश, रागों का घनघन हो जाना है बारिश, सीले ख्वाब का सुलग उठना है बारिश, पुराने एल्बम पलटना है बारिश, गुलजार पंचम और ब्लैक कॉफी है बारिश, छतरी ठेले से टिकाकर भुट्टे खाना है बारिश। क्या बात है, क्या बात है। इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने पहचानने की कोशिश की है, मरीन ड्राइव और विक्टोरिया टर्मिनस नजर आते हैं। ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है, मरीन ड्राइव नजर आता है, उसके अलावा ओवल मैदान नजर आता है, उसके अलावा राजाबाई टावर नजर आता है, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज और मुंबई का समुद्र। बहुत सारे श्रोताओं की बातें मिला के लगभग लगभग तय हो गया कि कौन कौन सी इमारतें हैं और मुंबई के कौन कौन से इलाके इस गाने में नजर आते हैं। ये सिर्फ गीत नहीं, ये दो आत्माओं के बीच बहती उस भावना का गीत है जिसकी गवाह है बारिश। सौम्यता और कोमलता से भरपूर इस गाने को योगेश जी ने लिखा है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज आपकी इबारत सही साबित हुई, पिछली रात कुछ घंटे पहले बारिश की रिमझिम फुहारों ने हमारे अजमेर शहर की तपती धरती पर बरखा रानी के आने से सुबह झूम उठे हैं और घर के गार्डन के पेड़ पौधे भी लहरा उठे हैं, मानो उन्हें शिद्दत से इंतजार था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो इंदौर से हैं, उनका कहना है कि सब जगह से बरसात की खबरें आ रही हैं, पर हमारे इलाके में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। कटक से एक श्रोता है जो लिखते हैं कि हम अक्सर बारिशों में पुरी चले जाते हैं और सुंदर समुद्र तट पर सुकून मिलता है। और इसके अलावा कई शहरों में बारिश हो रही है, इसकी खबर हमें अपने श्रोताओं के कमेंट से मिली है। एक श्रोता ने सुमित्रा नंदन पंत की कविता लिखी है, झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छमछम छमछम गिरती बूंदें तरुओं से छन के, चमचम बिजली चमक रही उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, पंख खोल फैले हैं ताड़ों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल, तड़ तड़ पड़ती धारीवारी के उन पर चंचल, टप टप झरती करमुख से जल बूंदें झलमल। क्या सुंदर तो भाषा है, कितनी ललित भाषा। पहली बारिश के बाद नासिक के हम लोग पुणे, मुंबई, इगतपुरी, भंडारदरा जैसे इलाकों में जाते हैं। मुंबई का सबसे, महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पर्वत कलसूबाई है, जहां से सैकड़ों झरने बहते हैं, वहां जाना बड़ा मजेदार होता है। एक श्रोता का कमेंट है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये बारिश मेरे लिए अफसोस लेकर आएगी, क्योंकि मेरा हम सफर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जून 1978 में दिल्ली के आसपास एक महीने तक तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ था, तब बहुत बुरी हालत हो गई थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इस कार्यक्रम का पहला अंक आपने पेश किया था और उसमें हमने हिस्सा लिया था। इसके अलावा उनको ये शिकायत है कि भाई इस इबारत में शब्द छाटना और उन शब्दों पर आधारित गीत बताना, बस यही इस कार्यक्रम का आपका मकसद है। ये थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई प्रेरक विषय वस्तु दीजिए और इस तरह से कुछ और करिए। भाई आपका ये सुझाव जो है सर आंखों पर
प्रेरक विषय वस्तु से आपका क्या तात्पर्य है, थोड़ा विस्तार दीजिएगा। और त्रिवेणी जैसा कार्यक्रम है जहां प्रेरक चीजें होती हैं, ये कार्यक्रम मनोरंजन का कार्यक्रम है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हम सागर किनारे बारिश में भीगेंगे। उसके अलावा कुछ और श्रोताओं ने बारिश के बारे में लिखा है। एक अहमदाबाद के श्रोता का कमेंट है जो लिखते हैं कि भाई इस बार जो हालत है वो बहुत ज्यादा संगीन है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। बचपन में बारिश की एक एक बूंद को मैं बड़े ध्यान से देखती, लगता आसमान में बैठा कोई जल तरंग का साज छेड़ रहा है। वो न जाने किस दिशा से आती और सब कुछ भिगो जाती, हम उसे कुछ भी भिगोने से रोक नहीं पाते, और जब वो चली जाती तो उसे रोकते। बारिश बचपन की स्वर लिपि है। ये हमारी एक श्रोता का कमेंट। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। हर गाना जो है वो बारिश का गाना नहीं है आज के इस कार्यक्रम का। अगला गाना ये है, क्या आपको फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम पता है?

बहुत ही सुंदर गाना जो पूरी तरह से खत्म हो गया, और एकदम से जब गाना खत्म होता है तो लगता है अरे ये इतना शानदार गाना था, ये कैसे खत्म हो गया। पर बहुत मजा आया, और बहुत सारे श्रोताओं के इस वक्त हमारे पास कमेंट हैं जो अपनी अपनी बातें लिख रहे हैं। फिर कब मिलोगी फिल्म का ये गाना मुझे बहुत पसंद है, ये एक श्रोता का कमेंट है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत, पंचम का संगीत, ये भी कई श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा ये हिंदी के बड़े खूबसूरत रोमांटिक गानों में से एक है, ये हमारे एक श्रोता का कमेंट है। एक श्रोता लिखते हैं, नैनों के द्वार पे खड़े कुछ मासूम से सपने, इन पानी भरी बदलियों को देख मुस्कुराते हैं, जैसे निस्दिन देख रहे हों बादलों की आड़ में बहारों के सपने, तुम आओ तो शायद उन्हें भी आ जाए कुछ करार। ये हमारे एक श्रोता का कमेंट है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि बरसात की रात के गाने के बिना ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा, सरकार अभी गाना आने तो दीजिए, कार्यक्रम अभी बहुत लंबा है, तो एक बार पूरा हो जाए उसके बाद देखा जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि हमारे शहर में बारिश आ जाए तो बहुत अच्छा है, जैसे नागपुर के एक श्रोता का कमेंट ठीक इस वक्त मेरी नजरों के सामने, वो लिख रहे हैं कि इतनी गर्मी है कि बारिश आ जाए तो सुकून मिल जाएगा। और इसके अलावा एक श्रोता अपने ननिहाल की याद लिख रहे हैं, जब उनकी नानी के घर पर बिजली गिर गई थी और एक भयावह माहौल था। एक श्रोता लिख रही है कि इबारत का पता नहीं चलता है, कब आती है कब दिखती नहीं है। इबारत पोस्ट की जाती है पोस्टर के साथ, और आपको वहां वो जो टेक्स्ट है उसमें देखना चाहिए, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सूरत में बारिश जैसा माहौल तो है लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। एक और श्रोता है जो पंजाब में रहते हैं, वो कहती हैं कि जब भी मैं मुंबई आती हूं तो मरीन ड्राइव पर बहुत घूमती हूं क्योंकि वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं जो एक खूबसूरत मौसम का इशारा करने वाला गाना है। जब बहुत सुंदर मौसम होता है, चाहे वो बारिश का हो, चाहे वो ठंड का हो, चाहे वो गर्मियों की थोड़ी बहुत ठंडी शाम हो, तो आप ऐसी शाम को किस जगह बिताना पसंद करते हैं ये बताइएगा।

पाकीज़ा फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना। एक श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरे सावन एक ऐसा गाना है जहां पिछले बारिशों के दिनों में हम मुंबई आए थे और मरीन ड्राइव पर इस गाने पर हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं और मेरी धर्मपत्नी छाता लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पहली बारिश हो चुकी है और प्रकृति का मिजाज थोड़ा बदला हुआ है। हमारे यहाँ आम पके हैं, जामुन पकी है, खजूर और करौंदा आ रहा है और हम विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। एक और श्रोता छत्रपति संभाजीनगर में हैं और बारिश का इंतजार कर रहे हैं। एक श्रोता कहती है कि माँ के घर जाती हूँ, वहाँ नदी बहती है और उस नदी के किनारे बैठना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा एक और श्रोता ये कह रहे हैं कि ऊपर गरज रहे हैं बादल और उनके बरसने का इंतजार है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि प्रतिदिन सुरीला सफर कार्यक्रम में जो इबारत तैयार की जाती है वो कौन तैयार करता है? भाई जो कार्यक्रम पेश करता है वही उस इबारत को तैयार करता है, यानी अगर आज ये कार्यक्रम मैं प्रस्तुत कर रहा हूं तो वो शब्द मेरे लिखे हुए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब भी ज्यादा गर्मी लगती है मैं जबलपुर के एक चौराहे पर लस्सी पीने चला जाता हूं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि हमें गीत सुना है पर हम बताएंगे नहीं, देखना ये है कि आप वो गीत सुनवाते हो कि नहीं। ये बड़ी प्यारी बात है, देखना ये है कि आप वो गीत सुनवाते हैं कि नहीं जो हमें सुनना है और जो हम नहीं बताएंगे। ये बहुत ही सही है, देख लेते हैं भाई कि हम सुनवाते हैं कि नहीं, कहीं ये वाला गाना वो वाला गाना तो नहीं। ये दो गायिकाएं, इनका नाम बताएं और साथ में फिल्म का नाम भी। सुरीला सफर, बारिश का इंतजार।

सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट की आवाज, फिल्म का नाम बरसात की रात। बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है और एक श्रोता कह रहे हैं कि हमें आपका ये वाक्य अच्छा लगा, कहीं ये वाला गाना वो वाला तो नहीं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि बारिश का आगमन सभी के लिए हर्ष का विषय होता है। शायद ही कोई होगा जिसे बारिश अच्छी नहीं लगती। और इसके अलावा वो लिख रहे हैं कि बुरा लगता था जब माँ रेनकोट पहना देती थी और फिर पापा बाइक से लेने आ जाते थे, क्योंकि बारिश में पैदल चलते हुए स्कूल जाना और वापस आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि बरसात की रात फिल्म का ये गाना है और एग्जैक्टली इबारत से मेल खाता हुआ मौसम हमारे शहर में है। बारिश सुबह से ही दस्तक दे चुकी है। चलिए अब आगे चलते हैं और अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, जो एक तरह से बारिश के आने के बाद का गाना है और आपको संगीतकार और फिल्म का नाम बताना है।

एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज मेरी सूची तो फेल हो गई है, बस यही खासियत है आपकी, आपकी मौलिकता कुछ अलग है और अदा भी अलग है। शुक्रिया भाई। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि मजरू सुल्तानपुरी, लता मंगेशकर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, क्या बात है। ये बिल्कुल मेरे अंदाज में लिखा गया है। एक श्रोताएं लिखती हैं कि बारिश तो अच्छी लगती लेकिन कीड़े मकोड़े, मेंढक, बिजली वाले कीड़े, इन सबसे थोड़ी परेशानी होती है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि आज जो बारिश के इंतजार पर आपने कार्यक्रम किया है, इतनी गर्मी है हमारे शहर में कि बस इस कार्यक्रम को सुनकर ही थोड़ी राहत मिल रही है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बचपन में जब बारिश होती थी तो मैं लोहे का तवा उलट कर रख देती थी क्योंकि घर के बड़े बोलते थे कि तवा उलट कर रख देने से बारिश बंद हो जाती है क्योंकि उस समय कीचड़ हो जाता था और वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक और श्रोता लिखते हैं कि शहर जयपुर में गोठ और सवामणि का दौर शुरू हो जाता है जिसमें दाल बाटी, चूरमा और अन्य चीजें होती हैं। हम भी आज जाएंगे सवामणि में, जयपुर के ही रमणीक स्थल पाल के बालाजी, ये उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि 1968 में आई फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का ये गाना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि परसों बारिश हुई थी रात को 11:30 बजे और उसके बाद हम बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारी शादी वाले दिन भी इतनी बारिश हुई थी कि शादी मंडप में नहीं कमरे में करनी पड़ गई थी। जी जी। इसके अलावा एक और श्रोता दिल्ली से लिख रहे हैं कि बड़ी उमस, बड़ी परेशानी है और आपने जिस तरह से बारिश के गाने सुनवाए, शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और अब ये गाना आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि जब बारिश आती है तो आपके जहन में पहला गाना कौन सा गूंजता है, आपका वाला बारिश का गाना कौन सा है, फटाफट बताइए।

भाई बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं और एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा वाला जो गाना था वो तो आप सुना चुके हैं, रिमझिम गिरे सावन। भाई खुशी हुई कि आपका वाला गाना बजा है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं, जिंदगी भर भूलेगी नहीं भूलेगी बरसात की रात, ये वो गाना है जो मेरा वाला बारिश का गाना है। इसके अलावा रिमझिम गिरे सावन एक और श्रोता है, उनका फेवरेट गाना है बारिश आते ही जो उनके जहन में आता है, और रोटी कपड़ा और मकान का एक गाना हाय हाय मजबूरी कुछ श्रोताओं के जहन में आता है, वो घटा सावरी कुछ श्रोताओं के जहन में आता है, बरखा रानी जरा जम के बरसो भी कुछ श्रोताओं का बारिश का गाना है, और इसके अलावा रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, या काली घटा छाए मोरा जिया भरमाए, रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, देखिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बन गई। इतने सारे श्रोताओं ने अपने अपने बारिश के गाने दिए। एक श्रोता है जिन्होंने कहा है कि जब बारिश आती है तो मुझे काला बाजार फिल्म का गाना याद आता है, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई मुझको वो पहली मुलाकात। और उसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोताओं ने बारिश के गाने दिए, लेकिन अभी मुझे बजाना है ये वाला गाना, नीरज के बोल एस टी बर्मन की तर्ज है। किस फिल्म का ये गाना है ये बताइए।

आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब अपने आखिरी मकाम पर आ चुका है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आ रहे हैं और कुछ गाने हैं जो रह चुके जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सका, जैसे कि ये।

0: समझ में आया आपको कि ये गाना आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने से रह गया। और इसके अलावा एक शायद और गाना है जो हम चाहते थे कि इस कार्यक्रम में शामिल हो जाए, लेकिन वो भी वक्त की कमी की वजह से शामिल नहीं हुआ। पर आप तो जानते हैं कि आप सभी के कमेंट्स भी पढ़ने हैं इस कार्यक्रम में, और आप सभी की बातें भी तो जाननी है।
1: ले प्यार ने अंगड़ाई दीवाना हुआ।
0: तो आज का सुरीला सफर कार्यक्रम बारिश के इंतजार पर केंद्रित था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। हम यही दुआ करेंगे कि आपके शहर में भी जल्दी बारिश आए और आप सभी को गर्मी से निजात मिले। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।

नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे चैतन्य पर। चेतना का पता बित्ता भर खिड़की से मत पूछो। उसे अगर सचमुच जानना है तो पहले आंगन का रास्ता मालूम करो। दुनिया हमारी आंखों में बसी है, हम उसे जितना चाहे फैला लें और जितना चाहे सिकोड़ लें। चाहे तो हम इस अनंत ब्रह्मांड को नकार दें और चाहे तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को स्वीकार कर लें। इस दुनिया में ईश्वर एक अकेली ऐसी शय है जिसका दावा बिना प्रमाण के किया जा सकता है और जिसे बिना प्रमाण के खारिज भी किया जा सकता है।

ये बात चौंकाने वाली है कि हर चीज बदल चुकी है पर फिर भी वैसी ही है। तेज कोलाहल करके बहती हुई किसी धारा की कल्पना कीजिए, जैसे ही वो मुड़ती है कोई एक बूंद बुलबुले की तरह टूट जाती है। बुलबुला छोटी छोटी बूंदों में तब्दील हो जाता है और बूंदें एक छोटी सी लहर बनकर धारा में समा जाती हैं। दृष्टि बूंदों पर ध्यान लगाने की कोशिश करती है पर व्यर्थ, संभव ही नहीं है ये, क्योंकि बूंदें तो है ही नहीं, वहां तो बस धारा है।

वो जो पल पल अलग होकर भी अंततः एक ही है, वहां ना पूर्णता है ना अपूर्णता, फिर क्या है वहां? वहां जो कुछ भी है वो पल पल बदल रहा है, हम उसे देख सकते हैं, उसे हर पल महसूस कर सकते हैं, उसके साक्षी बन सकते हैं, मगर उसे पकड़ नहीं सकते, उसे छूकर उसके भौतिक होने का प्रमाण नहीं दे सकते, लेकिन उसके साथ पूरी चैतन्यता के साथ चलते रह सकते हैं, बहते रह सकते हैं अनंत की ओर, अपूर्णता से पूर्णता की ओर।

चलिए हम भी कोशिश करते हैं अपूर्णता से पूर्णता की ओर चलने की। आज त्रिवेणी में बस इतना ही। आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
2: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
1: राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में

0: शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
1: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल एनवायरमेंट्स, द इंडियन आर्मी मस्ट रिमेन अडॉप्टिव एंड फ्यूचर रेडी। आई आर यू टू बी लाइफ लॉन्ग लीडर, लर्नर्स, कोरेजस डिसीजन मेकर्स एंड एथिकल लीडर्स।
0: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
3: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें ना तो फाइटर का पता चलता है, ना उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
2: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार तीन सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में तीन भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
2: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
5: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमरीका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने सदाबहार नगमे।

0: कर रही है।
1: केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देशभर में बालिकाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा अभियान बन गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का नामांकन भी लगभग 75% से बढ़कर 80% के करीब हो गया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपनी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन के साथ रांची जिले के तमाड़ स्थित प्रसिद्ध मां देवड़ी मंदिर पहुंचे। उन्होंने 16 बजे मां देवड़ी की विधिवत पूजा अर्चना कर राज्यवासियों के सुख शांति समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत हमारी पहचान है तथा मां देवड़ी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। एम्स देवघर में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए अलग पंजीकरण काउंटर और प्रतीक्षा कक्ष शुरू किया गया है। अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक के पास शुरू की गई इस नई सुविधा से मरीजों को पंजीकरण और इलाज में आसानी होगी। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि यह काउंटर 24 घंटे काम करेगा। इससे आपात स्थिति में भी आयुष्मान कार्ड धारकों को तुरंत मदद मिल सकेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लातेहार जिले के बरवाडी प्रखंड के उकामांड पंचायत स्थित मुरू गांव में आज कृषि विभाग की ओर से खेत बचाओ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसानों को संतुलित उर्वरक के उपयोग, जल संरक्षण तथा संभावित सूखा और कम वर्षा की स्थिति से निपटने के उपायों की जानकारी दी गई। प्रखंड कृषि पदाधिकारी बीटीएम और एटीएम ने किसानों को वैकल्पिक फसलों की खेती तथा वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रेरित किया। धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने सभी अंचल अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में लैंड बैंक तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि राज्य और केंद्र सरकार की किसी भी नई योजना के लिए जमीन उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। उपायुक्त ने कहा कि जिले में पेयजल समस्या के समाधान को प्राथमिकता दी जा रही है।
2: 3000 से ज्यादा हम लोग लास्ट 3 महीना में रिपेयर किए हैं। अभी भी 400-500 लंबी था जो बड़ी इन्वेस्टमेंट वाली योजना है और उसमें सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि तक उसमें काफी सहयोग रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पानी की समस्या कहीं नहीं हो और आज सबसे ज्यादा पानी से प्रभावित क्षेत्र है वही हम लोग आज पूरे डिस्ट्रिक्ट का ड्रिंकिंग वाटर का रिव्यू थी।
1: मॉनसून के आगमन को देखते हुए रांची नगर निगम ने जल जमाव, नालों की सफाई और पेड़ गिरने जैसी संभावित समस्याओं से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में मॉनसून प्रबंधन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निगम ने त्वरित कार्रवाई के लिए 11 क्विक रिस्पॉन्स टीमों के गठन का फैसला किया है। चतरा पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना क्षेत्र के बाबा घाट मैदान स्थित एक अर्ध निर्मित भवन में छापेमारी कर पुलिस ने ब्राउन शुगर और 2 मोबाइल फोन बरामद किए। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र के खुटगड़ी गांव में आज एक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद कार सवार फरार हो गया। थाना प्रभारी प्रमोद सिन्हा ने बताया कि मृतकों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मेहनत किया
4: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आइए सुने मन चाहे गीत। मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।
3: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
4: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
3: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के दूसरे व्यक्तियों के अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
4: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
3: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: बहुत बहुत स्वागत मन चाहे गीत कार्यक्रम में। आज का पहला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। ये हमारे श्रोता हैं राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला और सुनील प्रसाद, इसके अलावा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह, इंद्रजीत और स्वीटी छाबड़ा की चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है, पोस्टकार्ड है। शुगर फैक्ट्री गेवराई से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की फरमाइश है। और इसके अलावा ये जो गाना है ये हम सुनवा रहे हैं छत्तीसगढ़ से पोषण बंदोर, चंद्र किरण प्रीति और छाया बंदोर की फरमाइश पर, और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले की फरमाइश है। आप सभी की फरमाइश पर मन चाहे गीत का ये पहला गाना। सुलक्षणा पंडित और भूपिंदर की आवाजें, गुलजार की बोल, कनी रॉय का संगीत। फिल्म का नाम है गृह प्रवेश।

0: हाँ क्यों, क्या किया है मैंने?
1: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
0: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की फरमाइश। इसी गाने के लिए ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना गुंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा ताई गुंडाने की फरमाइश है। खांजीपीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, अशरफ नजीब, गोपाल और रमेश नाचानी, रुद्री जिला धमतरी से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू और शुभम सावित्री साहू और दतरेंगी भाटापारा से इसकी फरमाइश की है हीरामणि वर्मा ने। दूर हस्ते फिल्म का गाना

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं।
3: मुंजाई गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और अगले गाने की फरमाइश की है बीड़ शहर से प्रकाश पगारिया ने। इसके अलावा गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तनु करमरकर। इसी गाने की फरमाइश की है रेडियो कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और पूरे डागला परिवार ने। और इसके अलावा उन पाटिया सूरत से नसीम बानो और मोहम्मद आसिफ और शाहीन बानो ने। सुनिए कभी कभी फिल्म का ये गाना, साहिर लुधियानवी खयाम।

मंच गीत कार्यक्रम का अगला गाना गोविंदगढ़ मांझी वाला करणपुर राजस्थान से राजू टुटेजा, खुश दिल उर्मिला टुटेजा, गुड्डू जीनू मम्मू स्माइल टुटेजा और शिव सेठी की फरमाइश पर है। इसी गाने को सुनना चाहते हैं खंडवा से दीपक कुमार, अनीता, समर्थ शाह, श्वेता शाह, अदिति शाह और अर्पित शाह। इसके अलावा फरमाइश करने वाले श्रोता हैं रामेश्वर बाबूजी और राम सर मेड़ता राजस्थान के, ये श्रोता हैं समेलाल घीवर, युवांश कुणाल, गोविंद, ममता और मुन्नी धमनी किरवाई के श्रोता। और ये फरमाइश है बड़वाह मध्य प्रदेश से प्रवीण और मीना की। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना, फिल्म का नाम है भाभी, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त की तर्ज।

कार्यक्रम का अगला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। इंदौर से सृष्टि उपाध्याय, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, कर्ण गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, राजाजीपुरम लखनऊ से मोहम्मद दानिश, एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुल निसा, शकील अहमद और शहनाज, खुरई मध्य प्रदेश से राम सखी, परमानंद सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरण रोहित, छोटू डूंडनुन और इनका पूरा परिवार, और इसके अलावा भोपाल से रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया। अब सभी की फरमाइश पर खुशबू फिल्म का ये गाना।

कार्यक्रम का आखिरी गीत ब्रह्मचारी फिल्म से है, रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया की फरमाइश। कुछ और फरमाइशें गाना सुनने के बाद।

इस गाने की फरमाइश सिमगा से रमेश यादव, माया यादव, रिंकू सनी और कोमल की है और छतरपुर से रामेश्वर रैकवार, दीपक अहिरवार, मुकेश राकेश और सुनील रैकवार।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार पहला भाग।

0: निकट
1: राजकुमारी।
0: हाँ, मैं पिछले कुछ वर्षों से एक स्वप्न देखा करती थी। एक दिन वो आएगा, मेरे स्वप्नों का राजकुमार। सुनहरा रथ होगा उसका और उसमें जुते होंगे हंसों की तरह उज्जवल, विद्युत की भांति गतिमान धवल अश्व। यदि रथ पर वो होता तो मेरी ये यात्रा क्या इतनी निर्जीव होती? न जाने क्यों कभी कभी मेरे मन में भय की आंधी उठती है, कहीं कहीं ये यात्रा मेरे स्वप्नों की शव यात्रा ना।
1: राजकुमारी, आपके मुंह से ऐसी अशुभ बात।
2: सुनो, हम गांधार राज्य की सीमा पर पहुंच गए हैं। हमारा दल आज रात्रि यहीं विश्राम करेगा। कल सूर्योदय से पूर्व ही हमारी हस्तिनापुर की यात्रा प्रारंभ होगी। राजपुत्र शकुनी की आज्ञा का पालन हो।

0: राजकुमारी, आप अभी तक सोई नहीं?
1: प्रयत्न करने के बाद भी नींद नहीं आ रही।
0: आप अकारण ही बहुत सोचते हैं। आपकी शंकाएं निर्मूल हैं, आपका भय अकारण है।
1: तो मेरे लिए स्वयंवर का आयोजन क्यों नहीं हुआ? मुझे अपने अधिकार से वंचित क्यों रखा गया?
0: स्वयंवर होता भी तो क्या आप दूसरा निर्णय ले सकती थी? हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र को छोड़कर क्या आपकी जयमाला दूसरे के गले में पड़ सकती थी? इसे अपना सौभाग्य समझिए कि स्वयं महाराज भीष्म आपके लिए प्रस्ताव लेकर आए।
1: भीष्म भीष्म भीष्म, ये नाम बार बार सुनकर मुझे क्रोध आने लगा है। हर बात में भीष्म, जैसे वो विधाता हो, नियामक हो।
0: पूरा जीवन जिसने त्याग किया हो, अपने सुख का सर्वस्व देकर जिसने हस्तिनापुर की शक्ति को अनुप्राणित किया हो, उस भीष्म का नाम तो आएगा ही।
1: मेरा मन तो दूसरी ही बात सोचता है।
0: अब सोचना बंद करें राजकुमारी, अपनी मनस्थिति को भावी जीवन के लिए ढालने का प्रयत्न करें।
1: लाख प्रयत्न करती हूँ किंतु उस विचार से छुटकारा नहीं मिलता। मुझे लगता है मेरे पिता ने मुझे बेच दिया।
0: राजकुमारी,
1: भीष्म की शक्ति के सामने अपना शीश झुका दिया है।
0: फिर वही
1: अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए मुझे बलि बनाया जा रहा है। ये कार्य व्यापार ऊपर से जितना सीधा सरल दिखाई देता है उतना है नहीं।
0: जब आपने पहले से ही धारणाएं बना ली हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन राजकुमारी, जब आप हस्तिनापुर पहुंचेंगी तो आपका भव्य स्वागत होगा, और जब आप वहां का वैभव देखेंगी तब गांधार को सदैव के लिए भूल जाएंगी, और तो और मुझे भी भूल जाएंगी।
1: ईश्वर करे तेरी ही वाणी सच निकले।

0: मई, मैं कहती थी ना, देखिए पूरा हस्तिनापुर उमड़ा रहा है। मार्ग के दोनों ओर सहस्त्रों व्यक्ति आपके स्वागत में खड़े हैं। आपके आगमन से हस्तिनापुर में कितना उत्साह है। वो देखिए, आपके मार्ग पर फूल बिखरे हुए हैं।
1: सचमुच हस्तिनापुर अद्भुत नगर है। इतने ऊंचे ऊंचे भवन, इतने सुंदर उद्यान, इतना धन धान्य, जितना सुना था उससे कहीं अधिक। वो देखो, वो कौन भव्य राजपुरुष खड़ा है?
0: वो ही तो है भीष्म पितामह, कुरुवंश की सत्ता के केंद्र बिंदु, सत्य जिनका व्यक्तित्व है, त्याग जिनका श्वास है, तपस्या जिनकी देह है, ब्रह्मचर्य का तेज जिनकी आत्मा है। वो भीष्म स्वयं आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। हस्तिनापुर का प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी अगवानी करने खड़ा है राजकुमारी।
1: क्या

0: राजकुमार धृतराष्ट्र थे।
1: वो अभी कैसे आएंगे, उनसे तो विवाह मंडप में ही भेंट होगी। इतनी भी अधीरता अच्छी नहीं है राजकुमारी।
0: देखिए महाराज भीष्म रथ की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़कर प्रणाम कीजिए।
2: कुरु वंश के महापराक्रमी तपस्वी महापुरुष को ये गांधार कन्या प्रणाम करती है।
3: आयुष्मती भव, कहो पुत्री, यात्रा कैसी रही, कोई कष्ट तो नहीं हुआ?
2: कुल देवता की कृपा और आपके आशीर्वाद से यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई महाराज।
3: पुत्री गांधारी, आज तुम्हारे आगमन के साथ ही मैं एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है राजकुमार धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व के अधूरेपन को तुम भर दोगी। तुम्हारे आगमन के साथ ही हस्तिनापुर के जीवन में सुख के नए अध्याय का प्रारंभ होगा।
2: मैं आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगी महाराज।
3: साधु, मैंने तुम्हारी और राजकुमार शकुनी के ठहरने की व्यवस्था एक विशेष भवन में कराई है, चलकर विश्राम करो।
2: जो आज्ञा।

0: तो कुछ बोलती क्यों नहीं? शकुनी कब गांधा लौट रहा है? तू बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमारी, अब राजकुमार शकुनी गांधार नहीं लौटेंगे।
0: क्यों?
1: वे अब स्थायी रूप से यहीं रहेंगे। भीष्म पितामह ने उनके लिए अलग भवन की व्यवस्था कर दी है।
0: लेकिन शकुनी यहाँ क्यों रहना चाहता है? अपनी बहन के ससुराल में आश्रय लेना क्या उसके लिए सम्मानजनक होगा? क्या यहाँ के वैभव ने उसे भी मोल ले लिया? तू चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमार शकुनी आपके हित में यहाँ रहना चाहते हैं।
0: मेरे हित में? क्या मैं अपंग हूँ? क्या मुझ में विचार शक्ति नहीं है?
1: मुझसे न पूछे तो अच्छा है। सत्य को कह पाने का साहस मुझ में नहीं है। संभवतः सत्य को देख पाने का साहस आप भी न बटोर सके।
0: ऐसा क्या हो गया? मैं नहीं चाहती कि शकुनी यहाँ रहे। यहाँ कितना भी वैभव क्यों ना हो, किंतु उसका यहाँ रहना बहुत अपमानजनक है। मैं चलकर उसे समझाती हूँ।
1: अब बहुत देर हो गई है राजकुमारी। राजकुमार शकुनी का यहाँ रहना सचमुच आपके हित में है। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना बड़ा षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचा जाएगा। उस षड्यंत्र में भीष्म पितामह जैसे तपस्वी व्यक्ति और आपके पिता जैसे तेजस्वी व्यक्ति सम्मिलित होंगे।
0: षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र?
1: वंचना हुई है राजकुमारी। जिसे हम स्वर्ग समझ रहे थे वो और कुछ नहीं, एक चिरंतानंदकारमय पद की अनंत यात्रा है। ये वैभव, ये सम्मान, पद, सत्ता, सब रेत की नींव पर खड़ा ऐंद्रजालिक भवन है राजकुमारी। अब ईश्वर ही आपकी रक्षा कर सकता है। हाँ राजकुमारी, सत्य के कुरूप जुगुप्समय स्वरूप का साक्षात्कार कीजिए। अपने ही हाथों अपने सभी स्वप्नों का अग्नि संस्कार कीजिए। यदि साहस है तो सुनिए, महाराष्ट्र धृतराष्ट्र ज्योतिहीन है। जन्मान सूर्य के प्रकाश के अस्तित्व का उन्हें बोध नहीं, वो दृष्टिहीन है, दृष्टिहीन।

0: पुत्री गांधारी, तुमने नेत्रों पर पट्टी क्यों बांध ली? खोल दो इसे।
1: नहीं आर्य श्रेष्ठ, ये संभव नहीं। ये मेरी प्रतिज्ञा है।
0: प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा?
1: महाराज, मेरे पति दृष्टिहीन है। उन्होंने संसार का दृश्य सुख एक क्षण के लिए भी नहीं भोगा है। उनके भाग्य में अनंत अंधकार है। उनके दुख के साथ समरस होने के लिए क्या ये आवश्यक नहीं कि मैं भी अंधत्व को अंगीकार कर लूं?
0: किंतु तुमने धृतराष्ट्र को देखा कहां? कल विवाह के समय

0: उसे एक बार देख तो लो।
1: क्या लाभ? क्या वे मुझे देख पाएंगे? जब वे मुझे बिना देखे स्वीकार कर सकते हैं तो क्या मैं उन्हें बिना देखे स्वीकार नहीं कर सकती? उन्हें देखकर संभव है मेरे मन में मोह जाग जाए, संभव है मेरी प्रतिज्ञा डगमगाने लगे।
0: तुम अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझती भी हो?
1: धृष्टता के लिए क्षमा करें देव, किंतु आपसे एक प्रश्न पूछूं?
0: पूछो।
1: आपने कभी अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझा?
0: गांधारी।
1: या आपने अर्थ समझकर ही प्रतिज्ञा की थी? हाँ आर्य श्रेष्ठ, पूरा जीवन एकाकी बिताने की भयावह प्रतिज्ञा क्यों की आपने? केवल पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ही ना, केवल एक आदर्श स्थापित करने के लिए। फिर मुझे क्यों रोकते हैं?
0: विवाह के पश्चात तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व ही सापेक्ष हो जाएगा। तुम्हारे निर्णयों के सुख दुख धृतराष्ट्र को भी भोगने पड़ेंगे। मैं फिर कहता हूं, मेरी और तुम्हारी प्रतिज्ञा के आधार ही अलग हैं। हट, छोड़ दो।
1: अब संभव नहीं है आर्य श्रेष्ठ। राजपुत्र के दृष्टिहीन होने की जानकारी यदि मुझे गांधार में ही मिल गई होती तो मैं वहीं से आंखों पर पट्टी बांधकर चलती, किंतु मेरे साथ प्रवंचना की गई है।
0: प्रवंचना का विचार मेरे मन में कभी नहीं था गांधारी, किंतु जो कुछ हुआ उसके लिए मैं लज्जित हूं।
1: कुरुवंश में ये पहली घटना नहीं है आर्य श्रेष्ठ। आप इसी प्रकार अंबा, अंबिका और अंबालिका को भी उठा लाए थे। उन भोली कन्याओं से आपने ही स्वयंवर का अधिकार छीना था। अंबा का सारा जीवन इसी दुख की आग में चलता रहा।
0: उस घटना का स्मरण न दिलाओ पुत्री।
1: क्यों ना दिलाऊं? आज जन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने के बाद भी आप ऐसे राजपुत्रों के विवाह में रुचि लेते रहे जो स्वयंवर में वरमाला के अधिकारी नहीं हो सकते थे।
0: तुम नहीं जानती गांधारी, मैंने विवाह नहीं किया, किंतु अपने पिता का वंश दीप प्रज्वलित रखने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ।
1: और आपकी वचनबद्धता की वेदी पर मेरी बलि दी जा रही है। आर्य श्रेष्ठ, मैं अंबा नहीं बन सकती, किंतु गांधारी तो बनी रह सकती हूँ। मेरी आंखों पर बंधी यह पट्टी राजनीति, शक्ति और सत्ता द्वारा स्त्री की स्वाधीनता पर किए गए आक्रमण का एक ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह बनकर रहेगी।
0: गांधारी, अपने निःस्वार्थ के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया। फिर भी यदि तुम्हारे प्रति मुझसे अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करो।
1: मैं क्षमा करने वाली कौन होती हूँ? और अपराध करने के बाद क्षमा मांगने के शिष्टाचार में मेरा विश्वास भी नहीं है। इस प्रवंचना ने संसार के प्रति मेरा विश्वास ही छीन लिया है। अब इस संसार को खुली आंखों से देखने की न इच्छा है न साहस। आर्य श्रेष्ठ, विवाह की तैयारी कीजिए।

0: con?
1: Mẹ.
0: Mẹ?
1: Thích Rashk.
0: Oh, आप विवाह के बाद हमारी पहली रात्रि है. आइए आइए ना.
1: मुझे तनिक सहारा दो गंधारी. न जाने क्यों इन लोगों ने मेरा कक्ष बदल दिया. जानते तो हैं स्थान बदल जाने से मुझे कितनी कठिनाई होती है. अपना हाथ मुझे दो गंधारी.
0: किंतु महाराज मैं मेरे लिए भी तो.
1: क्या?
0: अच्छा आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूँ.
1: क्या हुआ, गिर पड़ी?
0: लगता है किसी पात्र से टकरा गई. फिर प्रयत्न करती हूँ.
1: प्रयत्न? तुम्हें भी प्रयत्न करना पड़ता है?
0: मेरे लिए ये बहुत नया नया है महाराज, किंतु कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा.
1: तो क्या तुम भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. पिताग्रज भीष्म ऐसा नहीं कर सकते. माता सत्यवती झूठ तो नहीं कह सकती. उन्होंने तुम्हारी आंखों की उपमा कमल, हरिण, भ्रमर, न जाने किस

0: स्थिति थी
1: महाराज।
0: कांधारी, मैंने न हरण देखा है न कमल, परंतु सोचता हूँ लोग जिसे सुंदर कहते हैं वैसी तो आंखें अवश्य होंगी तुम्हारी, किंतु तुम भी
1: क्या? माता सत्यवती और भीष्म पितामह ने आपको कुछ नहीं बताया
0: क्या?
1: महाराज मुझे क्षमा करें, मुझे स्वयं सहारे की आवश्यकता है।
0: क्या तुम भी ज्योतिहीन हो?
1: नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है महाराज, मैंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है।
0: क्या?
1: मेरा पातिव्रत्य यही मांग करता है, यदि आप संसार को नहीं देख सकते तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है, मैंने अंधत्व स्वयं धारण किया है।
0: और तुम इसे पातिव्रत्य कहती हो? ये तुमने क्या किया गांधारी? ये किसने कह दिया तुमसे कि इससे मैं प्रसन्नता का अनुभव करूंगा?
1: तो क्या आप इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न नहीं हैं?
0: मैं अंधत्व का दुख जानता हूं गांधारी, मैं तो सोचता था तुम्हारी आंखों से संसार को देखूंगा, तुम मेरा अधूरापन किसी सीमा तक पूरा कर दोगी, और तुमने स्वयं अंधत्व स्वीकार कर लिया, यानी अब हमारी गृहस्थी में केवल अपूर्णता, केवल दृष्टिहीनता।
1: महाराज, मैं सोचती थी कि
0: अब भी समय है गांधारी, तोड़ दो अपनी प्रतिज्ञा। देखो, मैं तुम्हारी दृष्टि का सहारा लेकर जीना चाहता हूं,
1: किंतु मैं तो प्रतिज्ञा कर चुकी
0: हूं। गांधारी, देख लेना, तुम्हारी ये प्रतिज्ञा न तुम्हें सुखी बना पाएगी, न मुझे और न कुरुवंश को। ये अंधत्व हमें बहुत महंगा पड़ेगा, ये सत्य सहनीय है, असहनीय है ये सत्य, असहनीय है ये सत्य।

0: महारानी की जय हो। देवी, एक समाचार है।
1: क्या?
0: महारानी कुंती को पुत्र लाभ हुआ है।
1: पुत्र लाभ?
0: हाँ महारानी,
1: बहुत शुभ समाचार है। कुरुवंश की नई पीढ़ी का पहला प्रतिनिधि जन्मा है। महाराज ने महोत्सव के आयोजन की घोषणा कर दी ना?
0: आश्चर्य है महारानी।
1: क्यों, इसमें आश्चर्य की क्या बात? क्या ये स्वाभाविक नहीं?
0: आप नहीं समझेंगी महारानी, कभी नहीं।
1: क्या?
0: महारानी कुंती का पुत्र ही अब हस्तिनापुर का।
1: ओह, पगली कहेंगी। क्या तू जानती नहीं कि महाराज धृतराष्ट्र ज्येष्ठ है? वस्तुतः वे ही महाराज हैं, इसलिए ये निर्विवाद है कि नियमानुसार उनका ही पुत्र राज्य का अधिकारी होगा। महाराज पांडु तो शासन संचालन में महाराज के मात्र सहायक हैं। तेरा भ्रम निरर्थक है।
2: कांधारी,
1: महाराज आ रहे हैं, तू जा।
0: जो आज्ञा महारानी।
2: सुना तुमने कांधारी, महर्षि व्यास का मंत्र सिद्ध हो गया, कुंती ने पुत्र को जन्म दिया।
1: हाँ महाराज, सुना, जानकर सुख भी मिला। महाराज पांडु की स्वीकृति लेकर महारानी कुंती ने धर्मराज का जो आवाहन किया था वो फलीभूत।
2: हाँ गांधारी, मैंने समस्त हस्तिनापुरी को सुसज्जित करने का आदेश दे दिया है। निरंतर 3 दिन तक भव्य आयोजन होगा। क्यों, उचित है ना?
1: सर्वथा उचित है महाराज। वंश वृद्धि का समाचार भला किसे सुखदायक नहीं लगता। किंतु क्या कुंती पुत्र ही अब राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा?
2: उत्तराधिकारी? इस विषय पर तो हमने सोचा नहीं थे गांधारी।
1: महाराज, ज्येष्ठ तो आप हैं, राजा तो आपका ही पुत्र होना चाहिए।
2: होना चाहिए गांधारी, ये ठीक है, परंतु मेरी असमर्थता के कारण राज्य का सारा कार्य संचालन तो पांडु ने ही किया है। क्या उसके पुत्र का कोई अधिकार नहीं होगा?
1: महाराज, कहीं आपके हृदय की उदारता आपके पुत्र के जीवन के लिए अभिशाप न बन जाए?
2: मैं दृष्टिहीन हूँ देवी। यदि पिताग्रज भीष्म चाहते और पांडु हट करते तो क्या मुझे शासनाधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था? परंतु उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। मैं इतना कृतज्ञ तो नहीं कि उनके उपकार भूलकर उनकी संतान को उसके अधिकार से वंचित कर दूं?
1: अर्थात हस्तनापुर का भावी शासन?
2: नहीं जानता देवी, अन्य विवादों की भांति इसका निर्णय भी महाराज भीष्म करेंगे।
1: किंतु महाराज, ये तो अनर्थ होगा।
2: धैर्य रखो देवी गांधारी, कौन जानता है हमारे वंशजों के लिए नियति के गर्भ में क्या छिपा है। सुनो, गर्भधारण तो महारानी कुंती और तुमने साथ ही किया था। नियति तुम्हारे पक्ष में भी हो सकती थी, तुम्हारी कोख से भी हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ।
1: महाराज,
3: महाराज धृतराष्ट्र की जय हो।
2: कहो सूत।
3: महाराज भीष्म विशेष मंत्रणा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: अब हमें अनुमति दो देवी गांधारी, ईश्वर कल्याण करे।
1: मेरी कोख से भी तो हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्यों नहीं? क्यों नहीं हुआ? प्रबल ऐसी कोख का क्या लाभ? ऐसी संतान से क्या मैं बाजी नहीं रह सकती थी?

0: महारानी, एक बार, केवल एक बार। नहीं, देखिए तो कितना तेजस्वी है, कितना चौड़ा माथा, देह की स्वर्ण कांति, सुनहरे केश,
1: आंखें कैसी हैं?
0: बहुत मोहक,
1: काश मैं देख सकती।
0: किस पर किया है?
2: किस पर?
0: दोनों पर। आप दोनों की आकृतियों में जो सुंदरतम है वही इसने पाया है। महारानी, महारानी, क्या आप इसे देखेंगी नहीं? एक बार तो देख लीजिए।
1: नहीं, मैं इसे नहीं देख पाऊंगी।
0: एक क्षण के लिए देख लीजिए, विश्वास रखिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी।
1: नहीं, एक बार देख लेने के बाद मेरा मोह पड़ जाएगा, इसके बाद आंखों पर पट्टी बांधने की इच्छा ही नहीं होगी। रहने दे।
0: कैसा भाग्य लेकर जन्मा है ये बालक। मां देखना नहीं चाहती, पिता देख नहीं सकता, न जाने संसार को ये किस दृष्टि से देखेगा।

0: महाराज द्रुपद के यहाँ से अभी तक कोई समाचार नहीं आया।
1: क्या आपको विश्वास है कि द्रौपदी दुर्योधन का वरण करेगी?
0: क्यों नहीं, दुर्योधन से कौन स्पर्धा कर सकता है।
1: हाँ, कुंती के पुत्र अब कहाँ हैं? उन्हें तो वर्णावत का लाक्षाग्रह खा गया।
0: बहुत दुखद प्रसंग है ये गंधारी। कई बार हृदय में आशंका उठती है, कहीं इसमें दुर्योधन का कोई षड्यंत्र तो नहीं।
1: इस आशंका का कारण?
0: कोई विशेष कारण नहीं, दुर्योधन पांडवों के प्रति सदैव ईर्ष्यालु रहा है। फिर शकुनी की मंत्रणा और साहचर्य सुखद तो हो नहीं सकते।
1: महाराज, पांडवों के प्रति आपका अतिरिक्त मोह ही दुर्योधन की ईर्ष्या का कारण रहा है।
0: ये क्या कह रही हो गंधा?
1: हाँ महाराज, बाल्यकाल से ही

0: भीम और अर्जुन मेरे पुत्रों को सताते रहे हैं, पर आपने कभी उन्हें प्रताड़ित नहीं किया। यदि दुर्योधन भीम पर अंकुश न रखता, समय समय पर उसे पराजित न करता, तो आज मेरे पुत्रों में से अधिकांश तो जीवित ही ना रहते।
1: जानता हूँ गंधारी, सोचता था पांडु नहीं रहे तो पांडवों की चिंता का भार भी मुझ पर ही आ पड़ा है। सचेष्ट था कि अनजाने में भी कहीं पांडवों के प्रति मुझसे अन्याय न हो जाए, इसीलिए जब तक पांडव रहे उनके प्रति सहृदय रहा। संभव है इसी भावना ने मुझे अपने पुत्रों के प्रति किंचित निर्मम बना दिया। तुम समझते हो मैं अपने पुत्रों से प्रेम नहीं करता?
0: नहीं महाराज, मेरा ये आशय कदापि न था।
2: महाराज।
1: कौन? विदुर, आओ आओ।
2: बहुत शुभ समाचार है महाराज।
1: अच्छा?
2: द्रुपद नरेश के यहाँ से अभी अभी दूत आया है।
1: स्वयंवर का क्या हुआ?
2: हमारा कुल शक्ति संपन्न हो गया है महाराज। द्रौपदी अब पुत्र वधु के रूप में हस्तिनापुर आ रही है।
0: मुझे विश्वास था कि दुर्योधन अवश्य जीतेगा।
2: क्षमा करें देव, द्रौपदी का वरण दुर्योधन ने नहीं अर्जुन ने किया है।
0: अर्जुन ने?
1: अर्जुन जीवित है?
2: हाँ महाराज, भाग्यशाली पांडव जीवित हैं।
1: कैसे?
2: लाक्षाग्रह का निर्माण किसी का षड्यंत्र था महाराज। पांडवों को उसका आभास हो गया था, वे वहां से वेश बदलकर बच निकले। स्वयंवर की शर्त पूरी होने पर ही पांडवों ने अपना वास्तविक परिचय दिया।
1: विदुर, तुम्हारी शुभ सूचना से मुझे असीम आनंद हो रहा है और मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। समस्त हस्तिनापुरी को सज्जित किया जाए, मंगलोत्सव का आयोजन हो, पांचाल राज की पुत्री का भव्य स्वागत किया जाए।
0: दुर्योधन असफल हुआ, पांडव जीवित।

0: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। और आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। रांची के आर्यभट्ट सभागार में आज विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 यंग प्रोफेशनल्स राउंड टेबल का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विषय पर केंद्रित था। इस मौके पर माय भारत झारखंड की डिप्टी डायरेक्टर श्वेता सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से देशभर के युवाओं को विकसित भारत के संबंध में अपने विचारों को साझा करने का मौका मिलता है। देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में 14वें और 15वें वित्त आयोग की योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा बंद पड़ी जल मीनारों को शीघ्र चालू कर रिपोर्ट देने को कहा। सरायकेला खरसावा की पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने आदित्यपुर स्थित जियाडा शिविर कार्यालय में जन सुनवाई शुरू की है। उन्होंने कहा कि पुलिस को जनता के करीब लाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। फिलहाल सप्ताह में एक दिन शिकायतें सुनी जाएंगी। चतरा जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपायुक्त रवि आनंद ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों और गांवों में जाकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगा। सरायकेला खरसावां पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए योगेश्वर प्रधान को गिरफ्तार किया है। उसके पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। और मॉनसून के आगमन को देखते हुए रांची नगर निगम ने जल जमाव, नालों की सफाई और पेड़ गिरने जैसी संभावित समस्याओं से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में मॉनसून प्रबंधन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं।
1: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
1: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आप कोरियोग्राफी करते थे
0: लेकिन
1: फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके न्यूएंसेस अलग होते हैं,
0: एकदम अलग सर,
1: उसके ट्रिक्स अलग होते हैं,
0: एब्सोल्युटली
1: वो तो आप जानते नहीं थे,
0: एब्सोल्युटली।
1: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया?
0: फिल्मी जो मुझे मिली पहली फिल्म जो थी, छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था, लगान में वॉल्स का सेक्शन था और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: बड़ी फिल्म थी, बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए, वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूंगा कि यू नो मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली, तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था,
1: जाहिर सी बात है ना।
0: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे तो वो लोगों के नजर में अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूं कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया, लोगों को लगा कि मैंने बड़े नाम बड़े फिल्म के साथ जुड़ गया हूं, तो अगर आशुतोष जी ने विश्वास किया है तो इस बच्चे में कुछ ना कुछ होगा, तो मुझे सेकंड फिल्म मिल गई जो झंकार बीट्स थी, वो भी फिट हो गई।
1: झंकार बीट अपने आप में एक अलग फिल्म थी,
0: करेक्ट,
1: जिसमें खास तौर से राहुल देव बर्मन का जिक्र था, आरडी बर्मन साहब का, और अगर आप देखें तो राहुल देव बर्मन के हर एक गाने में आज भी वही कशिश है,
0: करेक्ट,
1: वही ताजगी है, जबकि वो उनकी साज से निकले होंगे,
0: करेक्ट,
1: तो उन गानों पर उस संगीत पर कुछ उसमें कुछ नयापन लाना

0: हाँ।
1: और फिर उस पे डांस, वो एक अलग चैलेंज नहीं था आपके लिए?
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि धुन जो थी, जो विशाल शेखर पहली फिल्म थी उनकी और सुजॉय घोष की भी पहली फिल्म थी वो, सो तो धुन बना रहे थे, इट वाज मतलब यू नो एक वेरिएशन था ऑफ आर डी बर्मन को लेकर और उसके संगीत को समझकर वो आज की तारीख में वैसा वाला संगीत बना रहे थे और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने बने उसी टेम्पलेट में, लेकिन एक नया ट्विस्ट देना था, एक नया अंदाज देना था आज की पीढ़ी जिसके साथ जो कनेक्ट कर पाए। तो वो इंस्ट्रक्शन भी सुजॉय ने दिया था कि मुझे थोड़ा पुराना वाला फ्लेवर चाहिए और थोड़ा आज का।
1: उसमें डांस में फिर क्या किया, मैं वही जानना चाहता हूँ।
0: तो डांस में इट वॉज नॉट सच अ डांस ओरिएंटेड सॉन्ग, इट वॉज मोर अबाउट, इट वॉज अ रॉक बैंड, तो वो बैंड है फिल्म में भी, वो लोग सब संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, तो उनको नाचना नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उनको फिल्माया गया था एक रॉक स्टार वाली फील आनी थी। एक रॉक बैंड कैसे आते हैं, उनके बीच में कैसा छोटी छोटी अनबन होती है, कैसे वो अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन रात को वो आके यू नो गाते हैं और साथ में मिलते हैं, तो वो वाली कहानी थी। तो उस किरदार के हिसाब से मैं बन गया था, आई डिडंट हैव मच ऑफ डांसिंग टू डू, बट पिक्चराइजेशन हैड टू बी डन वेल। एज अ कोरियोग्राफर समटाइम्स हर गाना आपको आर्टिस्ट को नचवाना नहीं पड़ता, सिचुएशन के हिसाब से आपको वो दर्शाया जाना चाहिए ताकि वो अच्छा लगे देखने में, फील करे और वो कैरेक्टर से बाहर ना निकले। ओनली ड्रीम सीक्वेंस जब रिया सेन और शायन मुंशी, वो एक्टर भी थे, उनका एक गाना था जो शान ने गाया था, दिल ने तुमको चुन लिया है तुम भी मुझको चुनो ना, ला ला ला ला ला ला ला ला, बहुत अच्छा प्यारा गाना था। वो गाने में ड्रीम सीक्वेंस में थोड़ा डांसिंग दिखाया गया था, बट मोस्टली इट वॉज मोर ऑफ अ फील का गाना था।

एक्चुअल फिल्म में डांस एकदम कहर वाला डांस जो किया वो तीसरी फिल्म में आया नाच, जो अभिषेक बच्चन और अंतरा माली के साथ था, और जो इसके डायरेक्टर साहब थे राम गोपाल वर्मा। वो फिल्म हाथ ऐसे आई कि अंतरा माली मेरे शोज देखती थी स्टेज में। मुझे तब भी, मैं फिल्मों में काम करता था लेकिन मुझे स्टेज का बहुत बड़ा लगाव था और मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना ज्यादा पसंद था, तो मैं अतरंगी चीजें स्टेज पर ट्राई करता था, एकदम अतरंगी, जो मतलब एकदम लोग बोलते थे क्या कर रहा है तू स्टेज पे बट कुछ भी जो भी दिमाग में आया करता था, लेकिन उसका कुछ चीनो सर या पैर नहीं था, बट एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, और मैं वो स्टेज पे दिखाता था। तो उसको वो स्टाइल बहुत पसंद आया, अंतरमाली को, और उन्हें बोला कि मुझे आपका ये स्टाइल बहुत पसंद है और मैं ये सीखना चाहती हूँ और मैं इसको अपने फिल्म में लेके आना चाहती हूँ। और एक फिल्म लिखी है जो मैंने लिखी है और राम गोपाल वर्मा ने लिखी है, उसका फिल्म का नाम है नाचा पे कोरियोग्राफी की लाइफ पर ये फिल्म है। और फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि ये फिल्म तो मेरे ऑलमोस्ट मेरे से मिलती जुलती है, बिकॉज इट वॉज अ कोरियोग्राफर हु वॉज नॉट अ वेरी ट्रेडिशनल कोरियोग्राफर, जो हटके है, जो हटके सोचता है। तो उसने वो जो मेरा जो चाल चलन है, जिस तरीके से मैं बैठता था, वो मुझे नोटिस करने लगी अंतरा माली जी, और वो हर एक चीज समझने लगी कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे डांस करता हूँ, कैसे समझाता हूँ। तो वो सब चीजें उसने मुझे स्टडी कर दिया और वही चीज वो अपने फिल्म में नाच में करवाना चाहती थी। तो जो कंटेम्प्रेरी डांस का जो मैंने तड़का दिया उस गाने में, तो क्रिटिकली मुझे बहुत सारा लोगों ने फोन किया कि ये फिल्म बहुत हटके है, तुमने कुछ और ही कर दिया, कुछ अलग ही दिख रहा है, डांस नहीं पता नहीं क्या, कुछ एक अलग नजारा दिख रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्रिएटिवली मैंने कुछ अलग सोचा, मैंने बोला कि जो लोग करते हैं वो नहीं करूंगा मैं, कुछ अलग अलग अलग। तो उसके पीछे मैंने क्रिएटिवली कुछ अलग ही डांस करवाया और वो बहुत दिख कर आया और लोगों को पसंद आया। सो इन माई क्रिएटिव जर्नी आई हैव डन ओनली 10 फिल्म्स, नॉट मच, बट दिस इज वन ऑफ देम दैट काइंड ऑफ, यू नो, एक अलग, एक पहचान मुझे इस फिल्म से मिली।

0: अच्छा, अभी आपने इसके पहले ये बात कही कि अंतरा माली ने आपको एक स्टेज शो में देखा और फिर और आपने ये बताया कि स्टेज शोज में बड़े अतरंगी से डांस आप करते थे, तो हाँ। गाने भी अतरंगी चुनते होंगे?
1: बहुत ही
0: इस तरह के क्या, क्योंकि अतरंगी गानों के लिए कुछ खास नाम भी हैं हमारे, जैसे किशोर कुमार साहब हैं,
1: हाँ।
0: अमित कुमार जी के भी गाने रहे हैं, तो आपके अतरंगी गाने किस तरह के होते थे?
1: वेल, अगर हिंदी गाने तो यूज नहीं करते थे, बिकॉज वी यूज्ड टू यूज यू नो नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं था, तो हम लोग म्यूजिक क्रिएट करते थे, लेकिन इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे थे जो मतलब यू नो देसी फिल्मों से थे। कुछ गाने बहुत ही यू नो दिल को करीब छूने वाले जो एकदम सोलफुल थे, जैसे ए जिंदगी गले लगा ले, और मुझे गजल्स बहुत पसंद हुआ करते थे, गजल्स जैसे कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, क्योंकि मैं स्टेज पे ना मूड लेके चलता था।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो मेरी कहानियां होती थी, तो मुझे ऐसे वाले मूड वाले गाने बहुत पसंद हुआ करते थे, जहां पे एक मूड फील हो जाता है, जो बहुत ही संजीदा, जो बहुत ही जिसमें लिखावट में एक फीलिंग होती है। तो मुझे अर्थ के गाने, सदमा के गाने या मासूम के गाने या ऐसे फिल्मों के जहां पे बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरती से लिखे हुए, जो बहुत ही यू नो सोचकर, या साहिर लुधियानवी के गाने, सभी मुझे पसंद थे। एक गाना था जो मैं जूझ रहा था लाइफ में, संसार से भागे फिरते हो,
0: चित्रलेखा,
1: चित्रलेखा, करेक्ट सर, मीना कुमारी। तो वो गाना मेरे लिए वॉज अ पिविटल मोमेंट, जब मैंने वो गाना सुना और जो जो उसका अर्थ था, क्योंकि मैं उसी मैं भी लाइफ में जूझ रहा था कि यू नो मटीरियलिज्म इज राइट ओके और इज इट कि सब कुछ त्याग देना, भोग में है या त्यागने में, तो क्या है। सो आई थिंक ऐसे गाने जब मैंने सुना करता था, माइंड की क्या सोच है, और उसको फिल्मों में दिखाया गया था। सो आई थिंक आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाई ऑल ऑफ दीज ग्रेट आर्टिस्ट एंड ग्रेट सॉन्ग्स एंड ग्रेट लिरिसिस्ट, क्योंकि जो म्यूजिक एक तरफ, लेकिन जो अच्छा लिखते हैं उस पर भी अमल करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कोरियोग्राफर, बिकॉज उससे कोरियोग्राफी बनती है। तो ये गाने मेरे लिए दिल के बहुत करीब रहे।

0: अभी आपने जो ये बातें की, गजल की बात की, लिरिक्स की बात की, आपने बात की कि कहीं कोरियोग्राफर्स उससे बनते हैं, ये एक सवाल मेरे मन में उठ रहा था कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली?
1: नहीं ली।
0: आपने कोरियोग्राफी की अगर बात की जाए तो फिल्मों में ऐसे कोई बहुत
1: असिस्ट भी
0: नहीं, फिल्में भी नहीं की या किसी को असिस्ट भी नहीं किया। बावजूद इसके आप वो जो कोरियोग्राफी के लिए जो एक खास चीज होती है जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं, देखिए ऐसा एक डांस देख के डांस कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन एक डांस को खुद क्रिएट करना, एक लिरिक्स को डांस में कन्वर्ट करना,
1: करेक्ट,
0: वो एक अलग चीज है जो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट कह सकते हैं जिसको,
1: अंदर से आता है।
0: इसको आपने महसूस कैसे किया? आपने इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, देखिए गॉड गिफ्ट है, लेकिन वो गिफ्ट आप बाहर कैसे निकाल कर, आपने की जो प्रोसीजर है वो कैसे सीखी, उसको कैसे समझा आपने?
1: सो कोरियोग्राफी ना दो तरीके से होती है, आप गाने को सुनते हो और गाना आप पर हावी हो जाता है और आपका शरीर उस गाने को सुनकर, उसके कानों के ध्वनि को सुनकर आपका अंग यू नो डांस करने लगता है, वो एक तरीका है। लेकिन मैं दूसरा तरीका अप्लाई करता हूँ, मैं म्यूजिक लगाता ही नहीं हूँ, मैं जो थॉट है जो सोच है उसको लेके चलता हूँ और मेरे असिस्टेंट को बोलता हूँ कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मुझे गौर से देखना और याद रखना और मुझे कॉपी करते रहना, क्योंकि मुझे आपको अगर बोलोगे कि अभी वही चीज़ वापस करो तो मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन जो भी निकल रहा है मेरे अंदर से उस पर थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी होंगी कुछ चीज़ें नहीं। तब उतना ध्यान नहीं था कि कैमरा भी लगा सकते हो और आप रिकॉर्ड कर सकते हो, उस जमाने में मैं अपने असिस्टेंट पर ज़्यादा निर्भर करता था, तो मैं स्टूडियो में जाता था और मेरे अंदर से जो भी निकल रहा है वो मैं डांस करता था विदाउट म्यूजिक, और फिर मैं सोच रहा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये कौन से म्यूजिक पे अच्छा लगेगा, फिर मैं म्यूजिक को सुनता था, बोलता कि ये म्यूजिक मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है, तो इट वाज ऑलवेज हाफ हाफ, पहले मैं आगे बढ़ता था अपना कुछ करता था ताकि वो हावी ना हो जाए मुझ पर, और फिर मैं म्यूजिक को सुनता था और फिर उसको कंबाइन करता था, फिर लव्स कभी कभी जो अल्फाज जो है अगर वो अच्छे हैं तो वो कभी कभी यू नो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कोरियोग्राफी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्रिएटिव लोगों में कि आप एक ही म्यूजिक को सुन के 10 चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा, इसके लिए आपको एक इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए आपको एक समझ चाहिए, वो समझ होता है इट्स कॉल्ड एन आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस, क्योंकि आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारे रूप में इसको दिखा सकते हो, लेकिन कौन सा एकदम सही होगा, एकदम स्पष्ट होगा, एकदम सक्षम होगा और सूक्ष्म भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत चीजें आप कर सकते हैं, बहुत लिटरल भी कर सकते हो, मतलब जो आप लव्स बोला है वही को आप दिखा रहे हो, तो फिर वो नो जैसे आप डेफ एंड डम वाला डांस हो गया, फिर वो वाला नहीं होना चाहिए कि एकदम लिटरल आपको ट्रांसलेट कर रहे हो, तो उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। लेकिन क्या आप उसको एक मेटाफोरिक यू नो एक मेटाफोरिक रूप में अगर दे सकते हैं तो देन इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यू हैव टू यूज योर आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप उसी एक म्यूजिक या गाने या शब्द को सही चीजों को जोड़कर उसको बहुत ब्यूटिफुली कन्वे कर सकते हो, और उसके लिए चाहिए आपको कॉम्पोजिशन टेक्निक, और कोरियोग्राफी कॉम्पोजिशन इज एन आर्ट, मतलब जो गाना जो आप डांस कर रहे हैं उसके उतार चढ़ाव क्या है, अगर आपकी बॉडी झट से एक स्ट्रांग मूवमेंट दे रही है उसके बाद आप फिर से स्ट्रांग मूवमेंट मत कीजिए, एक थोड़ा सॉफ्ट मूवमेंट कीजिए ताकि वो एक लहर की तरह ऊपर नीचे चढ़े, अगर आप एक बहुत बड़ा वाला मूवमेंट कर रहे हैं उसके बाद एक छोटा वाला मूवमेंट कीजिए, अगर आप बहुत ही मतलब अगर आप एक बार मतलब 8 काउंट के लिए सामने होके कैमरा के सामने करें तो कई बार यू नो थोड़ा मुड़ के आप थोड़ा डांस की ताकि वो विजुअल थोड़ा बदले। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ विजुअल एंड हाउ यू आर यूजिंग स्पेस, जो स्पेस है आप किस तरीके से यूज करते हैं और आपका अंग किस डायरेक्शन में जा रहा है और वो क्या जो आप कर रहे हो वो मैच कर रहा है म्यूजिक और शब्दों के साथ, ये एक अलग साइंस है, ये एक अलग विधि है जानना कि कैसे करते हैं, और इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ कॉम्पोजिशन, ये झट से नहीं आता, यू हैव टू वर्क ऑन इट, और फिर जाके आप बहुत ही जब प्रैक्टिस करते हो और बहुत दिमाग लगाते हैं कई बार अंदर से आ जाता है और एक सेकंड में वो सही आ जाता है, कभी कभी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है और फिर उसको यू नो फनल करना पड़ता है, इसको एक एसेंस में मतलब इसको एक रिड्यूस करना पड़ता है,
0: छानना पड़ता है,
1: दैट्स द वर्ड आई वाज सर्चिंग फॉर, तो उसको छानना पड़ता है ताकि वो सही मात्रा में ज्यादा ना हो ना कम हो। इसकी जो समझ है ये बहुत फाइन इंटेलिजेंस है।

0: इस बात को समझें कि एक कोरियोग्राफी होती क्या है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपकी फिर अगली फिल्म कौन सी रही? जैसे कि आपने बताया 10 फिल्में रही।
1: हाँ, बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी फिल्में आई। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे 2009 में ही टीवी से इनविटेशन आया ताकि मैं कोरियोग्राफर और जज बनूं, और मुझे ये जो इनविटेशन आया बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ जज नहीं करने वाला था लेकिन मैं कोरियोग्राफी करने वाला था, और मुझे मौका चाहिए था कि मैं ऐसे ऐसे डांसर्स के साथ काम करूं जो अब जीजा मेहनत करें और मुझसे कोई सवाल ना करे, और जो मैं क्रिएटिवली दिखाना चाहता हूं वो मौका मिले। क्योंकि जब फिल्मों में जब आप काम करते हो तो
0: लिमिटेशन
1: होती है, आर्टिस्ट कितना कर सकता है, एक दो कट कट कट करके शूट करना पड़ता है। तीसरी बात ये होती है कि गाना का अगर वो किरदार ऐसा है कि वो ज्यादा नहीं नाचता तो तुम जबरदस्ती को नहीं नचवा सकते, और या सिचुएशन में आप यही कर सकते हो तो आप बहुत सारी चीजों से बंध जाते हो। टेलीविजन शो में आपको आप डांस दिखाना है, सिर्फ डांस, लेकिन कहानियां भी दिखानी है क्योंकि कहानियों के माध्यम से अगर सिर्फ डांस हो तो मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर उसमें एक नैरेटिव हो, इसमें एक कहानी हो, इसमें एक इमोशन छुपा हो तो वो बहुत लोगों को पसंद आने लगता है। तो जब मुझे ये मौका मिला मैं बहुत खुश हो गया। बहुत कोरियोग्राफर्स ने डांस इंडिया डांस को रिजेक्ट किया था, इनफैक्ट हम पहले चॉइस नहीं थे फॉर एज कोरियोग्राफर्स, बड़े बड़े लोगों को लिया गया था पहले, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमसे बहुत सीनियर जो लोग थे उनको अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने ना कर दिया क्योंकि उनको कोरियोग्राफ करना नहीं था, क्योंकि वो फिल्मों में कोरियोग्राफ अच्छा करते हैं लेकिन स्टेज को कोरियोग्राफ करना मतलब स्टूडेंट्स को एक झटके में विदाउट कट्स, वो एक अलग ही विधि है।
0: टेरेंस, मैं उस पूरी जो टीवी की दुनिया है उसमें हम जाएंगे
1: जरूर,
0: लेकिन उससे पहले कुछ गाने भी हम सुनते चलेंगे।
1: बाहों में

0: मैं एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने बातचीत के दौरान कहा कि फिल्मों में जो कोरियोग्राफी होती है, जो डांस होता है, वो कट कट करके होता है।
1: करेक्ट।
0: मान लीजिए कि हम एक एक्टर को जानते हैं कि भाई इसको डांस आता नहीं, लेकिन वो बराबर 7 मिनट तक या 6 मिनट तक पर्दे पर डांस करता हुआ नजर आता है। आप थोड़ा सा समझाएंगे कि एक्चुअली जो फिल्मी कोरियोग्राफी होती है, फिल्मी डांस जब शूट होता है, तो उसका जो प्रोसीजर होता है, उसकी जो टेक्निक होती है, वो किस तरह से कट कट करके जाती है।
1: तो देख लीजिए, समझ लीजिए, आपने एक गाना सुन रहे हैं। गाने में बीट्स होती हैं, ओके, एक एक ताल होता है, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, वो बीट होता है, रिदम होता है, ताल होता है। जब हम लोग सेट करते हैं तो हम हर बीट को कोरियोग्राफ करना पड़ता है, चाहे वो एकदम शुरू में अगर सिर्फ फ्लूट बज रहा है तो वो भी हमारे लिए कोरियोग्राफी होनी चाहिए, क्या हो रहा है उस पर वो भी सेट करना पड़ता है। तो जब हम शूट करते हैं तो हम पिक्चराइज करते हैं कि ये 4 बीट पे हम ये वाला स्टेप करेंगे। अब ये है कि चाहे आर्टिस्ट अच्छा डांस करे या ना करे, लेकिन जो फिल्म का जो माध्यम है उसमें हम बहुत ग्लैमराइज करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक एंगल से 4 काउंट लिया, दूसरे एंगल से क्लोजअप मारा वही चीज, फिर तीसरे एंगल से मूविंग ट्रॉली शॉट लगा दिया। तो जनरली क्या होता है, आर्टिस्ट को सहूलियत मिल जाती है या कन्वीनियंस हो जाता है कि वो सिर्फ 4 स्टेप करें या 8 स्टेप करें और फिर उसके बाद वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उसके बाद कट लगने वाला है, क्योंकि एक दूसरा कट आएगा। मान लो कि आपने 16 काउंट का भी कोरियोग्राफी रख दिया। अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूंगा, हमारे अभी जो प्रथा चली आ रही है 20 साल से, कि हम बहुत ही हमारे पास ठहराव नहीं है, हमको सब कुछ ना, अच्छा 2 काउंट ऐसा आ गया, आर्टिस्ट ने पूरा शॉट दिया है डांस का, लेकिन नहीं नहीं ये नहीं जम रहा है, अभी थोड़ा कट करके ये लगाएंगे, आप कट करके वो एंगल लगाएंगे। लेकिन एक आर्टिस्ट अगर अच्छा आर्टिस्ट हो, जैसे माधुरी जी हो या ऋतिक हो या गोविंदा जी हो, उनको आपको कट करने की जरूरत नहीं है, वो इतना अच्छे तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि वो एक एंगल से भी बनता है वो शॉट, जरूरी नहीं। लेकिन नहीं, आज की पीढ़ी में सब फट फट फट फट फट, तो एडिटर ज्यादा नाचता है क्योंकि जबरदस्ती के फट फट कट, और फिर वो झामे जो आते हैं, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन वो ना वो एकदम जूम इन करके झामे झक झक, फिर वो ब्लो ड्रायर, अननेसेसरी ब्लो ड्रायर, हर गाना सेम टू सेम लगने लगता है। अच्छा काम भी हो रहा है इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यही जरूर कहूंगा कि एक मोनोटोनस चीजें होने लगती है। अगर वो एक चीज अच्छी भी है तो वही चीज को, अच्छी चीज को 30 गाने में आप देख सकते हैं कि वो सेम टू सेम वही फॉर्मेट वही चीज दिख रही है, इनोवेशन नहीं होता। अगर एक चीज सक्सेस हो जाती है हमारी इंडस्ट्री में तो फिर सभी लोग बोलते हैं कि अच्छा वैसा ही गाना करो और इसको भी डुप्लीकेट बनाओ, सिर्फ गाने के लव्स और आर्टिस्ट बदल रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट वही का वही है। सो वही ट्रीटमेंट है कि गाने को फट फट काटो, फिर झामे करो, फिर क्लोजअप लो, फिर स्टडी कैम लगाओ। लाइक आई फील मास्टर जी, जैसे गणेश मास्टर जी और दूसरे हैं मास्टर जी जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, सरोज जी, उनका जो स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट था, लंबे लंबे कट्स, आई थिंक दैट वो सिनेमा वापस आना चाहिए। एंड कुछ कोरियोग्राफर्स कर रहे हैं कुछ हद तक, और आर्टिस्ट को भी पता चल गया है कि नाउ वी शुड ऑल्सो नॉट कीप सच शॉर्ट कट्स। तो फिल्म की बात करें तो बहुत लोग जो अच्छे डांसर नहीं हैं उनको भी हम अच्छा दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत है, ओके, तो मैं सिर्फ आपका क्लोजअप ले लूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आप आंखों से खेल लीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सही नहीं है, आप बहुत ही ऑड लग रही हैं। कुछ कुछ हैं एक्ट्रेस जिनको डांस नहीं आता और वो मॉडल्स हैं, लंबी हैं, उन्होंने कभी सीखा नहीं है लेकिन अभी उनको करना पड़ रहा है, तो वो जबरदस्ती करते हैं, वो सीख लेते हैं, लगता है वो बहुत स्ट्रेस में डांस कर रहे हैं, वो मजे नहीं ले रहे हैं। कुछ कुछ हैं, ज्यादा नहीं है, आजकल के सभी जो पीढ़ी के जो आर्टिस्ट हैं वो सब ना सीख कर आते हैं, बट कुछ 2-3 ऐसे रहे हैं मेरे लाइफ में भी कि मुझे लगा कि उनका फुल बॉडी शॉट नहीं लूंगा, और अगर लूंगा तो वाइड लूंगा, भर भर के डांसर, ताकि वो जो गलतियां हैं छिप जाएं और उनको सिर्फ 4 या 5 या 8 काउंट का डांस सिखा के बंद करा दूंगा, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होने लगती है या वो याद करने लगते हैं कि नेक्स्ट क्या है और वो चेहरे पे दिखने लगता है। तो इसलिए हम लोग कट कट करके लेते हैं, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चलता है कि ये कटा हुआ है, उनको लगता है कि ये लगातार निरंतर रूप से चला आ रहा है।
0: तो दोस्तों आप समझ गए, ये जो कट कट की दुनिया है किस तरह से आपके सामने बट बट के आती है। बहरहाल ये एक चीज बहुत टेक्निकल थी। ध्यान से जो श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, जाहिर सी बात है जिनका डांस से बहुत लगाव होगा उन्होंने बड़े ध्यान से इसे सुना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपकी उस दुनिया में आते हैं जो आजकल आपको घेरे हुए, या ये कह लें कि जिस दुनिया में आजकल आप मदमस्त हैं अपने नशे में, टीवी की दुनिया। तो ये टीवी की दुनिया में अब जहां तक मुझे ध्यान आता है कि मैं भी काफी समय से देख रहा हूं, मुझे लगता है जब से शुरू हुई है ये दुनिया, रियलिटी शोज का जमाना जब से शुरू हुआ है, चाहे वो डांसिंग शोज हो या सिंगिंग शोज हो, गाने तो विविध भारती के ही बजते हैं।
1: करेक्ट, बहुत सारे गाने, एक जो अभी जिसके एटलीस्ट 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, वो गाना भी पुराना गाना है।
0: हाँ।
1: जो मैंने नौरा के साथ किया वो ज्यादा हिट हुआ है। बहरहाल मतलब अभी जो अभी जब हम बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं।
0: कौन सा?
1: भीगी भीगी रातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, वाला गाना
0: अजनबी।
1: हाँ, अजनबी वही गाना लेकिन मॉडर्न स्टाइल में। आज की तारीख में डांस बहुत आगे बढ़ चुका है तो लोगों को ये मजा आता है कि एक पुराना गाना और फिर मॉडर्न कोरियोग्राफी, उसका एक अलग ही मजा आता है।

0: आप बात कर रहे थे कुछ ऐसे डांसर्स की कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज में डांस नहीं होता,
1: करेक्ट,
0: लेकिन फेस पे आंखों से खेल जाते हैं। लेकिन आपकी नजर में कौन सी हीरोइन बहुत अच्छी डांसर है?
1: आज के जमाने में जो बहुत अच्छे हैं, मैं जरूर कहूंगा कि माधुरी जी बहुत अच्छा करती है। आजकल के तारीख में आज की जो नई पीढ़ी है सभी अच्छा डांस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो इंजॉय नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे माधुरी और गोविंदा जी ना, जब वो कोरियोग्राफी सीखते भी है ना, तो वो अपना एक एलिमेंट लेके आते हैं, उनको खुद को इतनी खुशी महसूस हो रही है और वो खुशी दिखती है। दूसरे लोगों में लगता है कि नहीं, हमें उसको एक परफेक्ट बनाना है, तो वो परफेक्शन के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि उनको एंजॉय भी करना है।
0: परफेक्शन के चक्कर में वो रोबोट हो जाता है।
1: हाँ, तो वो मेरे बाल ऐसे हैं, अच्छा मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, अच्छा ये पोस्चर सही है, हाँ क्या मैं सुंदर लग रही हूँ या मैं सुंदर लग रहा हूँ, या मेरा एटीट्यूड सही है कि मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं। ऑल्सो दे आर टू ट्रैप्ड इन दैट यू नो की परफेक्शन, तो कहीं ना कहीं दे डोंट रियलाइज की एक मेटाफिजिकल चीज होती है एनर्जी एंड वाइब। आकार ओके इज अ फिक्स्ड रूप, फिजिकल रूप है, लेकिन एक चीज है एनर्जी और वाइब, वो फिजिकल नहीं होती, वो मेटाफिजिकल होती है, वो लोग भाप लेते हैं। तो लोग जब आप देखते हैं, हाँ रूप तो देख लेते हैं, लेकिन इसकी जो वाइब है ना वो नहीं आ रही,
0: आत्मा नहीं पकड़
1: सुंदर है लेकिन आत्मा नहीं, मतलब सब ठीक है, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो वाइब नहीं आ रही है, क्योंकि वो इंसान ने उसको अपना नहीं बनाया। एंड दैट इज वन थिंग दैट माधुरी जी एंड इवन गोविंदा जी डू, एंड दैट्स द वन थिंग दैट आई रियली एडमायर अबाउट देम।

0: No, sir, Ritik, Shahid, all very good. Very good dancers. Ranveer also is very good dancer. And they do a lot of work. So, it's nice to see the young dancers. It's just that 19-20 का फर्क है, लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है।
1: सही कह रहे हैं।
0: हाँ, दूसरे एक जमाने हुआ करते, अगर आप पूछना चाहते हैं कि कौन अच्छे डांसर नहीं हुआ करते थे, कैसे कोरियोग्राफर्स छुपाते थे, द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉट बीइंग अ गुड डांसर इज मीना कुमारी जी। शी वॉज नॉट अ ग्रेट डांसर, लेकिन उनके फिल्मों में, पाकिजा में उनको नाचना है, तो कई गानों में ना उनकी एक डबल हुआ करती थी। कल्पना अय्यर जी ने बहुत सारे टाइम उनका डबल, यू नो, डबल के रूप में घूंघट में अगर वो गाना देखा है, वो कल्पना अय्यर जी ने किया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दैट इज वन। मीना कुमारी जी का एक खास बात थी कि जो ये शरीर नहीं कर पाता था,
1: फेस करता,
0: ये कर पाता था। तो अगर आप शॉट्स देखेंगे ना, तो वो सिर्फ आंखों से खेल रही हैं और वो आंखों से बहुत कुछ कह जाती हैं। उनको सिर्फ एक इतने शोल्डर से और ये आंखों को देखने में और वो फीलिंग के साथ जो कर रही है ना, उसी में पैसा है। उसको ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। तो उन्होंने समझ लिया कि ये मेरी शॉर्ट कमिंग से। इवन विथ रेखा, शी यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड। रेखा इज नॉट अ ब्रिलियंट डांसर, उमराव जमे बहुत नचवाया है, लेकिन इफ यू सी इन कंपैरिजन, वैजंती माला इज नेक्स्ट लेवल। हेमा मालिनी जी इज नेक्स्ट लेवल। ये साउथ की एक्ट्रेसेस है ना, उनके संस्कृति में ये है कि पहले डांस सीखो, और पेरेंट्स जबरदस्ती लड़कियों को और लड़कियों को सिखाते थे। कमल हसन भी जी सबसे बढ़िया डांसर थे, उन्होंने भी भरतनाट्यम सीखा था। तो जो साउथ के जो हीरोज या हीरोइंस थे, उनको ऑलरेडी वो सीख कर आया करते थे, तो उनको समझ थी। सो द बेस्ट एग्जांपल इज, आई वुड से, इज वैजंती माला जी, श्रीदेवी जी, हेमा मालिनी जी। वहीदा रहमान इज नॉट फ्रॉम द साउथ, बट शी वाज, आई वुड से, ये चार ऐसे कलाकार थे।
1: एक और नाम है पद्मिनी।
0: पद्मिनी वो उसकी बहन थी ना, वैजंती माला की बहन थी ना वो पद्मिनी। सो दे वर बोथ क्लासिकली ट्रेन, साउथ की थी वो। सो दे वर वेरी क्लासिकली ट्रेन। और वो क्या करते थे ना सर, ये अभी शायद लोगों को पता नहीं, लेकिन वो जब साउथ से आई थी वैजंती माला, वो अपने कोरियोग्राफर को लेकर आई थी कि अगर मैं डांस करूंगी तो इनके साथ करूंगी। तो इट वॉज वेरी क्लियर कि मैं, मेरी पहचान डांस है, तो मैं अपनी टीम को ही लेकर आऊंगी। वेयर एज अदर्स डिडंट नो हाउ टू डांस।

आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

0: आप सुन रहे हैं,
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज देवघर पहुंचे। देवघर हवाई अड्डे पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। देवघर पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री सीधे बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर गए, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और देश तथा झारखंड की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपनी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन के साथ रांची जिले के तमाड़ स्थित प्रसिद्ध मां देवड़ी मंदिर पहुंचे। उन्होंने 16 भुजी मां देवड़ी की विधिवत पूजा अर्चना कर राज्यवासियों के सुख शांति समृद्धि और खुशहाली की कामना की। लोहरदगा के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी संदीप कुमार मीणा ने आज सदर प्रखंड और शहरी क्षेत्र के विभिन्न बूथों का निरीक्षण कर अनमैप्ड मतदाताओं की स्थिति का जायजा लिया। उपायुक्त ने मतदाताओं को निर्वाचन विभाग द्वारा चलाए जा रहे मैपिंग अभियान की जानकारी दी तथा बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों को आवश्यक निर्देश दिए। गुमला जिले के सिसई अंचल कार्यालय में आज अंचल दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उपायुक्त दिलेश्वर महतो सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान भूमि मापी, दाखिल खारिज, लगान रसीद, सीमांकन और राजस्व अभिलेखों में सुधार से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई। गोड्डा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला स्तरीय बूथ कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कार्यकर्ताओं को संगठन सुदृढ़ीकरण, जनगणना और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया। और दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में ट्रैक मरम्मत कार्य के कारण 14 जून तक कई मेमू ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम की 5:02 और 28 सेकेंड हुई है। प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन सबके कार्यक्रम में स्वागत है और साथ है नाम बहन दने से जोहार प्रणाम। और आज हमारे साथ आयल हथिन श्याम भाई, तो तोरो जोहार।
1: जोहार प्रणाम और राम राम नमता बहन और कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के जोहार प्रणाम और नमस्कार। और देखा नमता बहन हम इनके कार्यक्रम सुनने वाले जितना भी किसान भाई बहन सब हथिन हम इन उम्मीद करो ये कि सभी स्वस्थ और मस्त होतीन।
0: और देखला कि हम इन कार्यक्रम में आज बहुत सारा चर्चा कर बे जरूरी और जो है जानकारी भी लेके अले ही है, किसान से बातचीत भी करे बे और जरूरी संदेश भी सुने बे। तो आज जो सबसे एक मेन चर्चा जो हम इन कर बे वो है कि केंद्र सरकार के जो है 12 साल के कार्यकाल में जो कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में का उपलब्धि रहले है। तो अगर हम इन केंद्र सरकार के 12 साल में उपलब्धि के बात करिए तो सबसे पहले जो है हम इन देखबे कि भाई का योजना जो योजना ही उनकर द्वारा जो चलावल गेल है वो वही उपलब्धि है। तो योजना में तो देखला कि कृषि से पशुपालन से किसान सभी से जुड़ल कितना सारा योजना चलावल गेल है।
1: हाँ।
0: तो एकर पर हम इन एक एक करके बात करबे।
1: तो देखा कि सबसे पहले मैं बात करूँ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देखा बहुत ही बढ़िया योजना रहा है। इन मतलब इन हम इनके किसान भाई बहन सबके तिले एकरम का है कि सभी किसान भाई बहन सबके जैसे प्रति वर्ष जैसे 6,000 की आर्थिक सहायता दबल जाए है। और सबसे बढ़िया बात एकरम का है कि एक पैसा जो है सीधे खाता में DBT के माध्यम से भेजल जाए है।
0: एकदम सही कहला कि मतलब एकर में है कि इधर उधर पैसा हो के कोई डर नहीं है, सीधा जो है लाभकारी जो किसान हो है लाभ पाए वाला उनकर खाता में पहुंच जाए है DBT के माध्यम से। और एकर बाद आ जा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। एकर में कहा है कि प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखा पड़ गले, बाढ़ आ गले या फिर कीट पतंग से कोई नुकसान हो गले तो एकर से जे भी फसल पर नुकसान पहुंचो है तो ये बीमा सुरक्षा दियल जाए है, फसल बीमा करावल जाए है कि मतलब जे भी अगर नुकसान हो गले है तो उकर भरपाई करा जा सके और वो भी बहुत कम दर पर।
1: हाँ देखा बहुत ही बढ़िया है और एकर से किसान भाई बहन सब जतिन से लाभ भी उठा रहा थी। उकर बाद देखा का है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये देखा बहुत ही बढ़िया ये भी योजना है कि अगर हम इन जमीन के अपन माटी के अगर स्वास्थ्य कार्ड बना के रखो ये तो हम इनके देखा कि एक पर भी जो हम इनके पता चल जा है कि हम इनके माटी में का कमी है और का दिक्कत है एक लेकर के पता चल जा। फिर एकदम देखा कि सरकार दनेक से भी एकदम जैसे हम इनके किसान भाई बहन सबके जैसे योगदान दबल जा है।
0: एकदम सही कहला। और एक बात हम इन बात करबे कि डिजिटल कृषि और ई नाम जे एक योजना है एकर में का है कि कृषि मंडी के जे है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़े के प्रयास करल जा रहल है। और एकर में का है कि किसान सबन के एक बेहतर बाजार उपलब्ध करावल जा रहा है जहां कि उनकर फसल के बढ़िया कीमत मिल सके।
1: और फिर देखा अगर बात का है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देखा कि जितना भी सब जो योजना है लहमता बहन हम इनके किसान भाई बहन सबके लिए इतना बढ़िया लाभकारी है। एक योजना में कहा है कि हर खेत के पानी जैसे अपन खेत में रहे और कहा कि हमें सूक्ष्म सिंचाई मैंने कि कहा कि कम सिंचाई में कम पानी में जैसे हम इन्हें अपन खेत के जैसे बढ़िया तरीके से उपजाऊ कर सको। और फिर देखा कि ये योजना में कहा है ड्रिप इरीगेशन भी तू जैसे योजना के अनुसार तू अपन खेत में लगा सको है। और ड्रिप इरीगेशन देखा कि इतना बढ़िया है कि तू जैसे कि अभी देखा था कि मल्चिंग विधि से हमें किसान भाई भी सब खेती कर लगा थी
0: और मल्चिंग विधि जहाँ आ गए वहाँ पे ड्रिप इरीगेशन साथ है बहुत कारगर हो है बहुत फायदेमंद हो है। तो ड्रिप इरीगेशन के और मल्चिंग सिस्टम जो हो है तो एक साथ अपनावे से बहुत ज्यादा खेती में फायदा हो है और एक साथ है स्प्रिंकल विधि।

0: फवारा विधि जैसे कि तो चना मसूर ये सब जो लग गए है तो ऐसन फसल में जे स्प्रिंकल विधि हो है काफी फायदेमंद हो है कि जब पानी न पड़ो है और पानी के जरूरत पड़े है तो एक जीवन रक्षक सिंचाई उकर में करल जा सको है।
1: और देखा कि बहुत ही बढ़िया है अगर तू जैसे कि अगर अलमेली पटार ला देखा और हम पानी कितना नुकसान हुआ है और जैसे कि बरसात के पानी के द्वारा जैसे हम इनके खेत के सिंचाई हो उसी तरह से अगर हम फुहारा ला में भी कहा कि सिंचाई करल जा है। और फिर एक बार देखा क्या है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि भी एक है ये कहा कि योजना के तहत में आवो है। और देखा कि अगर हम कहा है ने कि खदान बागवानी और कहा कि कई तरह के फसल के कुल उत्पादन में वृद्धि एक मैंने कि दर्ज करल गया है तो हम इनके किसान भाई बहन सब देखा कि ये योजना के अनुसार देखा कि अपन बागवानी भी लगा सको थी और अपन आमदनी में जो है से बढ़ावा भी एकरा में कर सको थी
0: एकदम। अरे का साथे साथे देखला कि पशु के लेल भी बहुत सारा योजना है मतलब पशु जो है वो पीछे न है पशुपालन के क्षेत्र में भी बहुत सारा योजना है जैसे कि हम इन बात करबे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में एकर में कहा है कि देसी नस्ल के जो जानवर हो है उनका संरक्षण कैसे करल जाए और दूध उत्पादन बढ़ावे पर जोर दिया जा रहा है कि भाई का हम इन उपाय करके दूध उत्पादन बढ़ा सको।
1: मैंने कहा कि देसी नस्ल के जेकर पास भी हम किसान भाई बहन के पास जो गाय है ओकर से तू बढ़िया नस्ल के जे गाय से तू अपन ले सको है। देसी नस्ल में ही प्रावधान एक में है और फिर देखा कि जब तू ओकर में ब्रीड डला करके अगर दूसरा नस्ल ओकर से निकालो तो देखा तो दूध के उत्पादन में तो बढ़ोतरी होबे करतो
0: एकदम। और ओकर बाद हम इन बात करबे राष्ट्रीय पशुधन मिशन के बारे में एकर में कहा पशुपालन के बढ़ावा देल जा रहा है जैसे कि भेड़ बकरी मुर्गी पालन हो गया बतख पालन है सब सबके जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। अब है डेयरी क्षेत्र के बारे में कि डेयरी क्षेत्र के भी बढ़ावा दिया जा रहा है कर विस्तार करल जा रहा है तो एकर में है कि दूध उत्पादन देखल जाए है कि दूध उत्पादन में वृद्धि कैसे करल जाए और आज के समय में जो है भारत के विश्व के एक बड़ा दूध उत्पादन देश मानल जा रहा है।
1: हाँ और देखा कि एकर से बहुत किसान भाई बहन सब लाभ ले रहे थे नहमता बहन और लेवे भी चाहे क्या है कि जे भी किसान भाई बहन सब अगर खेती बाड़ी करो थे तो उनका देखा कि घर में जरूर एक गाय दो गाय तीन गाय रखे चाहिए लेकिन अगर व्यवसायिक तौर पर अगर हमें अपन बिजनेस शुरू करे चाहोगे तो देखा कि ये योजना के हमें लाभ ले सको और अधिक से अधिक आमदनी हमें कमा सको
0: एकदम। और फिर है पशु टीकाकरण अभियान एकर में है कि FMD रोग जैसे खुरपका मुंहपका रोग हो जाए है और एकर से बचावे ले जे है टीकाकरण करावल जा रहा है सरकार के देने से और उकर बात है मत्स्य और पशुपालन के देने से भी जो है काफी योजना है जैसे कि ग्रामीण रोजगार और आय बढ़ाए के लेल भी एकर में निवेश करल जा रहा है जैसे कि कोई जो मछली पालक भाई है तो उनकर जो मछली के जो बीज हो है वो दिया जा रहा है तालाब खोदवाए के जो एक योजना है सब तरह से मतलब कहला कि योजना के लाभ दिया जा रहा है।
1: देखा कि समय समय पर जो है से ट्रेनिंग भी सरकार करावो थी जैसे मत्स्य के बारे में अगर जो किसान भाई बहन सब नहीं जान रहे थे तो अपन देखा कि ब्लॉक के संपर्क से जो है से तू फॉर्म भर के देखा कि अब भराए वाला भी होता है तो ओकर हिसाब से फॉर्म भर के तू एक में ट्रेनिंग भी ले सको है जानकारी भी ले सको है कि हम इनके मत्स्य पालन कैसे करे चाहिए
0: एकदम मतलब हर तरह के एकर में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। और पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड पशु किसान क्रेडिट कार्ड है जे तो एकर में है कि पशुपालक भाई जो है ओकर ऋण सुविधा उपलब्ध कराए के पहल करल गेल है कि मतलब ये क्रेडिट कार्ड के इसे वो ऋण ले सको थीन।
1: तो देखा कि जितना भी योजना हम इनके भारत सरकार के है नमता बहन देखा कितना बढ़िया योजना है अगर ये योजना का अगर हम इनके किसान भाई बहन सब अगर लाभ उठावे चाहो थीन तो आराम से लाभ उठा सको थीन और अधिक अगर जानकारी चाहे लेवल खोजो थीन तो अपन देखा कि नजदीकी ब्लॉक में भी जाकर के इस सब के बारे में जानकारी ले सको थीन और लाभ उठा सको थीन
0: एकदम सही कला। और कार्यक्रम में हम इन आगो भी बनल रहबे अब धर सुनाओ है जरूरी संदेश और ओकर बाद आगे बातचीत करबे।
1: हाँ।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: तो देख ले कि जरूरी संदेश के बाद एक बार फिर से हम इन कार्यक्रम किसानवाणी में हाजिर ही है। और अब हम इन जे चर्चा करबे वो है कि उपजाऊ खेत जे है ओकरा हम इनके बचाए ले कौन कौन सा समाधान है हम इनके पास में, कौन सा ऐसा चुनौती है जे हम इन मतलब ओकरा ले सको ही है। काहे कि आज के समय में जे खेत हम इनके पास है जेकर में हम इन कृषि उत्पादन कर ले ही है, फसल लगे ले ही है, तो ओकरा बचाए के बहुत जरूरी है। काहे कि बहुत सारा खेत ऐसा आज के समय में हो गए है कि ओकर में अगर तू रासायनिक खाद नहीं डालबा तो ओकर में बढ़िया उपज नहीं हो
7: करते। हाँ।
6: तो कारण यही है कि हम इन है कि अपन खेत में बहुत ज्यादा रासायनिक खाद के और कीटनाशी के इस्तेमाल कर दिए है, जेकर कारण है कि आज वो ओकर से और ज्यादा खाद मांगो है। वह आज अगर ओकर में 1 किलो खाद डालल जा रहा है तो अगले साल 2 किलो बढ़ जाते है खाद के मात्रा, अगले साल और बढ़ जाता है खाद के मात्रा। तो हम इनके एकर से सचेत हो के है।
7: हाँ हाँ।
6: कि अब धर हम इनके सबसे जरूरी जे है कि जे खेत हम इनके आमदनी के जरिया है वो खेत के बचाए के बहुत जरूरी हो गए हैं। और बचाए ले हम इनके यही जरूरी है कि हम इनके तनी पाछू चाय ले पड़ते, जैसे कि हम इनके बाप दादा जे है परंपरागत खेती करोले बस वही चीज फिर से हम इनके करे के है परंपरागत खेती। काहे कि ओकर में तू देखला कि गोबर खाद हर किसान के घर में कुछ न कुछ पशु जरूर रहो
7: जरूर
6: है।
7: बोले। हाँ।
6: तो गोबर जो है ओकरा अपन खादा में जमा करते जाए के चाहिए, पुरान जो गोबर हो जाए है वो गोबर के हम इनके अपन खेत में इस्तेमाल करे के चाहिए। और गोबर में हर तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व तो पावल जाए जे की माटी में मिलावे से माटी में उचित मिल जाए है, तो सबसे बढ़िया उपाय है जैविक खेती के दने हम इनके बढ़े के है। और आज के समय में देखला सरकार देने से कितना सारा ऐसा पहल करल जा रहा है कि केचुआ खाद अगर गोबर थोड़ा ताजा है अथवा खाद बनावे के है तो ओकर में और बढ़िया है कि केचुआ खाद बनाए के कितना जगह प्रशिक्षण दियल जा रहा है, तो वो प्रशिक्षण लेके केचुआ खाद बना के इस्तेमाल करल जा रहा है। तो ये सब चीज हम इनके करे के है। फिर गोमूत्र जे की हम इनके आसानी से मिल जाए है ओकर इस्तेमाल करके अभी हम इन है कि कीटनाशी बना सको ही है। तो ये तरीका हम इनके अपनावे के चाहिए।
7: और देखा कि एकरा में ज्यादा मेहनत भी ना है कि हम इन ना करो पारबे, जैसे कि पहले के हम इनके दादा परदादा सब का करो जैसे बतेला तू कि हम इनके पीछे खेती में जाए चाहिए, तो पहले का करो थे कि एक गड्ढा करो थे, वो गड्ढा में घर के जितना बाढ़न सुढ़न हो चाहे हम इनके गाय गोरु के जितना भी मल मूत्र रोल वगैरह का जमा कर दे बोलते, और जब जमा रोल साल भर जब जमा वगैरह में रोल है तो का होल है कि धीरे धीरे और जब केचुआ पनप होल है तो खाद के रूप ले लो
6: एकदम। और पहले के समय में जितना माटी में गोबर में केचुआ मिलो है आज के समय में केचुआ के मात्रा बहुत कम हो गए है, तो कहीं न कहीं एकर जो जिम्मेवार हम ही है काहे कि हम इन बहुत ज्यादा रासायनिक खाद रासायनिक कीटनाशी के इस्तेमाल कर ले ही है जेकर से जो हम इनके मित्र कीट है वो खत्म हो जा रहा है।
7: हाँ।
6: तो हम इनके सब चीज के सचेत हो के है और अपन खेत के बचावे के है। और हम इन कार्यक्रम में आगो बढ़ो ही है। और आज जो है हम इनके बीच में एगो किसान है छठू महतो जो कि आधुनिक विधि से खेती कर ले हथिन और बहुत बेस तरी से कर ले हथिन, तो इनखर जे ई बातचीत है कहानी है इनखर जुबानी हम इन सुनो ही है।
7: और हम इन जो बातचीत कर ले वो हथिन न माता परवीन, तब सुनल जाए जानकारी भरल बातचीत।
8: किसान भाइयों हम आए हुए है कंचनपुर गांव और हमारे साथ है छठू महतो जी किसान, नमस्कार
9: नमस्कार नमस्कार।
8: और ये बहुत ही अच्छे से खेती करते आए हैं और अभी जो इनके पास देख रहे हैं ना कि खेत जोतने के लिए मशीन ले लिए है, तो आज सबसे पहले तो इनसे ये मशीन के बारे में जानेंगे कि पहले ये जो खेती करते थे, खेत जोतते थे, तो क्या इनको लगता था समय, और अभी जो कर रहे हैं तो इसमें क्या फायदा है मशीन से। तो छट्टू जी आप बताइए कि पहले जो खेती करते थे तो क्या आपको समय लगता था और कितना मेहनत लगता था खेत जोतने में।
9: देखिए हमारे पास तो ट्रैक्टर भी है जी, बड़ा वाला।
8: हाँ हाँ।
9: और छोटा छोटा प्लॉट में ट्रैक्टर से जोतने में बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ जा नहीं पहुँचता है। तो इसके बाद हम छोटा मशीन ले लिए।
8: अच्छा।
9: और छोटा मशीन से छोटा प्लॉट जोतने में बहुत आराम होता है। अच्छा गहराई भी करता है, ट्रैक्टर से भी ज्यादा गहराई करता है ये।
8: अच्छा।
9: ये मशीन इसमें एक खासियत है, और हर तरह के सब्जी जोताई करके लगा सकते हैं।
8: अच्छा, मतलब ट्रैक्टर में क्या है कि अगर बहुत बड़ा खेत है तभी जोताई होता है। हाँ। उसमें भी वो कोना कोना छूट जाता है।
9: और इसमें नहीं छूटता है।
8: अच्छा,
9: इसमें छोटा मशीन है, इसमें नहीं छूटता है, एकदम जहाँ तक आप जोत लीजिए एकदम जोता जाए।
8: इससे पहले आप हल बैल से भी के
9: हल बैल से भी जोतते थे।
8: तो आप तीनों का अनुभव बताइए कि हल बैल से जो जोतते थे वो एक अनुभव क्या था, उसके बाद आप ट्रैक्टर से जोते उसमें क्या आपको लगता है, और ये छोटे वाली मशीन में आपको कितना बेनिफिट।
9: पहले हल बैल से जोतते थे तो होता था कि उसको जो है चारा देना, खिलाना पिलाना बड़ा मुश्किल होता था। और छोटा प्लॉट जोतने में दोनों साइड में यदि खेती लगा हुआ है तब बैल से जोतिएगा तो वो खाने के लिए वो दौड़ने लगेगा चारा,
8: एकदम
9: फसल को बर्बाद कर देगा।
8: मुंह में तो जाली बांधना
9: जाली बांधना पड़ता है। ये वंचित होता है ए मशीन से।
8: अच्छा।
9: छोटा मशीन से ए वंचित होता है।
8: यही
9: फायदा है। और बड़ा बड़ा प्लॉट जो है सो बड़ा ट्रैक्टर से जोत लेते हैं।
8: अच्छा, तो ट्रैक्टर से जोतने के बाद भी जो कोना ये सब छूटता होगा तो फिर तो
9: उसको उसको कुदाल से तो
8: खोदना
9: पड़ता है।
8: और ये छोटे वाली मशीन में जैसे कि आप जुताई कर रहे हैं तो
9: इसमें
8: घास वगैरह क्या होता है?
9: घास वगैरह सब रद्दी रद्दी बना देता है, एकदम छोटा छोटा बना देता है।
8: अच्छा।
9: काट देता है, एकदम बिल्कुल काट देता है।
8: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपका ये मशीन देखकर लग रहा है कि किसानों का समय इसमें बच सकता है ना, और घास चुनने में भी एक समय जाता था।
9: हाँ हाँ, घास नहीं चुनना पड़ता है।
8: घास नहीं चुनना पड़ेगा,
9: सब खाद बन जाता है जमीने में। अच्छा। घास,
8: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और चलिए आपका तो मशीन के बारे में ये एक बात हो गई, और आप क्या अभी लगाए हुए हैं?
9: अभी हम पत्ता गोभी लगाए हुए हैं और बीन लगाए हुए हैं।
8: अच्छा, तो पत्ता गोभी और ये बीन्स जो लगाते हैं तो किस तरह से लगाते हैं, गाछी कहाँ पे आप करवाते
9: हैं? पत्ता गोभी जो लगाते हैं, पत्ता गोभी फूल गोभी, वो ग्रीन हाउस में हम पॉली हाउस में गाछी तैयार करवाते हैं।
8: जी जी जी।
9: हाँ, और उसको वो गाछी जो है सो एक भी मरने का शिकायत नहीं होता है।
8: अच्छा,
9: और सारा दिन आप रोप सकते हैं।
8: हाँ। बीज आप खुद से देते हैं?
9: हाँ, बीज खुद देते हैं और करवाते हैं।
8: तो बीज आप जो पत्ता गोभी का कौन सा बीज दिए थे और बीन्स का कौन सा बीज दिए थे?
9: ओजस कंपनी का पत्ता गोभी।
8: अच्छा।
9: और बीन्स लक्ष्मी का लगाए, लक्ष्मी कंपनी का।
8: अच्छा।
9: हाँ, अभी जो बीन लगाए हैं 100 रुपए से नीचे नहीं बिकेगा। अच्छा। मार्केट में
8: ये पौधा वाला है?
9: पौधा वाला नहीं, लत्तर वाला है।
8: लत्तर वाला
9: पौधा वाला अभी समय नहीं है।
8: अच्छा, पौधा ठंडा के समय,
9: वो ठंडा के समय में पौधा वाला होता है।
8: अच्छा, तो बीन्स की खेती के बारे में आप बताइए कि उसका तो आप नर्सरी जो है वो लक्ष्मी कंपनी का, जैसे आप बीज इस्तेमाल किए और
9: खेत में डायरेक्ट डाल दिए?
8: अच्छा, बीज इसका मतलब आप डाले है नर्सरी इसका पत्ता गोभी का?
9: हाँ, पत्ता गोभी का।
8: तो खेत में डाले तो इसका खेत का तैयारी से आप थोड़ा सा बता दीजिए बीन्स की खेती के बारे में।
9: तैयारी जमीन अच्छा से रोटोवेटर से बढ़िया से जोताई करवा दिए मशीन से, और उसके बाद में डीएपी और हल्का यूरिया दोनों मिला करके जमीन में मिला दिए। उसके बाद लाइन बाय लाइन लगा करके पानी दे दिए।
8: अच्छा।
9: पानी देने के बाद में पौधा जन्मेंशन आ जाएगा तो
8: लगभग कितना दिन बाद वो
9: एक सप्ताह के अंदर में जन्मेंशन आ जाएगा।
8: अच्छा, तो एक सप्ताह के बाद वो निकल आता है, तो फिर जैसे कि पानी

0: हाँ
1: देते
0: एक दिन
1: हैं, है
0: छोड़
1: ना।
0: देते हैं जी। हाँ
1: और बीज डालने समय खाद वगैरह कुछ देते
0: हाँ
1: हैं?
0: हाँ मिट्टी में मिला देते हैं।
1: मिट्टी में मिलाते हैं ना।
0: हाँ DAP हल्का यूरिया दोनों मिला करके।
1: अच्छा, और जैसे कि वो देते हैं, जैसे मिट्टी वगैरह चढ़ाना पड़ता है ना, तो कितने दिन बाद करते हैं?
0: 15-20 दिन बाद
1: इतना बड़ा हो जाता है पौधा?
0: पौधा करीब वही 6 इंच।
1: 6 इंच जैसा हो जाता है, तब कोड़ाई करना
0: हाँ हाँ
1: पड़ता है
0: कोड़ाई
1: ना।
0: कर देते हैं, खर
1: अच्छा,
0: पतवार जो है सो सब निकाल देते हैं,
1: हाँ,
0: जो जन्म इंसान आता है खर पतवार।
1: अच्छा, और उसके बाद उस समय भी खाद देते हैं?
0: हाँ उस समय भी हल्का यूरिया डाल देते हैं, उसके बाद में लगान देते हैं उसको लत्तर चढ़ने के लिए।
1: अच्छा, लतर चढ़ने के लिए क्या आप लगाते हैं? जैसे बहुत तो झाक वगैरह लगा देते हैं, झाड़ी वगैरह, या नहीं तो फिर रस्सी लगाते हैं
0: हाँ
1: पहाड़ पे,
0: रस्सी लगाते हैं खूब,
1: रस्सी लगाते हैं।
0: 10 फीट 10 बाई खूटा गाड़ देते हैं बांस वाला, 8 फीट 9 फीट का लंबाई। उसके
1: अच्छा,
0: बाद में लपेटा आता है रस्सी,
1: हाँ,
0: उसी को जो है सो 5-7 लाइन
1: करके,
0: दे देते हैं। उसके बाद में
1: अच्छा,
0: फिर छोटा छोटा काट के 7-7 8 फीट फिर उसमें घेराव कर देते हैं रस्सी को, बस उसी पर
1: अच्छा,
0: लत्तर चढ़
1: मतलब
0: जाता
1: वो
0: है।
1: पूरा एकदम एक जाली, मतलब
0: हाँ हाँ जाली
1: बन
0: बन जाता
1: जाता
0: है।
1: है,
0: हाँ
1: और इस तरह से उसमें चढ़ता है, तो मतलब तोड़ने में भी आसान
0: हाँ
1: होता
0: तोड़ने
1: होगा
0: में
1: ना।
0: भी आसान होता है। हाँ फल भी एकदम साफ सुथरा रहता है।
1: एकदम, जब उस तरह से वो चढ़ेगा तो फल तो एकदम
0: हाँ
1: काफी
0: हाँ
1: अच्छा
0: हाँ
1: रहेगा।
0: जी
1: और जैसे बीन्स आप लगाए तो कितना समय ले लेता है उसमें फल आने में?
0: 50 दिन के अंदर अंदर फल आ जाता है।
1: अच्छा,
0: मार्केट में 65-70 दिन के अंदर लंच हो जाता है, मार्केट पहुंच जाता है।
1: अच्छा, मतलब बीज डाले तो 60-65 दिन के अंदर,
0: हाँ
1: मतलब
0: हाँ
1: बाजार
0: हाँ
1: में आप उसको बेच सकते
0: हाँ
1: हैं,
0: बेच सकते हैं
1: है ना।
0: जी।
1: और बीन्स में कोई बीमारी वगैरह,
0: हाँ
1: कीड़ा,
0: बीमारी है
1: कौन
0: उसमें,
1: सा बीमारी, उसका पहचान कैसे कर सकते हैं?
0: पत्ता छेदा करता है तो समझ जाइए कि कोई कीड़ा पंख वाला कीड़ा लगा है।
1: जी, तो उसमें फिर कौन सा दवा डालते हैं?
0: आसाटोफेक्सन डाल देते हैं।
1: अच्छा, तो ये मतलब जब आप देखे तभी उसी समय डालते हैं
0: हाँ
1: ना,
0: हाँ हाँ
1: है ना,
0: हाँ हाँ
1: ताकि मतलब वो जो कीड़ा लगा हो
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: मर
0: वो तो
1: जाए
0: पौधे
1: पौधा
0: बता
1: में।
0: देगा कि क्या लगा हुआ है, कीड़ा
1: तो
0: लगा हुआ है।
1: डेली तो

0: और मशीन के बारे में हम एक चीज जानना चाहेंगे, जैसे और किसान अगर लेना चाहते हैं मशीन को, तो क्या एक ही बार में पैसा दे के लेना पड़ेगा या फिर किस्त में ले सकते हैं?
1: एक मशीन तो हम फार्म भरे हैं, अब देखिए क्या सरकारी तरफ से मिलता है कि नहीं मिलता है। ब्लॉक में 2 मशीन है।
0: अच्छा।
1: और इसमें बहुत ज्यादा किसान भर दिया है।
0: अच्छा।
1: तो उसमें सब्सिडी आता है, बड़ी कम पैसा में मशीन मिल जाता है।
0: अच्छा।
1: जैसे 50,000 का मशीन कीमत है तो 20,000 रुपया सरकार
0: अच्छा।
1: को देना पड़ता है, बल्कि सब्सिडी आ जाता है।
0: अच्छा।
1: तो देखिए 2 मशीन है, अब किसको मिल। हमारे गांव में, कंचनपुर गांव में लगभग सारा किसान को मशीन हो गया है।
0: अच्छा। तो ये मशीन जैसे आप अपने से लिए, तो अगर मार्केट से लेना चाहते हैं किसान, मान लीजिए जिनको नहीं मिल पाया सरकारी योजना के तहत, तो जो अपने से लेना चाहते हैं तो वो क्या किस्त में ले सकते हैं?
1: किस्त में नहीं, हार्ड कैश में देता है।
0: अच्छा।
1: कोई ज्यादा मूल नहीं है,
0: 1-2 लाख 50-60 हजार में, मतलब
1: मैंने हार्ड कैश में ले लेता है। ज्यादा मूल रहता तो किस्त पर ले लेता।
0: मुझे लगता है कि सभी किसान के पास ये होना चाहिए,
1: जी,
0: है ना, छोटा छोटा प्लॉट जुताई करने के लिए।
1: जी जी।
0: तो चलिए छठू महतो जी, आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि किसान भाइयों को भी अच्छा लगेगा, आपसे ये जानकारी
1: जी,
0: मिली
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: तो देख ल ये हलथिन छठू महतो जे कि कितना बेस्तरी से बतैलथिन कि भाई आधुनिक तरीका से मशीन के जरिए जो पावर टिलर आओ है छोट वाला मशीन, तो ओकर उपयोग करो हथिन खेत जोते में, और जे छोट छोट प्लॉट रहो है ओकर में काफी बढ़िया से जोताई हो जाए है।
2: और देखो ओकर जोताई भी हम देख लिया ना, मतलब जैसे कि बड़ा बड़ा गाड़ी जे कहा कि बड़ा खेत में जो जोतो है तो एकरा का हुआ कि थोड़ा सा समय ज्यादा लगो, लेकिन एक जोताई देखब ना तो एकदम बहुत ही अच्छा एकदम बारीक जोताई भी
0: एकदम, और घास जो रहो है वो भी एकदम रद्दी रद्दी हो जाए, घास चुने का टेंशन है
2: नहीं रहो। हाँ, तो देखा कि आगे हमें थोड़ा सा चलो ये अपन कार्यक्रम के देने और आगे है कि आज के बाजार भाव और मौसम की जानकारी हमें जानबे, तो देखा कि शुरू करो ये हमें के देखा कि लाल आलू जो है अभी बाजार में जो है से 20-25 रुपए प्रति किलो है, और सफेद आलू जो है से 20-22 रुपए प्रति के जी है, और प्याज के दाम अभी देखा कि थोड़ा सा बढ़ला है बाजार में 25-30 रुपए प्रति के जी वाला है, और फूलगोभी अभी 60-65 रुपए प्रति के जी चल रहा है
0: एकदम। और एक साथ हम इन बात करबे कि पत्ता गोभी जो है वो 40-45 रुपए किलो है, और पटल जो है 35-40 रुपए किलो चल रहा है, भिंडी 15-20 रुपए किलो चल रहा है, नेनुआ 20-22 रुपए किलो, कद्दू 15-20 रुपए किलो चल रहा है, हरा मिर्चा जो है 50-55 रुपए किलो चल रहा है,
2: और शिमला मिर्च के देखा बाजार में भी जो भाव है 40-50 रुपए, कहीं कहीं 60 रुपए भी है बाजार में, और गाजर जी अभी देखा 30-35 रुपए बाजार में चल रहा है, और बीट जी भी जो है से 30-35 रुपए बाजार में अभी है, और बीन्स की अगर हम बात करो ये तो 25-30 रुपए प्रति के जी बाजार में चल रहा है
0: एकदम। और वहीं पे मुराए है 20-25 रुपए किलो, धनिया पत्ता 80-85 रुपए किलो, अदरक 90-95 रुपए किलो, खीरा जो है वो 30-35 रुपए किलो, टमाटर 50-60 रुपए किलो हो गए है, और लाल साग और पालक साग जो है वो 20-25 रुपए किलो।
2: और अगर हम इन तापमान की बात करो तो आज की जो तापमान रह रहा है वो है 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, और न्यूनतम जो है से 25 डिग्री सेल्सियस रह रहा है,
0: और आज की आर्द्रता रह रहा है 68%। और कल के मौसम के पूर्वानुमान भी हम इन बता दे ही है कि कल के जो अधिकतम तापमान रहे के आशा है वो है 35 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम तापमान रहे के आशा है 24 डिग्री सेल्सियस। और एक साथ जो आज हम इन बात कर पे वो बहुत जरूरी है कि पशु सब में जो खुरपका मुंहपका रोग हो है ओकर से बचाव के लेल हम इन टीकाकरण करा सको ही है, और टीकाकरण कब कराए के चाहिए, और ये खुरपका मुंहपका रोग का है सबसे पहले हम इन एकर पर बात करो ही है कि जैसे कि देख ला कि पशु के मुंह में छाला पड़ जाए है, मतलब उकरा खाए में दिक्कत हो है, बहुत ज्यादा लार गिरे लगो है, और खुर में तो देख ला घाव हो जाए।
2: हाँ।
0: तो एकर कारण का है, अगर खुर में घाव के बात हम इन करिए तो खुर के बीच में जो तनी जगह रहो है उकर में गंदगी लगातार जमल रहे से उकर में कीड़ा हो जाए है जे कि घाव के रूप हो ले ले है। तो हम इनके सबसे पहले तो साफ सफाई पर पूरा ध्यान
2: देवे के चाहिए।
0: पशु के समय पर ताजा भोजन जरूर दिए के चाहिए।

0: संतुलित आहार दिए के चाहिए, ताजा पानी दिए के चाहिए। और ओकर बात है कि जे गौशाला के सफाई, अगर हम इन गौशाला के भीतर और बाहर जहाँ पशु के बांधो हुई है, इन दोनों जगह के साफ सफाई बहुत मायने रखो है, जरूरी रखो है। यानी कि जमीन सूखल रहे के चाहिए, गीला नहीं रहे के चाहिए। गोबर हो गए, गोमूत्र है, सब सब के साफ करे के चाहिए। दूसरा चीज क्या है कि पशु के तो हम लोग हम इनके रोजाना नहाए के भी चाहिए, नहलाए के चाहिए। और दूसरा चीज उकर खुर के, मतलब बीच में है पतला लकड़ी से या फिर उसका से साफ करके गंदगी सारा, और डेली हम इनके डिटॉल पानी से जरूर धोए के चाहिए। तो ये हो गया बचाव कि मतलब ये बीमारी हो न।
1: और देखा कि जैसे कि अगर ये जैसे तू लक्षण बतेला कि मुंह में जाला पड़ जाए, चाहे खुर में जैसे घावतरी दिखा लगो है, तो अगर ये सब अगर लक्षण दिखा लगो तो हमें तुरंत जैसे अपन पशु चिकित्सक से मिले के चाहिए और उसका इलाज करे के चाहिए। और देखा कि FMD के टीकाकरण जैसे हर छह महीना में एक बार जैसे अपन पशु के जरूर दिलावे के चाहिए। और एक आयु भी जो है से निर्धारित आयु भी है, तो वो आयु देख करके जो है से हम इनके अपन पशु चिकित्सक से मिल के और बाद जो है से टीकाकरण करा के चाहिए।
0: एकदम मतलब हर जगह में अलग अलग समय में टीकाकरण हो है। ऐसे ज्यादातर हम इन देखो ये कि बरसात शुरू होने से पहले टीकाकरण करावल जाए है, और फिर छह महीना बाद, मतलब साल भर में दो बार टीकाकरण हो है FMD के। तो ये भी टीकाकरण हम इनके करावे के है, तो पशु चिकित्सक से सलाह लेके ओकर बाद करावे के है। और हम इनके ये चीज समय पर ध्यान देना है कि टीकाकरण हम इन जब करा ले लिए है अपन पशु के, तो कुछ समय तक पशु पर निगरानी जरूर रखे के है कि पशु में का भय लक्षण है, कैसा नुकराव भाव है, सब चीज पर ध्यान दिए के है, साफ पानी दिए के है, साफ चारा दिए के है, और एक सामान्य जो देखभाल हो है वो हम इनके जरूर करे के चाहिए। और सबसे पहला बात जो हम इन करेंगे साफ सफाई, वो तो बहुत जरूरी है, काहे कि बीमारी ना हो तो एकर लेल हम इन बचाव जरूर जरूरी है।
1: देखा कि कोई भी बीमारी जो है से गंदगी से हो है, तो हमें कोशिश करे के चाहिए कि सबसे पहले हमें साफ सफाई पर ध्यान दिए और समय पर टीकाकरण पर ध्यान दिए। अगर ये दो चीज पर अगर हमें ध्यान दोए तो हमें जो पशु है बीमार होए के चांस बहुत ही कम हो जाए।
0: एकदम सही कहला। और देख ला कि अब इतना सारा जानकारी देते और बात कर करे तो हम इनके समय भी हो गया है कार्यक्रम किसान वाणी से जाए के। तो कार्यक्रम किसान वाणी से हमरा नहमता के
1: और हमरा श्याम के
0: अनुमति देती जोहार।

0: कार्यक्रम खेती बाड़ी सुनने वाले सभ्य ग्रामीण भाई बहन के कार्यक्रम में स्वागत है और साथ है नामता बहन देने से जोहार प्रणाम। और आज हमारे साथ है फिर से एक बार कार्यक्रम में साथ है श्याम भाई, तो तोहरो जोहार।
1: जोहार प्रणाम और राम राम नामता बहन और कार्यक्रम खेती बाड़ी सुनने वाले सभ्य किसान भाई बहन के जोहार प्रणाम और राम राम। और देखा कि आज हम जो कार्यक्रम खेती बाड़ी में लेकर आई है एक चर्चा है नवता बहन, और देखा कि बहुत ही बढ़िया है और किसान भाई बहन सबके जो है से बहुत ही जरूरी है कि हम एक पर चर्चा करिए और बहुत ही जरूरी चर्चा भी है। तो वो है मचान विधि। देखा कि पहले का होले कि किसान भाई बहन सब जितना भी हलथिन से सभी अगर कोई भी लतेदार सब्जी लगावलथिन तो का करलथिन कि घोरान मंगावलथिन, चाहे घोरान के व्यवस्था करोलथिन, घोरान काटोलथिन ले जा करके, तो फिर ओकरा ले जाके घोरान गाड़ोलथिन, तो फिर ओकरा पर जो है से सीम के लत हो, चाहे झिंगी के लत हो, चाहे परोर के लत हो, चाहे और कद्दू सबके जो लत हो ओकरा पर चढ़ावलथिन। तो ओकरा से फिर का होले कि चढ़ तो गल ओकरा पर मान के चलत, फिर वो जब फल तो बोले जब भारी हो जाए तखन का होले कि घोरान अगर तनी मनी कमजोर रह गल
0: तो गिर जाए है,
1: तो गिर जाए। और फिर ओकरा में देखा कि फल भी कम लगे के ओकरा में ज्यादा थिर हुए, काहे कि घोरान में देखा कि अगर थोड़ा
0: झाड़ी बहुत ज्यादा रहो, कन्नी इतना ज्यादा रहो ना कि अगर कोई डाली अमीन पेड़ के ले आइए काट के, अगर सीधा एगो दू गो डाली है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन लत भी इन्हें उन्हें भाग जाए होकर में, तो होकर में हो कहे कि अगर ज्यादा कन्नी वाला जैसे कि जे जंगली बांस हो उस सब है कि देहात में आप धरियो है कि घर उर में अगर लगाओ है तो बहुत सारे ले जाए थे काट के कि झाग काटेल हो जाते, तो ओकर में चढ़ तो जा है लेकिन फल जब हो है ना और जगह जगह झाड़ी आ रही है तो फल बढ़े के जगह भी नहीं मिले, और अगर फल आ भी गिले है तोड़े के समय में का हुआ है ना कि बहुत ज्यादा जो है ओकर में नुकसान हो जाए कि भाई किधर से तोड़िए कैसे तोड़िए, हाथ पैर में छिछराए के डर रहो है, तो मतलब इस सब चीज से नुकसान भी एक तरह से फायदा भी है। मतलब फायदा का कहले कि मतलब ज्यादा ओकर में कुछ करेगा ना हले कि लकड़ी काट के ले लिए और गाड़ दे लिए
1: और देखा कि जैसे तोड़े के अगर बात कर ला तो देखा घोरान जो है से अगर थोड़ा सा एक समय है कि जिसमें जंगल झाड़ नजदीक में रोहल है तो मोटा मोटा जो है से झाग घोरान मिल जा ले, तो अगर थोड़ा गाड़ो ले तो थोड़ा मजबूत भी रोहल है तो हम सीढ़ी लगा के तू चढ़ के जैसे ओकर तोड़ाई कर भी सको वाला। मगर अभी का है कि वैसा घोरान तो बाजार में कहीं मिलता ना, गाँव देहात में मिलता ना, जंगल झाड़ में जल्दी मिलता ना, और तू अगर अभी छोटा मोटा कमजोर घोरान पर अगर चढ़ा दू है तो ना तू सीढ़ी लगा के चढ़ सको, अगर चढ़ हुआ तो घोरान और उल्टे के डर
0: होगा।
1: तो अभी देखा कि जो मचान विधि है एकरा में देखा कि सब तरह से फायदा हो। मचान विधि तो देखा कि गर्मी के भी लुप्त उठा सकुआ है, ठंडा भी बढ़िया से लुप्त उठा सकुआ है, बरसात के भी लुप्त उठा सकुआ, और घोरान से ज्यादा एकरा में देखा फायदा भी है।
0: एकर में है का कि सीधा सीधा बांस के मतलब खुट्टा गाड़ के और रस्सी की सहायता से बांस के सहायता से मचान बनावल जाए जो की मजबूत भी हो,
1: मजबूत भी हुआ,
0: और एकर में अगर लत चढ़ गए तो फल पकड़े के फैले के ओकरा बढ़े के पूरा जगह भी मिल,
1: जगह भी मिल जाए। देखा कि जब भी फल लगता और जैसे जैसे बड़ा होता वैसे वैसे फल जैसे नीचे लटकल जाता, क्योंकि तोड़ाई करे में भी देखा कि तू आराम से जो है खड़ा होकर के तू अपन कहा कि चक्कू से या तो कोई भी चीज से जो है तू काट कटिंग कर सको फिर ला सको आराम से, और फल भी ज्यादा लगू है। और फिर एक फायदा का है कि देखा कि घोरान में कहा कि सीधे अगर तोर कोई भी अगर लत चढ़ ला तो धूप होकर चारों दिन से लग लो, फिर हवाओं का चारों दिन से पूरा एकदम धुनल को, या तूफान आ गया तो घोरान के उल्टे डर हो गलो, और एक में कहा हुआ है कि धूप एक साइड से खाली ऊपर से लगू है, बाकी बात तीन साइड से धूप जो है से ओर बचा हुआ है, तो ये भी फायदा है। तो इस हिसाब से फल भी लगू है। फिर अगर तू अगर कीटनाशक दवा के छिड़काव कर चाह रहा तो घोरान में देखा तो दिक्कत हो रहा, और एक में कहा है कि तू आराम से जो है छिड़काव भी कर सकते।
0: तब देखला कि कार्यक्रम में हमें नागू भी आर बातचीत कर बे, अब तर सुना हुआ जरूरी संदेश और साथ में एक ठोक गीत।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन

लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: आता देखा न मतलब इन्हें भी हमें सुन लिए गीत नाद और जरूरी संदेश भी। अब आगे हम बात करो ये कि ग्रामीण विकास में कृषि और पशुपालन के योगदान का रहो है। देखा कि बहुत ही बढ़िया ये कहा सवाल है नमता बहन की, ग्रामीण विकास में कृषि और पशुपालन के का योगदान रहते। देखा कि ग्रामीण कोई भी ऐसा ग्रामीण नहीं होते जगह में कहा कि कृषि और पशुपालन के योगदान नहीं रहे। कहा कि सब गांव में तू घूमा जहां पर देखा कि पशुपालन से जैसे हम के किसान भाई बहन सब पैसा कमा रहा है, कृषि से भी जैसे पैसा कमा रहा है। और बहुत ऐसा किसान भाई बहन सब होते हैं कि जे खाली कृषि पर निर्भर रहते हैं, चाहे बहुत ऐसा किसान भाई बहन हथिन जे की खाली पशुपालन पर भी निर्भर रहते हैं
1: एकदम। और ऐसा तो है कि भाई निर्भर के बाद जहाँ तक आओ है तो सही कहला कि बहुत जे ग्रामीण भाई बहन है कृषि पर खाली और बहुत पशुपालन पर। तो ऐसा है कि भाई निर्भर के बात है कि एक व्यवसायिक रूप से जले ले है कि भाई कोई किसान है कि खाली कृषि पर ही वो कमाई के जरिए अपना बने ले हथिन, लेकिन पशु साथ में रहो है। और कुछ है कि पशुपालन के काम करो हथिन लेकिन साथ में कृषि अपन साथ में थोड़ा लेके चलो है, थोड़ा बहुत व्यवसायिक तौर पर नहीं रहो। लेकिन बहुत किसान कुछ ऐसा भी हथिन जे कि एक तरह से कहला कि समेकित कृषि प्रणाली जो हो है दोनों के साथ में लेके चलो है कि इधर है कि खेती भी कर ले है और साथ में पशुपालन भी कर ले दूध उत्पादन के हिसाब से, तो दोनों में उनका फायदा बहुत ज्यादा हो जाए है। काहे कि अगर हम इन विकास के बात करिए तो कहला कि पशुपालक और खेती दोनों जो है एक दूसरे के पूरक माना जाए है। और हम इन है कि अगर दोनों चीज व्यवसायिक तौर पे करिए तो हम इन्हीं के पूरा फायदा है। एक कि जीरो बजट के खेती हम इन कर सको ही है। काहे कि तू देखला कि जे हम इनके पशु से मिलो है जैसे गोमूत्र और जे गोबर हो है, ये दोनों के इस्तेमाल हम इन खाद के रूप में खाद बना के हम इन अपन खेत में इस्तेमाल कर सको ही है। कहीं से बाहर से हम इनके कोई खाद लिए के जरूरी नहीं है और न कीटनाशी लिए के जरूरी है। कीटनाशी आर भी हम इन सामान जो है पेड़ पर पौधा जो हो है उस सब से हम इन बना सको ही है। और दूसरा चीज का है कि कोई खर्चा नहीं हो है कर में खादारी में, और गोबर में हर तरह के पोषक तत्व मौजूद है।
0: और देखा कि जे खेत में तू गोबर डाले तो भी होगा वो खेत में देखा हुआ कि उपज जो है से कम 2 साल तक तुरा कोई खाद के ऊपर जरूरत नहीं
1: एकदम। और ओकर में उपजल जे साग सब्जी हो है ना ओकर स्वाद भी बहुत अंतर हो जाए है। मतलब वो स्वाद तू कहला कि सिंपल अगर ये चीज देखे भी है ना तो तू घर में कहला कि 2 तरह के सब्जी बनाओ, एगो जे घर में उपजल तरह शुद्ध जे सब्जी है खाली ये गोबर खाद वाला, और एगो तू बाजार से खरीद के तू बने बा जे की मतलब कहला कि डीएपी यूरिया रासायनिक खाद से उपजल जे है, और दोनों एक के सब्जी तू ला कि फरस बीन बनावे के तो फरस बीन है दोनों बनावे के एक के मसाला एक के आदमी बना कि मतलब टेस्ट का भी अंतर नहीं हो लेकिन फिर भी ओकर में टेस्ट के अंतर मिल जाता है।
0: तो देखा कि जे कहा कि जे नेचुरल है से तो नेचुरल होबे करो है। कहे कि देखा कि गोबर के खेती जे है वो तो कहा कि ओकर फल फूल भी दम सुडोल सुंदर
1: हो बहुत बढ़िया और खूबसूरती भी रहो है साग सब्जी में ना, मतलब वो चमक रहो है जैसे कि तू कहला कि एक तंदुरुस्त इंसान जे रहो है ना जे अंदर से तंदुरुस्त रहो है तो ओकर चेहरा पर एक तरह के नूर देखल मिलो है।
0: हाँ।
1: तो वही साग सब्जी में भी है कि जब साग सब्जी स्वस्थ सेहतमंद रहो है ना तो एक खूबसूरती ओकर में चमक रहो है जो देख ही से बहुत खूबसूरत लगो है। तो ओकर दाम तनी बेसी भी तो अगर बेचबा है ना तो आसानी से दाम मिल जाते हैं काहे कि देख ही में अच्छा रहो है। और साथे हो गेले कि जे कृषि से हम इनके खेती बाड़ी से जैसे कि फसल के जितना अवशेष है वो निकल जाए तो हम इनमें इधर उधर फेंक दे ही है, और ओकर बाद कि घास है हम इनके बारे में बहुत निकल जाए तो उस सब हम इन अपन पशु के आहार के रूप में दे सको। अजय की जानवर के लिए तो जानवर मतलब सभी जानो है कि जो हरा चारा है बहुत बढ़िया हो
0: बहुत बढ़िया हुआ। तो देखा कि आगे हम इन और भी बात करबे न मता बहन, लेकिन देखा इनके पास अभी जो है एक भेंट वार्ता है और वो है कि धान के बीज के चुनाव के साथ साथ जो है से बिचड़ा के तैयारी हम इन कैसे करिए, तो चला एक बारे में जो है से जानकारी दे रहे थे संजय गुप्ता
1: और इनकर से बातचीत कर ले थे श्याम सुंदर रजक।
0: तब चला सुनिए जानकारी भरल बातचीत।
2: किसान भाई बंधु आज हम आए हुए हैं चतरा जिला के ठोरी प्रखंड और ठोरी प्रखंड के अंतर्गत आता एक ठो खौरा गाँव, और यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ऐसे सफल किसान हैं जो लीज पे जमीन लेकर के जो है सो खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं इनसे कि लीज आखिर लिए हैं तो जब खेती कर रहे हैं तो कितना बड़े पैमाने पे खेती करते हैं और उस खेती में क्या क्या ये उगाते हैं और अपना मार्केट कहाँ रखे हैं, अपना जो भी सामान उगाते हैं उनको कैसे मार्केट में बेचते हैं और लीज पे जो जमीन लिए हैं उस जमीन का भरपाई कैसे करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जब लीज पे कोई भी अगर हमारे किसान भाई बंधु सब अगर जमीन लेते हैं तो उसमें जो है सो मेहनत काफी ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि उनको दिमाग में लगा हुआ रहता है कि हमको इतना पैसा साल में देना है अगला किसान को जिसका जमीन है, तो उस हिसाब से मेहनत थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है। तो यही हिसाब से हम थोड़ा जानते हैं कि इनका घर कहाँ है और ये आए कहाँ से हैं और यहाँ पे जो है लीज पे जमीन लेके रह रहे हैं। तो आप अपना गांव बताएं और अपना, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं?
3: हम बिहार सासाराम के रहने वाले हैं।
2: बिहार सासाराम के आप रहने वाले हैं, शुभ नाम क्या बताइए?
3: संजय गुप्ता।
2: संजय गुप्ता, संजय जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि लीज पे जो जमीन आप लिए हैं लमसम कितना जमीन लिए हैं लीज पे?
3: 22 एकड़ है।
2: 22 एकड़ है, तो 22 एकड़ है, 22 एकड़ के जमीन जो आप लीज पे लिए हैं तो उस जमीन में आप कौन कौन सा फसल लगाते हैं?
3: देखिए सीजनी फसल लगता है।
2: सीजनी फसल
3: अभी देखिए गर्मी का मौसम है तो अभी मूंग लग गया।
2: जी हाँ,
3: मूंग के बाद मूंग और मक्का साथ में लग गया,
2: दोनों साथ में लगाते हैं। जी हाँ,
3: अब इसका सीजन समाप्त हो गया।
2: जी हाँ,
3: अब आने वाला है धान का समय।
2: जी,
3: अब धान का समय में जैसे बिहन पड़ गया,
2: मतलब बिहन अब कर भी दिए।
3: हाँ।
2: अच्छा, देख रहे हैं कि इस इलाका में अभी बिहन हमारे किसान भाई बंधु सब कोई भी नहीं किए हैं, मगर आप जो है सो कहिए तो पहले कर दिए, इसलिए आप किए हैं कि आप तो लीज पर लिए हुए, आपको तो दिमाग में लगा हुआ है कि हमको जो है बड़े पैमाने पर जो है धान की खेती करना है।
3: हमारा जैसे कि 2-4 कट्ठा नहीं ना है।
2: जी जी,
3: हमको जैसे लीज पे लिए हैं तो हमको करके देना है उसको।
2: जी जी,
3: इसीलिए हम पहले कर दें कि कैसे पहले बारिश होगा तो सबसे पहले हम रोपा कर देंगे,
2: रोपा करके निकल जाएंगे हम। अच्छा, जिसे आप बिछड़ा किए हैं संजय जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई बंधु सब जानने के लिए थोड़ा सा इच्छुक भी रहते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि बिछड़ा करने का जो तरीका है वो क्या बढ़िया होना चाहिए, जो उसमें देखते हैं कि बहुत घास फूसा भी निकल जाता है,
3: तरह तरह के दवा का यूज होता रहता है।
2: जी हाँ, तो आप कैसे किए थोड़ा सा बताइए ना, आप शुरू से बताइए कितना जुताई किए, उसमें पानी कब घुसाया, बिछड़ा उसमें कैसे छींटे?
3: उसको पहले जब बारिश हुआ तो उसको 2 चांस पहले सूखे जोत दिए,
2: जिसमें बारिश हुआ तो उसमें सूखे जोत दिए,
3: थोड़ा थोड़ा घास निकल गया था जो निकलना था वो।
2: जी जी,
3: जोत कर उसको पानी से पहले पटा दिए।
2: जी हाँ,
3: पटाने के बाद गाड़ी से कादो कर दिए 2-3 चांस करके, चौकी दे दिए, एक दिन 12 घंटा छोड़ दिए उसको।
2: जी हाँ,
3: घास वाला दवा देकर।
2: जी हाँ,
3: जो नया घास जमीन से उगता है वो नहीं उगेगा।
2: जी हाँ,
3: उसको छोड़ दिए 12 घंटा, उसके 12 घंटा के बाद फिर मोरी डाल दिए,
2: फिर उसमें डाल दिए।
3: अब
2: फिर पानी डालने के बाद उसे मोरी डालने है कि
3: पानी डालने के बाद पानी में पड़ता है वो,
2: पानी में पड़ता है, मतलब पानी डालने के बाद उसको पूरा कादो कर दिए। कितना बार जोते उसको?
3: 3 बार जोत दिए उसको
2: पानी डालने के बाद मैंने
3: 2 चांस उसको पानी में जोते, 1 चांस चौकी दिए।
2: जी जी,
3: चौकी देकर दवा देकर 12 घंटा उसको छोड़ दिए, जैसे मट्टी थरा हो गया अपन बैठ गया।
2: जी जी,
3: तब उसके बाद 12 घंटा के बाद बिहन
2: ऊपर से डाल दिए। अच्छा, बिहन जो आप डालते हैं, हमारे किसान भाई बंधु सब आप क्या देख रहे हैं कि थोड़ा सा नए तौर तरीके से खेती करते हैं कि धान को लाए फिर 12 घंटा की 24 घंटा फुलाते हैं?
3: 36 घंटा धान को फुलाए, 36 घंटा पानी में उसको फुला दिए, उसके बाद 36 घंटा के बाद उसको पानी से निकाल दिए।
2: जी जी,
3: सूती का बोरा में उसको पैक करके रख दिए,
2: सूती के बोरा में
3: रात भर उसको पैक करके छोड़ दिए।
2: जी हाँ,
3: छोड़ने के बाद वो अंकुर ले लिया।
2: जी,
3: रात भर में अंकुर गया, सुबह में डाल दिए उसको,
2: मैंने कि 12 घंटा अब छान के उसको 12 घंटा छोड़ दिया।
3: हाँ, छोड़ दिए
2: 12 घंटा में वो जो अंकुर हो गया,
3: अंकुर आ गया, उसके बाद खेत में ले जाकर डाल दिए।
2: अच्छा, हाँ। इसका कोई लिमिट भी है कि कट्ठा में कितना बिहन करना है, अंदाज क्या होना चाहिए इसका? जैसे एक होता है ना कि हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बंधु क्या करते हैं कि उनको पता नहीं रहता है कि कितना बिहन कितना जमीन पे करना चाहिए, तो किसी का गाढ़ा हो जाता है, किसी का पतला हो जाता है, तो उस हिसाब से आपके पास क्या अनुमान है, कैसे डालते हैं?
3: कट्ठा में देखिए कम से कम 15 केजी बिहन जाएगा।
2: कट्ठा में लमसम 15 केजी?
3: लमसम 15 से 20 केजी तक बिहन जाएगा कट्ठा।
2: जी हाँ, कौन सा बिहन आप करते हैं अधिकतर?
3: हम लोग ये करते हैं, इसका क्या नाम है,
2: मैंने बाजार में बेचने वाला करते हैं,
3: बाजारे से। हाँ,
2: ये खाने के लिए करते हैं,
3: खाने के लिए बाजार से बेचने वाले।
2: जी मतलब कि आप कोशिश करते हैं कि जो धान का उपज ज्यादा हो,
3: उपज ज्यादा
2: सही से मतलब जल्दी हो जाए उसी को आप
3: धान 120 दिन वाला है,
2: 120 दिन वाला है,
3: 120 दिन
2: मतलब इसका उपज ज्यादा है और वजन भी इसका ज्यादा है ताकि बाजार में जो है सो अथी हो। अच्छा आप बताएं कि मक्का भी आपका लगा हुआ है उसी में आप मूंग भी डाल दिए हैं, तो मक्का और मूंग कब डाले थे, अभी कैसा आपका है?
3: मकई मूंग दोनों साथ ही में डाले,
2: दोनों साथ ही में कब डाले थे, लमसम कितना दिन पहले
3: डाले थे आपको? फरवरी में डाल दिए थे,
2: फरवरी में डाल दिए थे,
3: फरवरी में डाल।
2: तो दोनों में क्या आपको फायदा नजर आया?
3: दोनों हो गया फसल,
2: दोनों फसल हो गया,
3: मूंग ज्यादा मात्रा में रहेगा, मकई कम मात्रा में रहेगा उसमें,
2: मैंने मूंग का तोड़ाई भी कर लिया और मकई भी तोड़ाई कर ली, दोनों करके अब बाजार में बेच भी दिए। अच्छा जैसे कि इतना खेती आप जब करते हैं संजय जी, 22 एकड़ का खेती आपके पास है, लीज पर लिए हुए हैं, तो इसके लिए सुविधा आप क्या क्या रखें, कैसे खेती करते हैं?
3: अब वहीं देखिए नहर का खेती है, नहर भी भागे भरोसे है, जब तक बारिश
2: जी हाँ, तो पानी जी, अभी तो देख रहे नहर में पानी छोड़ा ही नहीं है,
3: पानी कहाँ है, चारों तरफ हमनी तरफ जाइए उधर बिहार तरफ, तो आपका नहर पूरा पानी दे दिया
2: जी,
3: इधर कोई किसान जागरूक ही नहीं है, एक किसान के करने से नहीं ना होगा जी,
2: जी जी पूरा किसान को मैंने कि बोलना होगा कि पानी
3: बोलना होगा, हाँ।
2: पानी की कमी है तो पानी छोड़िए, देख रहे हैं कि अभी आपका नहर में पानी पूरा सूखा हुआ है,
3: तो अपना बोर से हम डाल दिए
2: बिहन जो किया बोर से किया,
3: बोर से अपना किए।
2: तो संजय जी देखिए जैसे कि सुविधा जैसे आपका बोले कि नहर नहीं है, लेकिन आज जोताई कोड़ाई के लिए देखें आपके पास मशीन है, तो एक मशीन हमको समझ में नहीं आ रहा जो पीछे रखा हुआ है आपका ट्रैक्टर का, वो कौन सा मशीन है?
3: फसल का जैसे कि आपको मिर्ची हो गया, बैगन हो गया, बिलौती हो गया,
2: जी जी,
3: उसके लिए वो जोरा बनाता है, उसके ऊपर लगता है फसल,
2: मतलब जोरा बनाते है कि आपको कोड़ी चलाने का कोई जरूरत नहीं है, तो आलू भी उसी से लगा लेते हैं?
3: नहीं आलू उससे नहीं लगे,
2: आलू में
3: के लिए उसको लगेगा लेकिन छोटा करना पड़ेगा,
2: छोटा करना पड़ेगा, मतलब बड़ा जोरा बनाता है,
3: बड़ा जोरा बनाता है।
2: चलिए सुविधा तो आप बहुत ही अच्छी रखे हैं, और आप सासाराम बताएं घर ना, सासाराम से बिहार सासाराम से ला कर
3: भभुआ जिला के रहने वाले हम,
2: भभुआ जिला के जी, उतना दूर से ला करके आप यहाँ झारखंड के चतरा जिला में बसे हुए हैं, और एक खोरा गांव है जो नहर के किनारे जो है बसा हुआ है, और उसी में आप अपना काम कर रहे हैं। तो चलिए संजय जी आप बहुत ही अच्छी जानकारी दिए, और आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी देख रहे हैं आपका चौकी नीचे प्याज रखा हुआ है, और फिर रबी का फसल अभी चला गया है, तो अभी प्याज आप कितना लगाए थे लमसम?
3: प्याज लगल था आपको 400 ग्राम लगाए थे दाना,
2: अपने से बिहन करके 400 ग्राम, तो 400 ग्राम तो देखिए बहुत ही ज्यादा होता है, तो लमसम कितना कट्ठा में आपका प्याज लग गया था? 400 ग्राम
3: लग गया था, 7-8 कट्ठा में,
2: 7-8 कट्ठा में लग गया, तो कितना उसमें उपज कर सके? इस बार देखिए कि मौसम भी बहुत परेशानी किया,
3: मौसम तो ज्यादा प्याज ठीक था लेकिन मौसम के लिए प्याज खराब हो गया, बारिश गिरते रह गया उस समय,
2: वही देखिए
3: प्याज निकला नहीं, मिट्टी में रह गया,
2: जी जी
3: बहुत प्याज सारा गल गया,
2: गल गया, और पानी जो पड़ते रहने उसमें घास बढ़ते चला गया,
3: घास ज्यादा दबा दिया
2: और उसको जमीन से निकालने में भी जो है परेशानी बहुत ज्यादा
3: हो गया।
2: तो चलिए आप बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: तो देख लो ये हल्थिन संजय गुप्ता किसान जे की धान के जे बीज के चुनाव और साथ साथ में बिचड़ा के तैयारी कर ले हथिन, तो बतैलथिन एकर बारे में कि कैसे कैसे ही कर ले हथिन, और इनका से बातचीत करल थिन श्याम सुंदर रजक।
0: तो देखा यह जानकारी के साथ होंगे जैसे कार्यक्रम खेती बाड़ी से भी जाके बेरा हो गया है, तो कार्यक्रम खेती बाड़ी से हमारा श्याम के
1: और हमारा नहमता के अनुमति देथिन,
0: नमस्कार।

आप सुन रहे थे श्रमिक श्रोताओं को आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। भारतीय वायुसेना के एक AN-32 विमान के आज असम के जोरहाट में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से वायुसेना के 5 जवानों की मृत्यु हो गई। वायुसेना ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मृतकों में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जीतेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम शामिल हैं। रामगढ़ जिले के अरगड्डा क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के दौरान हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 4 युवक अवैध रूप से कोयला निकालने के लिए खदान में गए थे, जहां ऑक्सीजन की कमी या गैस रिसाव के कारण वे अंदर ही फंस गए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज देवघर पहुंचे। देवघर हवाई अड्डे पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। देवघर पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री सीधे बाबा वैद्यनाथ मंदिर गए, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और देश तथा झारखंड की सुख समृद्धि की कामना की। धनबाद में पठन पाठन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जिले में 10 मॉडर्न स्मार्ट लाइब्रेरी और एक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। यह घोषणा उपायुक्त आदित्य रंजन ने सिम्फर ऑडिटोरियम में आयोजित पुस्तकालय से समाज तक एक पहल कार्यक्रम में की। मॉनसून के आगमन को देखते हुए रांची नगर निगम ने जल जमाव, नालों की सफाई और पेड़ गिरने जैसी संभावित समस्याओं से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। निगम ने त्वरित कार्रवाई के लिए 11 क्विक रिस्पॉन्स टीमों के गठन का फैसला किया है। और झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन इसका प्रभाव अभी सीमित रूप से देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 19 जून तक राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:42 हैं। प्रस्तुत है श्रमिक श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम मेहनत कश।

0: कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: मेहनत कश कार्यक्रम सुनने वाले आप तमाम श्रमिक श्रोताओं को रानी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल स्वस्थ होंगी और हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और कामकाज में लगी भी रहिए, क्योंकि कार्य भी आप तभी कर सकते हैं जब आप स्वस्थ होंगी। देखिए, मौसम बदल रहा है, कभी तपती गर्मी पड़ रही है तो कभी हल्की बारिश से हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। नन्ही नन्ही बूंदों को देखकर हम सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं और ऐसे में घर में यदि बच्चे हैं तो भीगना भी चाहते हैं, तो भाई उन्हें रोक कर रखिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। बच्चे हैं, जिद करेंगे, पर हमारा कर्तव्य है कि उन्हें हम रोके, भीगने न दें और खुद भी भीगकर कार्य न करें, क्योंकि बरसात का समय भी आने वाला है और बारिश में भीगकर यदि आप कार्य करेंगे तो परेशानी में पड़ जाएंगे। छाता लेकर घर से निकलिए। गर्मी में भी हम हमेशा आपसे यही कहते आए हैं कि गर्मी अगर तपती धूप में आप ये निकल रहे हैं तो भाई छाता को लेकर निकलिए, सर पर तौलिया रखिए, गर्मी से बचे रहेंगे। और जब भी आप घर जाते हैं, धूप से जाते हैं, तो तुरंत एसी रूम में ना जाए, तुरंत पानी ना पिए, बहुत सारी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे बदलते मौसम में यदि आप थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो हाँ, परेशानी तो आएगी ही आएगी। और भोजन पर विशेष ध्यान दीजिए, भोजन भी हमेशा ताजा ही खाना चाहिए हमें, मौसमी फल जो है उसे भी लीजिए और सतर्क रहिए। फिलहाल हम आपके साथ मिलकर सुनते खूबसूरत सा ये गाना।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: श्रमिक श्रोताओं, महिला श्रमिकों के अधिकार और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में थोड़ी हम बातचीत करते हैं। भारत में श्रमिकों के सशक्तिकरण, सुरक्षा और उत्थान के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कई कानूनी अधिकार और कल्याणकारी योजनाएं जैसे ई श्रम पोर्टल, पेंशन और बीमा योजनाएं संचालित की जाती है। श्रमिकों की प्रमुख अधिकार भारत का संविधान और श्रम कानून जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम श्रमिकों को कई बुनियादी अधिकार देते हैं। समान कार्य और समान वेतन, लिंग या जाति के आधार पर मजदूरी में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। न्यूनतम मजदूरी का अधिकार, हर श्रमिक को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दैनिक मासिक वेतन पाने का कानूनी अधिकार है। सुरक्षित कार्यस्थल, कार्यस्थल पर उचित स्वच्छता, वेंटिलेशन और सुरक्षा मशीनों व उपकरणों के मामलों में प्रदान करना नियोक्ता यानी कि मालिकों की जिम्मेदारी है। कार्य के घंटे, सामान्यतः एक दिन में 8 घंटे से अधिक कार्य कराया जा सकता है और ओवरटाइम का अलग से भुगतान अनिवार्य है। संगठन बनाने का अधिकार, श्रमिक अपनी भलाई के लिए यूनियन संघ बना सकते हैं। संवैतनिक अवकाश, महिला श्रमिकों के लिए संवैतनिक मातृत्व अवकाश का भी प्रावधान है। तो हम अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता। विषय है केक मेकिंग स्वरोजगार का बढ़िया विकल्प। भेंट करता है अशोक कुमार, भेंट वार्ताकार है सृष्टि कमल।
3: श्रोताओं, आज के मेहनत कश कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है एक बेकरी व्यवसाय से जुड़ी शख्सियत सृष्टि कमल जी को। तो सृष्टि जी, आपका आकाशवाणी के कार्यक्रम में पहली बार मुखातिब है, बहुत बहुत स्वागत, साथ ही साथ नमस्कार।
4: धन्यवाद
3: मैम। ऐसा है कि आजकल स्वरोजगार की ओर ज्यादा सरकार ध्यान दे रही है, युवा वर्ग भी देख रहे हैं कि अगर नौकरी मिलना संभव नहीं है तो स्वरोजगार एक ऐसा है, बहुत सारे विकल्प है रोजगार की अगर बात करते हैं तो आसपास। इसी में एक बेकरी व्यवसाय जो है काफी बेहतर, थोड़ा बहुत पूंजी लगा के अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, जिसमें इस व्यवसाय से आप जुड़ी हुई हैं, उनको बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये व्यवसाय की शुरुआत किस प्रकार से होती है। खास तौर से आप इसमें केक बनाते हैं, बेकरी में बहुत सारी चीज़ आ जाते हैं लेकिन आप केक बनाते हैं, तो पहले ये बताइए कि इस कार्य को आप कितने वक्त से कर रही हैं और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ?
4: तो ये 2 साल पहले की बात है। हाँ। उस वक्त पे कोविड आया था और मैं अपने 3rd ईयर में थी कॉलेज में, तो हमारे कैंपसेस चल रहे थे, हमारी जॉब्स भी लग गई थी, बट जॉइनिंग से जस्ट कुछ टाइम पहले ही कोविड आया, सब कुछ बंद हो गया।
3: अच्छा।
4: एक साल हम लोग पहले, 1 हफ्ते से वो 1 महीना हुआ, फिर 3 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, ऐसा करके 1 साल हो गया। फिर धीरे धीरे सारी कंपनीज ने भी अपनी जॉब्स वापस लेनी शुरू कर दी। तो फिर और उस टाइम पे जॉब्स भी नहीं थे होटल्स, क्योंकि होटल सारे लॉस में चल रहे थे बहुत ज्यादा, तो उस वक्त पे और कहीं जा भी नहीं सकते थे, बाहर जाना भी अलाउड नहीं था। तो फिर ठीक है, क्या करें, और मेरा बर्थडे भी था तो मैंने अपने बर्थडे पे बेसिकली केक बनाया था।
3: अच्छा,
4: तो
3: अच्छा,
4: सबको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने बोला कि आप बना के देखो कि कैसा रिस्पांस आता है। तो फिर बनाना शुरू किया, तो पहले महीने में बस 2 ऑर्डर्स थे, फिर वो धीरे धीरे 4 हुए, 6 हुए, फिर पता नहीं लगा कि कब पर दिन 6 ऑर्डर्स आने लगे, जो मतलब ये मैक्सिमम था कि 6 ऑर्डर्स ही हम लेते थे, उसके आगे हम रोक देते ऑर्डर्स लेना बिल्कुल ही। तो अभी ऐसा ही चल रहा है, अच्छा
3: बस
4: है।
3: उस प्रकार से इसे आपकी शुरुआत हो गई।
4: हाँ।
3: चलिए बहुत सुंदर। अब ये बताइए कि ये जो 6 ऑर्डर आप जैसे इस काम को स्वयं करती हैं या फिर घर के लोग हाथ इसमें बटाते हैं, कोई स्टाफ वगैरह भी रखती हैं?
4: अभी तो फिलहाल स्टाफ तो नहीं रखा है मैंने, तो अभी वो है कि हाँ जैसे सारे बर्तन वगैरह का काम हो गया या कभी कोई बॉक्सेस बनाने की का, तो उसमें मम्मी हेल्प कर देती हैं।
3: अच्छा।
4: अदरवाइज क्योंकि केक वगैरह का काम का तो मेरे को ही आइडिया, वैसे हाथ बैठा हुआ वो नहीं कर सकते और कोई, अगर उनका प्रैक्टिस नहीं है तो बाकी काम तो मेरे को ही करना पड़ता है फिलहाल कोई, क्योंकि अभी कोई भी स्टाफ नहीं है, तभी अकेले हैंडल करना होता है सब कुछ,
3: तो काफी मेहनत। और

0: अच्छा, अभी आपने पढ़ाई कहाँ तक की है?
1: अभी मेरे मास्टर्स बस खत्म होने वाले हैं IHM पूसा से, और मैंने ग्रेजुएशन करी थी होटल मैनेजमेंट में ही चंडीगढ़ से, IHM चंडीगढ़ से।
0: अच्छा, तो जो जॉब आपकी लगी थी वो होटल मैनेजमेंट में ही जॉब लगी थी या कहीं और लगी?
1: हाँ जी, ओबेरॉय में लगी थी।
0: अच्छा, बहुत अच्छा मौका था, लेकिन फिर जाते लेकिन हमको नहीं लगता कि आपको उसका अफसोस होगा, क्योंकि आपने उसको रिकवर किया इस व्यवसाय को स्टार्ट करके।
1: हाँ बहुत, हाँ एक एक्सपोजर मिला, पता चला कि हाँ यहाँ पे भी मेरा अच्छा इंटरेस्ट है
0: जी।
1: और पता चला कि हाँ मेरे इंटरेस्ट अभी तक हम यहाँ इतना आगे तक पहुँच सके।
0: अच्छा, ये बताइए कि इस व्यवसाय को आरंभ करने के लिए आपने पूंजी कितना इन्वेस्ट किया? अभी
1: स्टार्टिंग में तो 800 रुपए ही लगाए थे घर पे। अच्छा, पहले से अब उनका ही
0: बहुत मिनिमम अमाउंट है।
1: तो सर के हाँ, दो केक का डब्बा ले आया, दो केक बेस लाया, एक विप क्रीम का डब्बा ले आया था, ऐसे करके कि हाँ दो तीन केक के लायक का सामान लेके आया, कि पहले देखते रिस्पांस कैसा है। फिर तीन केक से जो पैसा है उससे और सामान आया, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते गया। फिर अभी है कि पहले से अवन तो था ही, फिर फ्रिज लिया, फिर ये मतलब इक्विपमेंट्स, फिर मतलब जितने भी केक मोल्ड्स वगैरह वगैरह, फिर उसमें बहुत तरीके के टाइप्स आ गए। तो अब है कि हाँ अब पहले से बहुत बेहतर कलेक्शन है मेरे पास।
0: अच्छा मैम, ये बताइए कि इक्विपमेंट की आपने बात की, सामग्री की आपने बात की, एक्चुअली कौन कौन से सामग्री की आवश्यकता इसमें पड़ती है एक केक के लिए? जो बाहर से जैसे सेब आते हैं तो हर सेब का एक डब्बा होता है, क्या होता है उसके बारे में?
1: देखिए अवन तो बेसिक है, आप कुकर में केक बनाना, अवन में केक बनाना बहुत डिफरेंस होता है।
0: अच्छा,
1: और
0: कहाँ बनता है?
1: अवन में, क्योंकि अवन में आपका चारों तरफ से हीट पड़ता है केक पे, तो वो चारों तरफ से बेक होता है। कुकर में सिर्फ नीचे से हीट पड़ता है, जहाँ पे आंच जल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि नीचे से जलने का चांस है, ऊपर से ढंग से पकता नहीं है। फिर आप बार बार कुकर खोल के देखते हैं कि वो पका है कि नहीं। फिर आपको फ्रिज भी वैसा चाहिए केक के लिए, घर का फ्रिज नॉर्मल फ्रिज नहीं, मतलब क्योंकि उसमें आपका फ्रॉस्ट होता है, तो वो केक को थोड़ा मॉइस्ट कर देता है उसका क्रीम को, तो ट्रैवल करते वक्त केक टूटने का चांसेस बहुत रहता है। तो फिर आपके पास हैंड ब्लेंडर, स्टैंड मिक्सर और इस तरीके के इक्विपमेंट्स होने जरूरी है अगर आपको बेकरी, मतलब अगर थोड़ा प्रॉपर करना है तो।
0: आमतौर पर मान के चलिए एक आप केक बना रही है, तो हमारे श्रोताओं को बताऊं कि क्या क्या सामग्री उसमें लगेगा बनाने के लिए?
1: तो पहले तो मतलब आपका जो स्पॉन्ज है वही मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सब हो जाता है। फिर विप क्रीम हो गया, आपको अगर चॉकलेट केक बनाना तो आपको गनाश बनाना होता है, जो आपका क्रीम और चॉकलेट को गर्म करके बनाया जाता है। वैसे ही जैसे जैसे फ्लेवर है, ब्लूबेरी है तो ब्लूबेरी कंपोट आता है, चॉकलेट का बता दिया मैंने, फिर आपका वनीला में तो नॉर्मल विप क्रीम और स्पॉन्ज का केक हो गया। तो ऐसे आपका वेरिएशंस होता है इसमें।
0: और आजकल देखते हैं कि बहुत से घर में महिलाएं जो बच्चे हैं खासतौर से नेट में यूट्यूब के माध्यम से निकाल लेती है केक कैसे बनाए, और उससे भी देख देख के बोले ठीक ठाक खाने लायक वो बना ही लेती है। ये भी एक
1: ये है, मतलब यूट्यूब पे है बहुत सारे वीडियोस, बट जो एक बेसिक होता है वो आपको एक टीचर ही सिखा सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो वीडियोस में नहीं होते।
0: तो आपने तो कहीं ट्रेनिंग लिया नहीं था, आपने तो सीधे स्वतः ही शुरुआत किया इसका?
1: एक्सपीरियंस से शुरू के केक्स बहुत मेरे वैसे ही थे कि हाँ घर वाले केक्स है, फिर धीरे धीरे धीरे करते करते फिर आपका एक्सपीरियंस भी होता है, आपका हाथ भी बैठता है, आपको समझ आता है कि आपको कैसे क्रीम को हैंडल करना है, कैसे स्पॉन्ज को हैंडल करना है।
0: सृष्टि जी, आमतौर पर हमारे युवा जो सुन रहे हैं और ये व्यवसाय काफी बेहतर है, घर से कहीं दुकान भी आप नहीं ले रहे हैं, घर से ही इसे अब किया जा सकता है, तो आमतौर पर उन्हें कहीं प्रशिक्षण लेना चाहिए इसका? तो आसपास कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जिसके बारे में आपको जानकारी हो, जहाँ इसकी ट्रेनिंग दी जाती हो, तो उसके बारे में बताएं?
1: झारखंड में तो एकदम आइडिया नहीं हमको, बट दिल्ली वगैरह में हो सकता है।
0: हाँ, बड़े बड़े सिटीज में तो है।
1: ऐसे तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं, बेकरी में डिप्लोमा भी होता है
0: जी, बिल्कुल।
1: और मतलब जैसे आपका बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव में है इनके इंस्टीट्यूट्स, बट अगर आपको कुछ बेसिक सीखना है तो इसका मतलब झारखंड में आइडिया नहीं है हमको बहुत।
0: मेरे ख्याल से होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स आप करते हैं तो उसका भी क्षेत्र होता है, अगर बेकरी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो उसकी ट्रेनिंग होती है, मतलब होटल मैनेजमेंट करने से भी काम चल सकता है, तो उसमें भी
1: कर सकते हैं, बट वो मतलब आपका एकदम फोकस नहीं होता है। होटल मैनेजमेंट में आपका चार डिपार्टमेंट होता है, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, किचन और आपका एक और F&B हो गया, फूड एंड बेवरेजेस। तो आपको चार डिपार्टमेंट होता है, आप जब फाइनल ईयर में होते हैं तो आप एक कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट खुद से चूज करते हैं, फिर आप कैंपस में उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए बैठते हैं।
0: तो मेरे ख्याल से वहाँ भी एक स्कोप है कि आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते

0: सकते हैं।
1: हाँ
0: हाँ, और अगर नहीं है तो आप घर में तैयारी करें इसके। आमतौर पे एक व्यवसाय के रूप में अगर इसे शुरू करना चाहते हैं तो मिनिमम कितनी पूंजी की आवश्यकता हो सकती है आपके अनुसार?
1: 50,000 से भी लोग शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है।
0: हाँ,
1: बट बेकरी का
0: अगर छोटे मोटे हल्के में करना है तो 10-20 हज़ार से भी शुरुआत हो सकती है, 2-4 अगर बनाना है तो।
1: हाँ बट
0: हाँ,
1: अब हमको लगता है कि लोगों को कोर्सेस करना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ ये नहीं है कि हाँ विपक्रीम फेटा आपने स्पॉन्ज बनाया और केक बना, आपको साइंस पता होना चाहिए कि आप क्या बना रहे हैं और क्या मतलब आप मार्केट में क्या निकाल रहे हैं, अगर आप कौन सा मैदा यूज कर रहे हो, क्या मैदा, मैदा में भी बहुत वेरिएशन होता है, चॉकलेट में भी बहुत वेरिएशन होता है, आपको नॉलेज होना इसका जरूरी है। कोर्स करना चाहिए आई गेस सबको, अगर उनको आइडिया होना चाहिए। अब
0: अच्छा, अभी अभी अभी तक आपने जितने भी सामान ओवन वगैरह जो आपने कहा ये सारे लेकर के आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी की है अभी तक, आपने कितना पैसा लगाया हुआ है?
1: हाँ अप्रोक्स 80-1 तक गए
0: है ना, एक तक कर लिया। अभी बताइए कि कुल मिला जुला कर महीने में आपकी इनकम कितनी आ जाती है?
1: ये डिपेंड करता है, क्योंकि अभी जैसे सीजन ऑफ है तो वो आपका डिपेंड करता है कि अभी कितना जाएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कितना ही जाना है,
0: लेकिन फिर भी एक मिनिमम
1: कभी काउंट नहीं करा मैंने।
0: फिर भी हमारे श्रोताओं को बताया कि अनुमानता आप अभी कितना कमा लेती?
1: अभी अगर ऑफ सीजन है तो फिर आपका 25 हो गया या फिर आपका 50 चला गया, 60 चला गया सीजन के हिसाब से।
0: अच्छा, सीजन के हिसाब से, ऑफ सीजन मतलब 15-20 हज़ार रुपये में कमी नहीं है, उतना आपको आ जाता है ना। अभी बताइए मिनिमम केक आप कितने का, मतलब आपके यहाँ कितना से शुरू होता है? तो
1: हम लोग का क्वालिटी,
0: हाँ,
1: मतलब हम लोग क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं।
0: एक पाउंड का कितना कीमत रखते हैं?
1: 350 से शुरू है।
0: अच्छा,
1: और 1100 तक गए।
0: तो इस एरिया, ये तो अच्छे एरिया में आप हैं, तो यहाँ पर कितने का ऑर्डर आपको मिलता है, कितना बड़ा केक का
1: आ जाता है? आपका एंगेजमेंट केक आ गया कभी?
0: एंगेजमेंट में तो 1000 से कम का मिलेगा ना। अब बाकी बर्थडे केक है तो शॉर्टकट में गार्जियन चाहते हैं कि आजकल निकालना, तो वही 300-350 मैक्सिमम।
1: मतलब आप जैसे हम लोग केजीज में डील करते हैं, हाफ के जी, एक के जी, हम लोग एक पाउंड दो पाउंड नहीं डील करते, क्योंकि हम लोग का केक बेसिकली थोड़ा बड़ा होता है साइज में। और मतलब वो डिपेंड करता है कि कस्टमर के यहाँ कितने लोग आने वाले हैं, उनको कितना बड़ा केक चाहिए, उस हिसाब से वो हमको, जैसे अगर बताएंगे कि हाँ 10 लोग आएंगे तो हम उनको बोलेंगे कि हाँ आपका एक पाउंड में हो जाएगा या दो पाउंड में हो जाएगा।
0: अच्छा, तो मतलब इस व्यवसाय से आप खुश हैं और आगे अभी पढ़ाई लिखाई भी कर रही हैं?
1: अभी तो फिलहाल व्यवसाय से ही खुश हूँ।
0: तो चलिए ठीक है, अपने घर में रह करके और अपने गाँव घर में रह के हजारीबाग में रह करके आपको इतना अच्छा व्यवसाय कर रही हैं, लोगों को भी फायदा पहुंच रहा है, आप भी 4 पैसे कमा रही हैं और लोगों के लिए एक आइकॉन हैं, आप लोग काफ़ी आपको पसंद भी करते हैं, चाहते भी, आपके फॉलोअर्स भी हैं, तो शुभकामनाओं के साथ चलते चलते एक बार जवाब कि नए जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उन्हें संदेश देना चाहेंगे, अगर बेकरी व्यवसाय के क्षेत्र में वो आना चाहते हैं, खासतौर से केक बनाना चाहती हैं या चाहते हैं कोई भी हमारे श्रोता, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका?
1: देखिए, बेकरी बहुत फैसिनेटिंग लगता है दूर से देखने में कि हाँ कितना सुंदर है, कितना हैपनिंग है, बट इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है।
0: कंपटीशन है, मेहनत भी है,
1: अब जहाँ
0: टेस्टिंग भी आपका होना चाहिए।
1: हाँ, आप अब किसी कस्टमर को चाहिए कि नहीं हमको बस सस्ते में 150 रुपए का केक चाहिए, ठीक है, तो वो आपके पास नहीं आएंगे, बट आपको उनको बिलीव कराना है कि नहीं आप क्वालिटी बेच रहे हैं, इसीलिए हम 300 रुपए में ये केक निकाल रहे, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी, हमारा टेस्ट है, तो आपको वो चीज भी, मतलब ये बहुत बड़ा एक कॉम्पिटिशन है अपने आप में ही कस्टमर को कन्विंस करना कि आप उनको क्या सर्व कर रहे हैं। और अभी मतलब जो बाहर से बच्चे आते हैं पढ़ के या बाहर से लोग रहे हैं या बाहर जाते हैं तो उनको आइडिया होता है, जो यहाँ पे है नहीं रहे, मतलब यहीं पर हमेशा से रहे, तो उनके लिए थोड़ा सा है कि उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि आप क्या निकाल रहे हैं, या तो आप क्वालिटी निकाल सकते हैं या तो आप क्वान्टिटी निकाल सकते हैं, दोनों हमेशा अपोजिट ही रहेगा। अगर आप क्वांटिटी निकालना है आपको ज्यादा सस्ते में, तो आप क्वालिटी कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि चीजों के दाम अब धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, कुछ का किसी चीज का भी दाम नहीं गिर रहा, तो आपको मार्केट में मेंटेन करने के लिए आपको पहले मार्केट रिसर्च करना होगा कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, क्या लोग देखता है और क्या लोग ढूंढ रहे हैं, तो आपको हमेशा मतलब ट्रेंड के साथ भी चलते रहना पड़ता है कि कभी पिनाटा आया, कभी सरप्राइज बॉक्स, कभी कुलमेब केक्स आया, तो आपको उस हिसाब से भी चलना पड़ता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्री कमल जी आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और श्रोताओं के लिए अच्छी जानकारी दी कि एक व्यवसाय के रूप में इसे

0: किया जा सकता है और थोड़ी सी तन्मयता के साथ में और तैयारी के साथ में, और अगर कहीं से सीख ले तो ज्यादा बेहतर होगा, आपकी बातचीत से ही पता चला। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।
1: आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, विषय था केक मेकिंग स्वरोजगार का बढ़िया विकल्प। भेंट करते थे अशोक कुमार और जानकारी दे रही थी सृष्टि कमल। इसी के साथ मेहनतकश कार्यक्रम से रानी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे थे श्रमिक श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम मेहनत कष्ट यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम की 6:30 हुई है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में इस गीत को। अगला गाना लीजिए सुन की, चलते चलते फिल्म से, क्षमा करेंगे, लीजिए सुनिए मोहित चौहान की आवाज में बोल बच्चन फिल्म का ये गाना।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:55 हुए हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और सीधे में आजकल हमारी रांची केंद्र से।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16-18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने देश की प्रगति के लिए बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, नाथवाणी की जीत पर आश्वस्त। पेसा नियमावली को लेकर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाकर जनजातीय समुदाय को अधिकार और स्वशासन से जोड़ा जाएगा। रामगढ़ के अरगड्डा क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के दौरान हुआ बड़ा हादसा, गैस रिसाव के कारण हुई 4 लोगों की मौत। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने दी दस्तक, 19 जून तक बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी। और झारखंड प्रीमियर लीग में कोयलांचल सुपर किंग्स ने रांची टाइटंस को 64 रनों से हराया। छोटा नागपुर रॉयल्स और संथाल स्ट्राइकर्स के बीच मुकाबला जारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने देश की निरंतर प्रगति की कामना की। पूजा के बाद पत्रकारों से बातचीत में संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्रियों में शामिल हैं और उनके नेतृत्व में भारत विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है।
5: दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी, जिनके 12 साल पूरे हुए हैं, जिन्होंने देश की तकदीर और तस्वीर बदली, आज उनके दीर्घायु के लिए, ताकि देश और शक्तिशाली बने, देश आत्मनिर्भर बने, इसी ये आज बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं, बाबा से आशीर्वाद मांगने आए हैं।
4: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपनी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन के साथ रांची जिले के तमाड़ स्थित प्रसिद्ध मां देवड़ी मंदिर पहुंचे। उन्होंने 16 बजे मां देवड़ी की विधिवत पूजा अर्चना कर राज्यवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत हमारी पहचान है तथा मां देवड़ी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। सरायकेला खरसावां के ग्राम प्रधान महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने रांची में ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात कर राज्य में पेसा नियमावली लागू करने पर आभार व्यक्त किया।

0: प्रतिनिधिमंडल ने पेसा नियमावली को लेकर लोगों के बीच फैली भ्रांतियों को दूर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पेसा का मूल उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को संवैधानिक अधिकार प्रदान करना और आदिवासी परंपराओं को सशक्त बनाना है। रामगढ़ जिले के अरड्डा क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के दौरान हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 4 युवक अवैध रूप से कोयला निकालने के लिए खदान में गए थे, जहां ऑक्सीजन की कमी या गैस रिसाव के कारण वे अंदर ही फंस गए। सूचना मिलने पर कुजू पुलिस और नई सराय माइंस रेस्क्यू टीम ने बचाव अभियान चलाया और सभी को बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें रामगढ़ सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। आगामी 15 जून को देश के सभी हवाई अड्डों पर यात्री सुविधा दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एयरपोर्ट निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि यात्रियों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा तथा परिसर में रंगोली सजाई जाएगी। इसके अलावा पौध वितरण, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच, वृक्षारोपण और झारखंड की संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे।
1: 15 जून को हम भारत के सभी एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा दिवस मना रहे हैं और इस यात्री सुविधा दिवस को मनाने का जो कारण है, उनकी सुविधाओं को बढ़ाना, उनके यात्रा को सुगम बनाना, सुरक्षित बनाना, और जो भी हमारे यात्री इस एयरपोर्ट से यात्रा कर रहे हैं या करते हैं, उनको उस दिन एक विशेष दिन का अनुभव हो।
0: रक्तदाता दिवस के अवसर पर कल झारखंड के सभी जिलों और प्रखंडों में रक्तदान महाअभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत रक्तदान शिविर, जागरूकता कार्यक्रम, शपथ ग्रहण समारोह और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी उपायुक्तों को व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है, मानवता की एक बूंद रक्तदान करें, जीवन बचाएं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना कार्य में सिमडेगा जिले ने 100% सफलता हासिल की है। सीएमएमएस पोर्टल पर 9 जून तक प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार जिलों में यह कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुका है। उपायुक्त कंचन सिंह ने कहा कि पदाधिकारियों और कर्मियों के बेहतर टीम वर्क के कारण कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद यह कार्य समय से पहले पूरा किया जा सका।
2: 100% हाउस लिस्टिंग है वो कर लिया है और समय के पहले ही कर लिया है, तो इसी के रिकॉग्निशन में एक प्रशस्ति पत्र हम लोगों को दिया गया है और हमें उम्मीद है कि इसी तरह से हमारे अधिकारी और कर्मी आगे भी काम करते रहेंगे। और भारत की जनगणना का एक महत्वपूर्ण कार्य है, उसमें हम सिमडेगा जिले को त्रुटि रहित ढंग से और बढ़िया तरीके से हम सिमडेगा जिले में ये काम कर पाएंगे।
0: धनबाद में पठन पाठन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जिले में 10 मॉडर्न स्मार्ट लाइब्रेरी और एक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। यह घोषणा उपायुक्त आदित्य रंजन ने सिम्फर ऑडिटोरियम में आयोजित पुस्तकालय से समाज तक एक पहल कार्यक्रम में दी।
3: सभी बच्चों को बताया गया कि लाइब्रेरी का क्या इम्पोर्टेंस है, हमारा स्टेट लाइब्रेरी बहुत अच्छा चल रहा है। साथ ही साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट में 10 लाइब्रेरी हम लोग ट्राई कर रहे हैं बनाने का। कोशिश करेंगे कि सभी लाइब्रेरी 24 घंटे चले और बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले पढ़ाई का, और वैसे भी धनबाद के बच्चों का रिजल्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा रहता है, आने वाले समय में वो संख्या और बढ़े।
0: दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में ट्रैक मरम्मत कार्य के कारण 14 जून तक कई मेमू ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इस कारण चाकुलिया टाटानगर, टाटानगर बड़बिल, बड़बिल टाटानगर और टाटानगर चाकुलिया मेमू ट्रेनों को विभिन्न तिथियों में रद्द किया गया है। मौसम। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन इसका प्रभाव अभी सीमित रूप से देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 19 जून तक राज्य के विभिन्न जिलों

0: जिलों में बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड प्रीमियर लीग 2026 में आज खेले गए सातवें मुकाबले में कोयलांचल सुपर किंग्स ने रांची टाइटंस को 64 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोयलांचल सुपर किंग्स ने निर्धारित ओवरों में मजबूत स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में रांची टाइटंस लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। वहीं टूर्नामेंट का आठवां मुकाबला रांची में छोटा नागपुर रॉयल्स और संथाल स्ट्राइकर्स के बीच खेला जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने देश की प्रगति के लिए बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, नाथवानी की जीत पर आश्वस्त। पेसा नियमावली को लेकर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाकर जनजातीय समुदाय को अधिकार और स्वशासन से जोड़ा जाएगा। रामगढ़ के अरगड्डा क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के दौरान हुआ बड़ा हादसा, गैस रिसाव के कारण हुई 4 लोगों की मौत। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने दी दस्तक, 19 जून तक बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी। और झारखंड प्रीमियर लीग में कोयलांचल सुपर किंग्स ने रांची टाइटंस को 64 रन से हराया, छोटा नागपुर रॉयल्स और संथाल स्ट्राइकर्स के बीच मुकाबला जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गुमला संवाददाता।
1: धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत गुमला जिला में 5 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इस संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि
2: धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना अभियान के तहत हमारे जिले में 5 योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 2 विद्यालयों में, एक हमारा प्राइमरी स्कूल है मिडिल स्कूल चौरापाट, अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका विद्यालय चौरापाट एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय डोकापाट, ये दोनों विद्यालयों में 6 अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण और दोनों विद्यालयों में 50 बेड का छात्रावास निर्माण का योजना स्वीकृत है।
1: इस वर्ष मानसून के कमजोर होने की संभावना है, ऐसे में कम बारिश एवं कम समय में किसानों को धान सहित अन्य फसलों को लगाने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी ने गुमला जिले के किसानों से अपील की है।
3: हमारे यहाँ इस बार इन लीनों का इफेक्ट है, इस वजह से हम लोग आकस्मिक योजना भी बनाए हुए हैं, विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए इस संदर्भ में हम लोगों ने जिला स्तरीय एक कार्यशाला भी किया है और विभिन्न प्रखंडों में भी हम लोगों ने कार्यशाला किया है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि इस आकस्मिक समय में हम लोग ऐसे धान के बीजों का चुनाव करें जो एक तो कम अवधि की हो और साथ में जो हमारे जमीन की प्रकृति है, जो टाण जमीन है, उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें विविधता लाने की। अदर देन धान हम लोग वैसे फसलों का चुनाव करें, जैसे हमारे उड़द हो गया, मूंग हो गया, हमारे मसूर के दाल हो गए, अरहर के दाल हो गए, इन सब के लिए जिला में हम लोगों को लक्ष्य भी दिया गया है। जैसे उड़द में हम लोगों को 600 क्विंटल का लक्ष्य दिया गया है और उड़द में 490 क्विंटल का और मूंग में 90 क्विंटल का। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इन सभी फसलों का आप चुनाव करिए, साथ में मड़वा का भी खेती को अधिक लगा सकते हैं। मड़वा की खेती में आप लोगों को हम लोग इंसेंटिव के तौर पर 3,000 प्रति एकड़ की दर से आपको प्रोत्साहन राशि भी दे रहे हैं। कोदो की भी आप खेती कर सकते हैं, गुंदली कर सकते हैं, माइनर मिलेट्स भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहिएगा तो मक्का भी हम लोग इस बार मंगा रहे हैं, वो दिशा फसल बीज विनिमय योजना अंतर्गत विभिन्न FPO लैंप्स में आप लोगों को इनके बीज उपलब्ध होंगे। साथ में आप लोगों को 50% अनुदान पर हम लोगों ने ऐसे बीज की डिमांड किया है जो आप लोगों के लिए सुविधाजनक हो।
1: PM जनमन ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गुमला जिला में अति पिछड़े इलाकों में ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में काफी खुशी है।
4: माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि हम लोग काफी खुश हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये सड़क जल्द से जल्द बने और ये काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बन रहा है, जिससे कि पहले होता क्या था कि आदिम जनजाति समुदाय को यहाँ तक जाने के लिए काफी पैदल जाना पड़ता था, कभी पगडंडी का रास्ता हुआ कर। इसे बनने से क्या है कि आवागमन का सुविधा भी हो जाएगा और समय पर लोग अपने कामों से बाहर भी जा सकते हैं।
1: बहरहाल गुमला जिला में भारत सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारी जा रही है, जिससे आने वाले समय में जिलेवासियों को इसका लाभ निश्चित रूप से मिलने वाला है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला।
0: अभी आप सुन रहे थे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है कार्यक्रम झनकार। लीजिए सुनिए कार्यक्रम के आरंभ में खिलाड़ी 786 का ये गाना।

आप सुन रहे थे अमर अकबर एंथोनी फिल्म का ये गाना, आवाजें थी किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथी की। इसी के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम झनकार यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस आपसे कुछ

क्षमा करेंगे, इस गीत को हम आपको नहीं सुनवा पाए। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम नौचेतना, वाचन स्वर है अंजना बाखला, प्रस्तुति है राजीव कुमार की, संयोजक विक्रम कुमार रंजन।

0: ना स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। युवा दोस्तों, मेहनत वो कुंजी है जो सफलता की राह को आसान करती है। जिज्ञासा और जुनून हो तो मंजिल पा लेने का सपना साकार हो ही जाता है। युवा दोस्तों, रास्ते कठिन जरूर होते हैं, लेकिन धैर्य, मेहनत और पॉजिटिव विचारों को एक कड़ी में जोड़ दिया जाए तो ये मुकाम तक पहुंचा ही देते हैं। कार्ली लॉयड जैसे विचारक का मानना है कि यदि आपके पास सपने हैं तो यह निश्चित रूप से समर्पण, बलिदान, कड़ी मेहनत के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। युवा साथियों, उज्जवल भविष्य के लिए उच्च शिक्षा, कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन की भी जरूरत होती है। इसे ही ध्यान में रखते हुए रोजगार संबंधित चर्चाओं को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। करियर प्लान के लिए सही मार्गदर्शन का होना भी जरूरी है। तो आज इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए हमारे साथ है होप इंस्टीट्यूट के मध्येंदु सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं SSC, CGL और CHSL परीक्षाओं की तैयारियों के बारे में, साथ ही जानेंगे सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को क्या रणनीति बनानी चाहिए। तो सर, आपको हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार, आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार जो हमारे आपके चैनल को सुनते हैं। सभी को हमारे तरफ से, हमारे होप इंस्टीट्यूट के पूरे टीम के तरफ से नमस्कार।
0: सर, 12वीं के बाद बहुत सारे विकल्प होते हैं करियर बनाने को लेकर, जिसके लिए उन्हें सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, तो इसे लेकर वो किस बात पर फोकस करे ताकि उनके आगे की राह जो है वो आसान हो जाए।
1: जी जरूर, मैं बताऊंगा। 12th के बाद एन नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं बच्चों के, चाहे वो बैंकिंग की तैयारी कर सकता है, SSC की तैयारी कर सकता है, रेलवे की तैयारी कर सकता है, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंकिंग, IBPS, RRB, बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं। रेलवे में ग्रुप डी है, NTPC है। हम लोग आज चर्चा में जुड़े हैं, खासकर बात करें SSC के एग्जामिनेशन के बारे में। SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, और सबसे बड़ी बात क्या है, SSC की वैकेंसी अभी अपडेट है। अब जैसा कि देख रहे हो 25 का रिजल्ट आ चुका है, 26 में वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें पहले CGL की वैकेंसी आई है, तो अपडेट है। खासकर देख पा रहे हैं हम लोग क्या कि जो वैकेंसी अपडेट है उसमें बच्चों को तैयारी करने में रुचि होती है, जिससे हम लोग बात करें यहाँ पे SSC एक बड़ा कैरियर, एक बेहतर कैरियर। ICSE की वैकेंसी को फॉर्म को भरने के लिए बच्चा 10th पास किया हो, तो 10th पास किया हो बच्चा भी MTS का फॉर्म भर सकता है। बात करें +2 के बाद तो CHSL की वैकेंसी वो भर सकता है, स्टोनो की वैकेंसी भर सकता है। SSC में कैरियर के बहुत सारे विकल्प हैं।
0: तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि SSC CHSL से जुड़े कौन कौन से पोस्ट होते हैं और एग्जाम का इसका पैटर्न क्या होता है।
1: बहुत बढ़िया सवाल पूछा, बच्चों को बड़ा लाभ होगा ये सुन के, है ना। CHSL की बात करें हम लोग यहाँ पर, CHSL कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन होता है, जो कि एक क्लर्क लेवल की वैकेंसी होती है। क्लर्क लेवल वैकेंसी की बात करें, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट बहुत सारे हैं, लेकिन सारे जो जितने ही वैकेंसी है सब क्लर्क होते हैं। अब लोग बात करें इसके सिलेबस की, बात करें सिलेबस मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और GS, जिसमें क्या है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा और मेंस एग्जामिनेशन, PT और मेंस। जो बच्चे PT पास कर जाएंगे उनको मेंस में क्वालिफाई, जो मेंस क्वालिफाई करेंगे उसके बाद कुछ कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग पोस्ट है, कुछ के लिए टाइपिंग पोस्ट नहीं है। कहीं कहीं क्या है कि स्टोनो भी है। SSC CHSL के अंदर ये स्टोनो की वैकेंसी आती है, जिसमें स्टोनो में शॉर्ट हैंड और टाइपिंग ये मस्ट रिक्वायरमेंट हो जाता है। वहाँ पे बच्चों को, बच्चे तैयारी करते हैं और वो भी कलर की ही जॉब है। यानी आप इतना दिमाग बैठा ले बच्चों, ये दिमाग बैठा ले कि SSC CHSL का मतलब वो क्लर्क लेवल जॉब है। इन फ्यूचर प्रमोशन हो के आप ऑफिसर बन सकते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल। हमारे बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि आज CHSL से उन्होंने जॉब पाया है और वो आज बढ़िया पोस्ट ऑफिसर, मेहनत करके वो प्रमोशन मिला, वो ऑफिसर बने हुए हैं। CGL कॉमन ग्रेजुएट लेवल, वो ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी है। CHSL कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल, ये +2 लेवल वैकेंसी है। यहाँ की बात करें CGL ऑफिसर रैंक की वैकेंसी है और CHSL क्लर्क लेवल की वैकेंसी है। यानी कि जो बच्चा CGL क्वालिफाई करके जाएगा वो डायरेक्ट ऑफिसर बनेगा, लेकिन जो बच्चा CHSL क्वालिफाई करके जाएगा वो एक क्लर्क बनेगा। CGL हायर पोस्ट है, CHSL जूनियर पोस्ट है। मैं बात करूँ सिलेबस की, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बैठा रहता है कि जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी मतलब सारे एग्जाम का सिलेबस एक होते हैं, लेकिन मैं यहाँ श्रोताओं को ये बताऊंगा, बच्चों को ये बताऊंगा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। सिलेबस बिल्कुल अलग अलग होते हैं। CGL का सिलेबस, CHSL का सिलेबस में टॉपिक सेम है, बट क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल बदला हुआ होता है, बिल्कुल चेंज होता है। हाँ, ये बिल्कुल कहना सही है कि मैंने पहले ही बताया है कि यदि कोई बच्चा CGL की तैयारी करता है तो CHSL ऑटोमेटिक क्रैक हो जाएगा उसका, क्योंकि सिलेबस के टॉपिक सेम है, क्वेश्चन क्वेश्चन के पूछने के पैटर्न अलग अलग होते हैं। सीजीएसएल में थोड़ा लेवल नीचा सवाल आता है और सीजीएल में सवाल थोड़े ऊपर आते हैं। दोनों एग्जामिनेशन मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। जीएस में भी क्या होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से सवाल कम होते हैं, करंट अफेयर्स और साइंस से क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। बच्चे को पूरा हिस्ट्री यदि पढ़ता है एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तो उसे एक दो क्वेश्चन आएगा, लेकिन वही यदि बायोलॉजी पढ़ लेता है, लाइफ साइंस पढ़ लेता है, उसे चार क्वेश्चन हो जाते हैं। करंट अफेयर्स पढ़ ले उसे 8-10 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो बच्चों को स्ट्रेटजी बनानी हो कि उनकी तैयारी कैसे हो, क्या वो पूरा सिलेबस पढ़ के तैयारी करना चाहते हैं या कि जितना जरूरत हो उतना ही पढ़े। मैंने अभी जस्ट बताया हिस्ट्री में 3 एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पढ़ के एक क्वेश्चन आएगा, एक बायोलॉजी का पेपर पढ़ के 4 क्वेश्चन वहां से आ जाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी बनाते हैं हम लोग बच्चों को, जो हम लोग गाइड करते हैं बच्चों को इंस्टीट्यूट के माध्यम से, वहां स्ट्रेटजी बनाते हैं बच्चों की, हाँ इस तरह से करो ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। और भी प्रैक्टिकल होकर समझाते हैं बच्चों को
0: जो तैयारी है वो किस पैटर्न पे करनी चाहिए स्टूडेंट्स को कि वो हर सब्जेक्ट से आंसर वो दे सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सारे का आंसर दे सके। मैं बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि नाउ डेज जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं बच्चों की तैयारी का लेवल बहुत बढ़िया जा चुका है और कट ऑफ बहुत हाई जाता है, कट ऑफ कम नहीं जाता है। तो कट ऑफ यदि हाई जा रहा है, 100 क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनेशन में, 25 मैथ्स, 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग, 25 जीएस। तो बच्चों को सबसे पहले काम ये करना होता है कि अच्छे तरीके से ऑफलाइन में प्रॉपर सिलेबस को अच्छे से पढ़े। प्रॉपर सिलेबस मैथ्स का जो सिलेबस एसएससी ने रिलीज किया है कि मैथ्स में आपको अर्थमेटिक होगा, एडवांस मैथ होगा, एडवांस मैथ में अलजेब्रा होगा, अर्थमेटिक में प्रॉफिट लॉस होगा, लाभ प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज होगा, टाइम एंड वर्क होगा, रीजनिंग में कैलेंडर होगा, क्लॉक होगा, इस तरह सिलेबस जो एसएससी ने रिलीज किया है, सबसे पहले उस सिलेबस को अच्छे से पूरा कंप्लीट करें बच्चे। और कंप्लीट करने के बाद 10 सालों का प्रीवियस ईयर उठाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जीतोड़ उसको प्रैक्टिस करें। फिर करें क्या, टाइम मैनेजमेंट सीखें। टाइम मैनेजमेंट क्या है कि वो घर ही देख के क्वेश्चन को बनाए। शुरुआत दौर में घर ही देख के बनाने की जरूरत नहीं है उन्हें, शुरुआत दौर पहले सीखना है, बिगिनर्स है वो सीख रहे हैं। जब वो बनाना सीख ले मैथ्स को तो फिर टाइम ड्यूरेशन फिक्स करें, क्योंकि टाइम का बड़ा महत्व है। इस साल एसएससी ने टाइम को लेके इस बार बहुत बड़ा धमाका किया है। तो क्या है कि टाइम घर ही देख के उसको बनाए और फिर मॉक लगाए, और मॉक में उसका 80% नंबर आ रहा है, मेरा कहना जाके वो एग्जाम दे दे उसका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत बड़ा काम नहीं, प्रोसेस है। इस प्रोसेस को बच्चा यदि फॉलो करता है वो रिजल्ट लाएगा, जरूर लाएगा। टीयर 1 और टीयर 2 का अलग अलग प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज टीयर 1 और टीयर 2 का सिलेबस सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सेम है, लेवल में अंतर आता है क्वेश्चन के। मेंस एग्जाम में असली परीक्षा होती है, और मेरा मानना है बच्चों की तैयारी मेंस के ही करनी चाहिए, पीटी तो गिफ्ट में मिल जाएगा उन्हें। निगेटिव मार्किंग लगभग देखा जाए इंडिया के 90% एग्जामिनेशन लगभग जगह निगेटिव मार्किंग है। एसएससी भी निगेटिव मार्क करता है 0.25, एक क्वेश्चन गलत होगा 0.25 मार्क्स आपका कट जाएगा। 0.2 मिस करें 1/4 एक क्वेश्चन ही 2 मार्क्स का है तो आपका हाफ नंबर वहां पे कट जाएगा, यदि गलत बनाएंगे तो। और सही बना तो निगेटिव मार्किंग का बहुत असर होता है। कोई बच्चा यदि ये पता चल जाए कट ऑफ के आसपास हमको आ रहा है तो उसको आगे अटेम्प्ट नहीं लेना चाहिए, जितना बन गया उतना में स्टॉप करना चाहिए इनको। कंप्यूटर की जरूरत मेंस के एग्जामिनेशन में, इससे बहुत बड़ी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होना चाहिए, शॉर्टकट कीज आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज पता है तो कंप्यूटर एग्जाम आसानी से पास करते हैं। हाँ, जिस एग्जामिनेशन में कंप्यूटर टाइपिंग है तो टाइपिंग की आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, जो बिल्कुल जरूरी है बच्चों। करंट अफेयर्स की बात करें मैम, हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स हर एग्जाम का आर्केड में बैकबोन कर सकते हैं हम लोग, बिना करंट अफेयर्स के कोई एग्जाम नहीं निकल सकता। जो जीएस का हमारा पोर्शन है, जनरल स्टडीज का पोर्शन है, उसमें करंट अफेयर्स भी होता है। जो पैटर्न एसएससी ने फॉलो किया है लगभग 6-7 सालों से मैं देख रहा हूँ, लगभग 10-12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। और करंट अफेयर्स जो होते हैं वो हमारे इंडिया में घटी घटनाएं जो हो गई या फिर इंडिया के बाहर, वो सारे चीजों को पढ़ें। ओलंपिक्स का यदि कोई बात है ओलंपिक्स के बारे में पढ़ें, ये सब करंट अफेयर्स में पढ़ना होगा। प्राइम मिनिस्टर विजिट को एकदम फोकस करें, वो कहाँ हो रहा है, कोई हमारा मिनिस्टर है इंडिया को वो कहीं बाहर यदि विजिट करे उसको देखे। स्पोर्ट्स को फॉलो करें, कोई स्पोर्ट्स क्रिकेट नहीं, क्रिकेट सवाल ना के बराबर होता है। ओलंपिक्स पे बात करें, जो बढ़िया जो गेम्स होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड उस पर फोकस करें तो ये करंट अफेयर्स वहां से पकड़ में आया। समय देखिए मैम, वो होता क्या है कि बच्चों के माइंड सेट पर निर्भर करता है। कोई बच्चा एक साल में भी निकाल लेता है, कोई बच्चों को 2 साल लगता है, किसी को 4 साल भी लगता है। वो टोटली डिपेंड्स अपॉन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट, वो कितना ग्रैप कर पाता है चीजों को, कितना टाइम दे पा रहा है। हाँ, लेकिन ये कहना बिल्कुल सही है कि 4-5 घंटा कंटिन्यूअस स्टडी करे तो 2-3 सालों में सीजीएल सीएचएसएल वो बच्चा निकाल सकता है। बट रेगुलर होना चाहिए, ये नहीं कि आज 8 घंटा पढ़ ली और कल 0 पढ़ रहे हैं, तो वैसे नहीं। बिल्कुल मैम, किताब के बारे में बता दूं, जहां तक किताब जो नए पैटर्न के बुक आ रहे हैं या फिर प्रीवियस ईयर पेपर कैसे आ रहे हैं, बच्चों को अपनी तैयारी प्रीवियस ईयर को देख के करना है, पहले क्वेश्चन कैसे आ चुके हैं, बिकॉज हम लोग ये कह सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर इज द मिरर ऑफ एनी एग्जामिनेशन। किसी भी परीक्षा का जो प्रीवियस ईयर पेपर है दर्पण की तरह काम करता है, उस पैटर्न को फॉलो करके जो भी बुक यदि मार्केट में है तो बच्चे उस किताब को ले सकते हैं, उस किताब से पढ़ाई कर सकते हैं, उस किताब से सॉल्व कर सकते हैं चीजों को, और उसका रिजल्ट इसी से आ जाएगा। किताब का बंडल बनाए समझो, किताब को पढ़ना भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सीजीएल हर 2-3 सालों पे एक बड़ा सा धमाका करता है, उसी तरह सीजीएल 2026 में भी धमाका किया है। ये चीज मेंस में था बट प्री में नहीं था। ऐसे सीजीएल 2026 में लगभग 17,000 वैकेंसी लेके आया है सीजीएल, और एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज किया है बच्चों के लिए कि वो हर

0: सेक्शन के लिए सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस किया है। सेक्शनल टाइमिंग का मतलब मैं बता दूं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल बता दूं, जैसे कि 100 क्वेश्चन का पेपर है, 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से और 25 क्वेश्चन जीएस से, तो पहले ये पूरे के लिए एक घंटा टाइम मिलता था। अब क्या है, टाइम अभी भी एक घंटा है, उसी एक घंटे में बनाना है। अब ये चीजें बदल गई है, सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस किया है एसएससी ने। टाइमिंग इन द सेंस कह सकते हैं हम लोग क्या कि 15 मिनट मैथ्स में, 15 मिनट रीजनिंग में, 15 मिनट इंग्लिश में और 15 मिनट जीएस। अब बच्चा कूद के मैथ्स से जीएस में नहीं जा सकता या जीएस से कूद के मैथ्स में नहीं जा सकता। सब आप बच्चों को ये पता होगा कि जीएस बनाने में 5 से 7 मिनट लगता है। बना तो अच्छी बात है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, वहां से 15 मिनट 10 मिनट समय बच गया, उसको मैथ में यूज कर लेते थे। अब बच्चा उसको यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि वो 15 मिनट के लिए विंडो खोलेगा। मैथ्स जो है 15 मिनट के लिए खोलेगा, 15 मिनट 25 को बनाना है। दैट मींस वी कैन से दैट यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड, मतलब आपके अपने स्पीड को बढ़ाना है। स्पीड बहुत मैटर करता है और इससे कट ऑफ जाएगा लोग। यदि कट ऑफ मान के चलिए कि 80 से 85 क्वेश्चन यदि कट ऑफ गए हैं जनरल के लिए, हो सकता है इस बार 70 और 75 में ही रिजल्ट आ जाए।
1: प्रीलिम्स का
0: बहुत बहुत अच्छे तरह से और सेक्शनल पे काम करना है बच्चों को। सेक्शनल मॉक लगाइए, उससे बहुत फायदा मिलेगा बच्चों को।
2: सर, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल से जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातों को आपने हमारे साथ साझा किया, एक मार्गदर्शक के रूप में आपने हमारी युवा श्रोताओं को जो टिप्स दिए हैं, इसे सुनकर वो बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, बेहतर जानकारियों के साथ कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, मैं पूरे श्रोताओं का भी धन्यवाद जो हमारी बातों को इतना गौर से सुने, और बिल्कुल फायदा होगा बच्चों को।
2: श्रोताओं, आशा करते हैं एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल परीक्षाओं से संबंधित जानकारियों को सुनकर आप जरूर लाभान्वित होंगे। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले खंड की ओर, करंट अफेयर्स में। आइए जानते हैं देश दुनिया में घटित घटनाक्रमों को जो आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने और स्वच्छ ऊर्जा की ओर वैश्विक संक्रमण को तेज करने के उद्देश्य से COP31 की संयुक्त अध्यक्षता कर रहे तुर्की और ऑस्ट्रेलिया ने एक महत्वपूर्ण लक्ष्य प्रस्तावित किया है। 9 जून 2026 को बॉन जलवायु बैठक के दौरान 35x35 नामक इस पहल की घोषणा की गई। यह कदम जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा ने गुजरात में भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए साझेदारी की है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना के अगले उप वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है और वे 1 जुलाई 2026 को कार्यभार ग्रहण करेंगे। भारत ने 9 जून 2026 को गोवा में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर अपना रिकॉर्ड बनाते हुए छठी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। आंध्र प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए 7 जून 2026 को राज्यव्यापी योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले खंड में आइए डालते हैं उन विज्ञापनों पर नजर जिनके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया इन दिनों चल रही है। कर्मचारी चयन आयोग SSC ने CGL परीक्षा 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों में ग्रुप बी और सी में 12,256 भर्तियां की जाएंगी। आयोग के अनुसार ये संभावित रिक्तियां हैं, आवश्यकता के अनुसार इनमें बदलाव हो सकते हैं। स्नातक उत्तीर्ण युवा इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 22 जून 2026। कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। श्रोताओं, आपसे निवेदन है, आवेदन करने से पहले इनसे संबंधित जानकारी समाचार पत्रों या वेबसाइट से अवश्य कर लें। श्रोताओं, आपको हमारा आज का अंक कैसा लगा? कार्यक्रम नव चेतना के लिए आप अपने विचारों को हमसे साझा कर सकते हैं। इसके लिए हमारा छोटा सा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम नव चेतना द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी हजारीबाग, पिन कोड है 825301। श्रोताओं, कार्यक्रम नव चेतना के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार और संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन। अब आज की इस कड़ी के साथ कार्यक्रम नव चेतना से दीजिए अंजना को इजाजत। नमस्कार।
3: आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम नव चेतना। वाचन स्वर था अंजना बाखला का। प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार, संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन। क्या आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत।

आपकी चाहत कार्यक्रम सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को रानी का प्यार भरा नमस्कार। फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर। सुनवाते हैं तमाम श्रोताओं की पसंद पर ये गाना। गीत को सुनना चाहते हैं हरली सी, उमेश चंद्र पांडे, शंभू चंद्र, अनिल चंद्र, साकेत, शुभम, नर्मदा पांडे, अक्षता, प्रियंका, शमी, अपराजिता, अपूर्व, टुकू और पांडे परिवार की समझ लो। इसी गीत को सुनना चाहा है शेपा कला बड़का गांव से श्री बाबूलाल ठाकुर, श्रीमती साबिया ठाकुर, तिलेश्वरी, श्री भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जितेश आदर्श, अनुराधा रुक्मणी और प्रियंका दीपिका, सौदागर मोहल्ला रामगढ़ से महबूब आलम, शबनम नूरी, मकसूद आलम, पाकिजा बेगम, महमूद आलम, सहनाज नूरी, महफूज आलम, शमसाद बेगम और इनके तमाम साथी।

यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, आपसे कुछ ही क्षणों पर आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से विशेष श्रृंखला वर्तमान सरकार की 12 वर्ष पूर्ण।

0: आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम वर्तमान समय सरकार के 12 वर्ष पूर्ण।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
2: नमस्कार। 10 जून 2026 एक ऐसी तारीख बन गई है जो कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगी और लोकतंत्र जिसकी बात सिर्फ बात नहीं होती बल्कि भारत उस पर गर्वान्वित महसूस करता है उस इतिहास में भी लिखी जाएगी। नरेंद्र मोदी एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है और इसके अलावा एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के 12 साल भी कम्प्लीट हुए हैं। तो अब विकसित भारत की बहुत बात होती है लेकिन एक ऐसा मंत्रालय जिसकी बात गांव गांव तक पहुंचती है और सिर्फ बात नहीं क्या वाकई में गांव के लोग उस बात को महसूस भी करते हैं। जी हाँ, हर घर जल और नल ये एक ऐसी योजना रही जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा 12 साल में रही और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी। बहुत बहुत स्वागत है पाटिल जी आपका।
3: नमस्कार।
2: दो कीर्तिमान स्थापित हुए 12 साल सरकार के और दूसरा प्रधानमंत्री ने वो रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी चर्चा अब तक सबसे ज्यादा होती थी जवाहरलाल नेहरू की। दोनों को आप किस तरह देखते हैं?
3: देखो, 12 साल कंटिन्यू काम करना, लोगों की जो आश है जो अपेक्षा है वो पूरी करना और बार बार जीतना और ऐसे मुश्किल परिस्थिति में जीतना ये अपने आप में बड़ी बात होती है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, वो सब लड़ते थे इलेक्शन उस टाइम कांग्रेस के सामने कोई विरोध पक्ष नहीं था और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग, सीनियर लोग, कांग्रेस खुद लड़ती है उसके अंदर अपने बलबूते पे लड़कर वो आना और 12 साल कंटिन्यू सेवा करना और करते रहना यही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और उसको हम देखेंगे कि 12 साल में क्या किया उन्होंने। लोगों की सभी अपेक्षा पूर्ण करने में उत्तीर्ण हुए, एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं कि काम तो उसके अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत काम उन्होंने किए, देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी समाज के लिए कोई न कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है।
2: पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आपने क्या देखा कि इतना ज्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी यही बात होती रही और सरकार ने 12 साल कंप्लीट कर लिया?
3: देखिए, हमारा कहते ना अंगूर खट्टे हैं, तो इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा देंगे, सरकार बना लेंगे, मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उसमें दिखता है और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते। अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज के लिए। उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले उसकी आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया। ये आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है।
2: मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती थी जितना विपक्ष उनकी चर्चा करता था और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं को किया जाता है।
3: देखिए, उनको लगता था कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा खानदानी अधिकार है, ऐसा समझते थे। आज एक आम आदमी में से एक सामान्य आदमी अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचता है अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अभी किसी से मैं बात कर रहा था कि 12 साल तो रिकॉर्ड हुआ, 12 साल बेमिसाल तो रही है, आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
2: तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास ही है जिसने यहाँ तक उनको पहुँचाया है?
3: नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है, मगर उसके साथ प्लानिंग है, वो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं। टारगेट अगर महिला के लिए तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए तो किसान के लिए योजना बनेगी। हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है, मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई। यानी ऐसे कई आपको इंसिडेंस मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है।
2: पाटिल जी, अब हर घर जल और नल ये योजना, मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आजादी के बाद इतनी सारी चीजों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर लाना पड़ता था। मैंने कई गांवों में जाकर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन है, और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
3: किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में घरों में टॉयलेट नहीं था, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, अंधेरी रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी, 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह से टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया। हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपंप डाल देते थे तो उनको लगता था हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो हर घर में और वो भी हर पर हेड 55 लीटर पानी उसको मिले, अच्छा पानी, क्वालिटी का पानी मिले, पूरी क्वांटिटी में मिले, इसकी व्यवस्था करने की बात थी। 16 करोड़ घरों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पानी पहुंचा दिया। 3 करोड़ घरों में अभी जो पानी पहुंचाना है उसकी डेट भी तय कर ली कि दिसंबर 28 तक ये भी पूरा काम पूरा करना है। तो इससे हुआ क्या, जो 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज पानी लाने जाने में उनके जाते थे, आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसको आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण, जो गंदा पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना उसके पीछे कितने लोगों का फायदा हो, महिलाओं को पानी की मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को, सबको ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो काम मोदी साहब ने किया है।
2: मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया, तब आप दिल्ली आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल संचय वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे हमें पहुंचाना है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है।
3: देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये दो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था, हमने अचीव किया 27,50,000 पर हम पहुंच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1,55,00,000 तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने, बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से लेके बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए। और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी है। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है, उनका नाम है दामजी भाई एंकर, शायद वो अभी नहीं रहे, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं मगर वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको डिसिल्टिंग करना था, उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो, लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है, और सिर्फ सोच नहीं उसको अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है वो आपको देखें, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नर्मदा से साबरमती और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियां तालाब सरोवर आए वो सबको पानी से भर दिया, और पहला रिवर लिंकिंग था। केन बेतवा दूसरा रहा मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में, 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने पीकेसी की एक नया योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1,00,000 करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है वो आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी साहब काम कर रहे हैं तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो जल संचय की जो विशेषता ये है कि हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी कैनाल में ले जाते हैं, तो कैनाल जहां तक पहुंचती है उसके अगल बगल के किसानों को फायदा होता है, मगर जो दूर दरार है, गांव दूर है, खेत दूर है, उसको पानी नहीं मिलता। जल संचय से हर गांव में जो बह के जाने वाला पानी खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है। हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में ही बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं, खेत में भी 4x6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं। एक बारिश में 4 से 5 लाख लीटर पानी वो खेत में नीचे जमीनों उतर जाता है। इसके कारण जो किसानों के कुएं हैं, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गांव में भी ऐसा हुआ, गांव के भी जो कुएं थे या बोर थे उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम, इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे तो ये जल संचय की वजह से हमको वहां की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
2: आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है, यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं बीजेपी के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं, आपको लगता है यही वो वजह है?
3: एक वजह नहीं है, महिलाओं देखती है कि पहला आपको बताऊं, मैं गुजरात में जब आए थे उस टाइम में पावर नहीं आता था, महिलाओं को रसोई जल्दी बनानी पड़ती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी बर्तन करके उनको बैठ जाती थी, और फिर उसके पास बहुत टाइम था और एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी साहब ने आकर एक सिंगल फेज अलग से लिया, पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई, तो उनकी व्यवस्था हो गई, तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं रहा, वो देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकती थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई भी पुरुष बाहर जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की, आतंकवाद को खत्म कर दिया, नक्सलवाद को खत्म कर दिया, और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में प्रमोट किया, तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी, मगर उनको मौका नहीं मिलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में तो वहां जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में 50% महिलाओं के सीट रिजर्व कर दी, वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहाँ देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
2: आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में?
3: मैं मानता हूँ कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहाँ उनकी एक मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री है, इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है, और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पे भी जो काम करते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुंच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट आई उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी, उसी तरह उन्होंने जमीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए। सबमरीन भी नई नई बनाई और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है। आज भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे। आज वो बात नहीं रही, ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी उनको ये बात समझती वो पूरी और देखते भी है।
2: गुजरात का कई सारे वहां के किस्से जो है मैंने किताबों में पढ़े और कई बार हमने जो मोदी जी के बचपन के दोस्त वगैरह उनके इंटरव्यूज देखे कि मोदी जी एक तो हर किसी को याद रखते हैं नाम से और दूसरा हर बात की बारीकी में डिटेल में जाते हैं, काम के मामले में भी और वैसे भी। तो जब आप वहां पर थे गुजरात में, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर उनको कुछ गलत बता दिया हो तो वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे तथ्य गलत बोला गया है?
3: वो तो पूरा देश जानता है कि बहुत शार्प है, उनको कोई गलत बता के उन्हें कोई ठग जाए ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती। और उनका जो डिटेलिंग करने का काम है उसके अंदर कोई भी आदमी उनको कोई गलत कुछ बता भी नहीं सकता। और वो जो सुनते सबकी है और करते हैं अपने मन की, क्योंकि उनको अपने आप में भरोसा है, उनका प्लानिंग होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे वो प्लानिंग करते हैं और परिणाम लाके देते हैं। गुजरात में पहली बार महानगर पालिका अगर किसी ने जीती थी, अहमदाबाद महानगर पालिका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीती थी। तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है, जीतते ही जाते हैं, उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और ना कभी देखेंगे।
2: आपने कोई एक चीज जो उनसे सबसे ज्यादा सीखी हो जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल,
3: एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवाडांग में उनका कार्यक्रम था और वो जो साफा लगाते हैं तो ये साफा मुझे लेके जाना था और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट। उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उन्होंने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था और मैं पहुंच गया था। मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसे लगा कि सीआर ये कैसे चलेगा, मैंने कहा सॉरी सर। उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला, मुझे आज तक भी वो 2 शब्द उनके वो मुझे उसके घाव आज भी दिखते हैं। तो ये उनसे ये सीखा है कि समय पे ही काम होना चाहिए, हमें देर करने की कोई आदत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में भी मेरे हमारी मीटिंग जो होती है मैं डॉट टाइम शुरू करता हूँ, समय पर पूरी करना, जो भी काम है उसको हमें आज करना है तो कल तक छोड़ना ही नहीं, आज ही पूरा करना। मेरे पास कोई भी फाइल आती है मैं सेम डे उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आदत है जो मोदी साहब ने सिखाई है कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और हम सामान्य लोगों को अवेलेबल होने चाहिए। उनसे सीखे हम जो यहाँ कोई भी आके मिल सकता है, हमारे गेट पे किसी को रोकते नहीं है, किसी का नाम तक नहीं पूछते हैं। तो उसको लगता है कि मैं कोई प्रधान के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें उनसे सीखी है कि लगाव लोगों से बढ़ना चाहिए और उन्हीं के आधार पर जो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से सीखी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पॉलिटिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी उनसे ही सीखी है, उनका ही अनुकरण करके हम आगे बढ़ते हैं।
2: आपके इस एग्जाम्पल से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने 2 शब्दों में अपनी बात भी रख दी और आपको आज तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके।
3: नहीं नहीं, वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं एक इंसिडेंस आपको और कहना चाहूंगा, 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े, काउंटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहां के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी आईएएस अधिकारी और सभी एमपी सबको स्पाउस के साथ बुलाया था और वहां उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। काउंटिंग के पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है। कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कह दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है और मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा, मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी, इससे ज्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा यहाँ सब अधिकारी की पत्नी बैठी है उनको होगा कि मेरे पति को भी मोदी साहब ने डांटा होगा मगर वो बता नहीं रहे होंगे घर में, पर मैं आपको कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ उसके पहले मुझे एक क्लियर करना था, इसके लिए बताया। मगर वो क्लियर तो किया उन्होंने मगर जो आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कॉन्फिडेंट लेवल जो प्रकट हुआ कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उनका काम करने का तरीका है।
2: ये तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। लेकिन पाटिल जी, इन 12 सालों में आपने, चलिए हर घर नल और पानी वाला तो आप ही का डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपको फैसला लगता है या सरकार की कोई नीति लगती है जो हमेशा मतलब याद रखी जाएगी?
3: वो एक चीज नहीं है। मैंने कहा ना फिर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे, तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी, धूम्र से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को। और उसके साथ उसका छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसका भी फेफड़ा बचपन से ही वो वीक हो जाता था, तो सिर्फ महिलाओं के लिए बच्चों के लिए भी उसके अंदर काम हो गया, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा आयुष्मान में लोग बीमार पड़ते थे, घर में नहीं बताते थे, उनको लगता था कि बेटे को पता चलेगा, खर्च होगा, बेटे के पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेगा, मकान बेचेगा, खेत बेचेगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कर्जदार बने, और वो जो भी दर्द है उसको छुपा लेते थे। बहुत तकलीफ होती थी तो बाहर जाके खेत में जाकर रो लेते थे, और घर में नहीं बताते थे, आंसू लेकर नहीं आते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ, और उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा मोदी साहब ये योजना से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने अपने बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6,000 रुपये साल में 3 बार डाल देते हैं, बिल्कुल समय पर देते हैं। और युवाओं के लिए भी उन्होंने कितनी कोशिश की, पहले तो नौकरी लगाना है तो आपको किसी की सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन दे देनी पड़ती थी। आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर उसके केस भी चल रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता से जो वो अभी उन्होंने 51,000 बच्चों को अभी रोजगारी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एक सेकंड में पूरे देश में 50,000 लोगों के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। न उसको कोई सिफारिश करनी पड़ी, न किसी को कोई पैसा देना पड़ा, न जमीन देनी पड़ी। तो उससे युवाओं को भी विश्वास हो गया कि यह आदमी युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहता है, और वो युवा कोई निराश न हो जाए, उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए, तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है।
2: ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, तमाम चीजें ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
3: जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है वो भी माननीय मोदी साहब की जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी जो विदेश नीति है उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, 2 देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे, हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है, हम न्यूज तक नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजीशन परिस्थिति जो आई है वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ है ऐसे समय में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में, इतना GDP जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे, मोदी साहब ने 5वें पर लाई और 3रे पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी उनको कहकर लाए हैं, हमने कहा कि हमने कुछ किया और हो गया, ऐसा नहीं है। पहले से उन्हें कह दिया कि मैं ये नंबर पे देश के अर्थतंत्र को लेके आऊंगा। तो ये व्यवस्था करना तो हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, देश का हो, चंद्र पे जाना है, अवकाश में जाना है, हमें फाइटर प्लेन लेने हैं, अच्छी सबमरीन लेनी है, वो भी देश में बनाना है, तो सब काम एक ही आदमी इतनी ताकत के साथ कर रहा है। और ये बैठे बैठे बस उनकी एक ही सोच है कि बस हमें प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बना दो, उसका कोई वजह नहीं है उनके पास, उनको खानदानी ये सीट उनकी है ऐसा उनको लगता है। ये चाय वाला कैसे आ गया, ये चाय वाला पूरे देश के लोगों की चाहना लेकर आया है, और इसको हटाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
2: चलते चलते पाटिल साहब, मैं यही जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने ग्रीट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दी, इतना रिकॉर्ड PM ने बनाया, प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था?
3: नहीं, मोदी साहब ने सबका आभार व्यक्त किया, सबको धन्यवाद दिया।
2: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया CR पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई इसीलिए बहुत ज्यादा अहम ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहे, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर। अब सुनिए मोबीक्विक के संस्थापक विपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत।
4: नमस्कार। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं, और इन 12 वर्षों में जनता ने 2 बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी, जमीन पर उतरती हुई नीतियां देखी, सभी के फोकस में, सभी के केंद्र में आम आदमी था और एक ऐसी ही नीति थी डिजिटल इंडिया को लेकर। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, नीतियों में क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोबीक्विक के फाउंडर और सीईओ विपिन प्रीत सिंह।

0: तरह के इन्वेस्टर्स से उठाए और बिजनेस बनाया, तब हमारे पास आई थिंक 30 लाख या 40 लाख यूजर थे। आज की डेट में मोबीक्विक प्लेटफॉर्म 18 करोड़ यूजर यूज करते हैं पूरे भारत में। तो इन नंबरों से ही आपको समझ आ जाएगा, इन आंकड़ों से, कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इकोनॉमी है वो किस हद तक उसकी ग्रोथ हुई है। मुझे याद है 12 साल 15 साल पहले जब आप मोबाइल फोन पे कॉल करते थे तो सोचना पड़ता था कि कितने की कॉल पड़ेगी, मैसेज करना है तो कितना पैसा लगेगा। आज के समय में आप नहीं सोचते। आज के समय में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप बैंक नहीं भागते, आप फटाक से अपना फोन निकालते हैं और यूपीआई से डिजिटल पेमेंट करते हैं। करीब करीब 4 में से एक भारतीय या 3 में से एक भारतीय ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें मोबीक्विक ने एक बहुत बड़ा सफर और बहुत बड़ा योगदान दिया है। बट इन सब के पीछे जो नीतियां हैं जिनसे ये पॉसिबल हुआ है उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होती थी, हम राशन कार्ड लेके घूमते थे। अब आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, पैन जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, मोबाइल फोन के रेट सस्ते हुए हैं, फिर जो यूपीआई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उससे मोबीक्विक की बिजनेस को बनाने में बहुत बहुत बड़ा हाथ है। उसके बिना मुझे लगता नहीं है ये संभव भी था।
1: तो मतलब 17 साल के आपके सफर में, 12 साल मोदी सरकार के, और इन 12 साल में जो डिजिटल इंडिया का सफर रहा उसमें काफी हद तक आपके अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली। और आप ही के नहीं, ऐसे कई ऐसे पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एग्रीगेटर की हम लोग बात करें, वो सिस्टम में आए, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। अगर मैं 3 प्रमुख नीतियों की बात करूं 2014 से लेकर के 2026 के बीच में, वैसी कौन सी 3 बड़ी नीतियां थी जिन्होंने आपके कारोबार को, कहने का मतलब कि डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद की?
0: तो इनमें काफी नीतियां थी, बट सबसे पहला मैं ये मानूंगा कि कोई भी सरकार जब किसी बिजनेस के साथ काम करती है तो हम जब बिजनेस सरकार से बात करते हैं तो उनकी नीतियों को और उनकी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 साल पहले ही हमें समझ आ गया था कि ये सरकार डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी लेके आएगी और उसको हर एक लेवल पे इम्प्लीमेंट करेगी। एंड आई थिंक वो जो डिजिटल इंडिया की जो एक मुहिम बनी जिसके अंतर्गत ये सब हुआ कि आधार, पैन, जनधन अकाउंट्स खुले इतने सारे, अभी हर पर्सन के पास, हर इंसान के पास अकाउंट है, तब नहीं थे। तो ये जो नीतियां थी डिजिटल इंडिया के अंडर, जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया इंडिया में, डिजिटल डीपीआई कहते हैं इसे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक एक इंसान अपनी डिजिटल में पहचान नहीं बना सकता तब तक वो डिजिटल पेमेंट भी नहीं कर सकता, और अब डिजिटल लोन भी नहीं ले सकता, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। इन सबको जो साथ में जोड़ा गया है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि इवन बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज तक अचीव नहीं हुआ।
1: एक जो बड़ी पहल जिसको हम कहें जैम ट्रिनिटी की, हम लोग बात करें, आपने अभी जनधन की बात की थी, आपने आधार की बात की, आपने मोबाइल का बात की है, और 2015 से हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी किस तरीके से समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचाने में मदद की। इस जैम ट्रिनिटी को आप कैसे देखते, क्योंकि एक समय जैसा आपने खुद कहा कि एक मोबाइल फोन को लेकर के हम एक बार सोचते जरूर थे, और हमें वो भी दौर याद है जो आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं, जब 16 रुपए का एक कॉल होता था तो लोग कहते थे मिस कॉल मार देना। वो मिस कॉल मार देना आज भी हमारे मोबाइल कल्चर का एक पार्ट है। ये अलग बात है कि अब हम उस मोबाइल पे 16 रुपए की चिंता नहीं करते, बल्कि मिस कॉल मार देना एक बात कहते हैं। ये मिस कॉल मार देने से जनधन, आधार, मोबाइल, ये ट्रिनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं, समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति जो है उस तक सामाजिक योजनाओं का फायदा पहुंचाने?
0: इसमें सबसे पहले जो मोबाइल की मैंने बात की कि जब इंडिया में 4G आया या 5G आया और नए ऑपरेटर्स आए जैसे जियो आया या एयरटेल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इसकी ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए, और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया आज की डेट में दुनिया के आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में है। हम डेटा यूज करने से पहले सोचते भी नहीं जबकि यही 10 साल पहले कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले या कोई वीडियो देखने से पहले

0: आप सोचते थे कि इस पे कितना जीबी डेटा एमबी डेटा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है बिकॉज इस चीज को हर दर्जे के लोगों तक पहुंचाना वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। दूसरा है आधार। तो आधार के ऊपर तो ऐसा है कि डिजिटल आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट भी नहीं खुल
1: नहीं सकता।
0: तो ये उसको पूरा डिजिटाइज करना और उसके प्रोसेसेस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना कि कोई भी पूरे देश में, उस दिन मुझे अपने आधार में कुछ चेंज कराना था, मुझे 5 मिनट लगे। मैं एक नियर बाय एक बैंक में एनरोलमेंट सेंटर में गया और मैंने वहां पे अपना ऑथेंटिकेशन किया और मुझे कुछ एड्रेस चेंज कराना था, वो इमीडिएटली वहां पे हो गया। इस तरह की सुविधा हमारे देश में नेशनल लेवल आज तक कभी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिससे आप ये देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी है इस पर्सन की और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। हमारा देश अभी भी गांव में बसा है, हालांकि शहरों ने काफी तरक्की की है, बट करीब 30-35% आज भी गांव में है और सेमी अर्बन है। हर इंसान बैंक में जाके कंफर्टेबल नहीं रहता था और बैंक भी जो होते थे, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो हर एक का अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ये सच्चाई है क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह कम है या उसके अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं तो उसका अकाउंट खोलना मतलब आपको एक लॉस उठाना है। तो उसके ऊपर जो जनधन अकाउंट्स की पॉलिसी बनी जिसके ऊपर हमारे बैंकों ने काम किया और सबके अकाउंट खोले, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की डेट में मेरा ये मानना है कि 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप छोटा बच्चा देखो, आप एक बूढ़ा देखो, कोई रिटायर्ड पर्सन देखो, आप गांव में चले जाओ, आप किसी को भी डिजिटल पेमेंट इसीलिए कर पाते हो क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट।
1: तो एक डिजिटल सिस्टम का एक ये भी फायदा हमें इस स्वरूप में देखें कि जब पहले कहा जाता था कि केंद्र से 1 रुपया चलता था और 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे, आज हम बात करते हैं कि लाभार्थी का जो भी बेनिफिशियरी है उसकी पहचान साबित हो जाती है डिजिटल माध्यम से और डिजिटल माध्यम से ही लेन देन हो पाता है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेस का जो एक बेहतर इस्तेमाल है, ये डिजिटल माध्यम से और भी बेहतर तरीके से हो पाया। इसका फायदा आप किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट की बजटिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, फिस्कल प्लानिंग की बात करें, उसमें उसका योगदान किस तरीके से?
0: देखिए, डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल बिल्कुल साफ होता है और डिजिटल में पेपर का यूज मिनिमम होता है और इसीलिए डिजिटल में लीकेज बहुत कम होता है। वरना हमारे देश में जहां पे इतने गरीब लोग हैं, सरकार हमेशा से उन पे पैसा खर्च करना चाहती थी और खर्चती है भी और 12 साल पहले भी खर्चने की कोशिश करती थी, बट वो उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो इतने स्टेप से जाता था, इतनी लेयर से जाता था कि वो, जैसा कि आप बता रहे हैं, 1 रुपए की जगह 15 पैसे। बट अब जब सरकार ने डीबीटी बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट सबके पास है, तो आपको किसी को गैस की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको बिजली की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको खाने की सब्सिडी देनी है, किसी भी तरह की सब्सिडी देनी है, आपके पास उस इंसान की पूरे डिटेल्स हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं, उनकी आइडेंटिटी है, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट्स पे एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
1: विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन की हम लोग बात करें, उसमें बहुत सारे हो रहे बदलाव पे आपने चर्चा की, आपका आभार, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोबिक्विक के संस्थापक विपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: वकीलों, न्याय बंधु, कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया, अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
4: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
3: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीनो के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on the first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. 5 Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. 5-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration, focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dhiraj Seth appointed as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for India in rain-marred first ODI of 3-match series in Dharamshala. Prime Minister Narendra Modi will reach the French city of Nice tonight, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Nice has filed this report.
6: France occupies a special place in India's strategic vision. As Prime Minister Narendra Modi arrives in Nice tonight at 10:30 p.m., attention is focused on a series of high-level engagements aimed at deepening cooperation across innovation, technology and strategic sectors. Tomorrow at 2:30 p.m., Prime Minister Modi and President Macron will jointly inaugurate Bharat Innovates, India's flagship deep tech showcase in Europe. More than 120 Indian startups, along with global investors, CEOs and technology leaders, will participate in the event. Prime Minister Modi will also hold bilateral talks with President Macron. Discussions are expected to cover defense, artificial intelligence, space, trade, education and other global challenges. Here in Nice, expectations are high that the visit will inject fresh momentum into one of India's most trusted strategic partnerships. This is Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
5: On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with his Slovakian counterpart Robert Fico in Bratislava. Slovak President Peter Pellegrini, in a social media post today, said that Prime Minister Modi's historic visit will open new opportunities for Slovakia-India cooperation. In a social media post, President Pellegrini stated that he is looking forward to welcome Mr. Modi in Bratislava. The Indian community in Bratislava is preparing a unique welcome for Prime Minister Modi during his maiden visit to Slovakia. We have more from our correspondent covering the Prime Minister's Slovakia visit.
7: As Slovakia prepares to host an Indian Prime Minister for the first time, members of the Indian community are making special arrangements to accord a grand welcome. Paintings, cultural programs and dance programs are being planned to mark the historic visit. Indian Ambassador to Slovakia, Apurva Srivastava, says the excitement is clearly visible among the Indian diaspora. Preparations are underway across the community and the national flags of India and Slovakia can be seen in the capital city, Bratislava. The enthusiasm has been further boosted by the significant increase in travel and exchanges between the two countries over the past 5 years. Bratislava's strategic location in Central Europe is also expected to help strengthen tourism links with India. Smithy M. Paluriti for Akashvani News from Bratislava.
5: After concluding his Slovakia visit, Prime Minister Modi will return to France to take part in the G7 summit in the eastern part of the country in Evian on the 16th and 17th of this month. The White House today said U.S. President Donald Trump will meet Prime Minister Modi on Wednesday during the G7 summit. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. On the final leg, Prime Minister Modi will travel to Paris on the 18th of this month to attend Europe's largest technology and startup event, Viva Tech Summit. Mr. Modi is also expected to address the members of the Indian community in Paris. The five-day BRICS Agriculture Conference concluded at Indore in Madhya Pradesh today. At the end of the conference, the Indore Declaration was adopted unanimously. The declaration outlines key decisions on food security, farmers' welfare, climate-friendly farming, agricultural trade, and use of smart technology in farming. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan said that BRICS nations represent nearly half the world's population and contribute around 42% of global agricultural output. He said Indore Declaration is not just a document of agreement but a symbol of the collective will and shared responsibility of BRICS nations. We have a report.
8: Four new institutional initiatives were announced at the conference. Under the first initiative, a network of centers of excellence will be set up for joint research on natural and regenerative farming with the Indian Institute of Farming Systems Research playing a key role. The second initiative involves setting up a BRICS digital agriculture network to bring artificial intelligence and digital technology into farming, which will be coordinated by IIT Delhi. The third initiative will establish a global forum to protect farmers' rights related to seeds and to preserve traditional seed varieties. The fourth initiative will set up the BRICS Agri-N network for sharing agricultural inputs and genetic resources among member countries. With Abhinav Goyal's report, Prashant Kumar Sinha for Akashwani News.
5: Union Home Minister Amit Shah today directed the High-Level Committee on Demographic Change to study the shift in population structure in border districts. Chairing the meeting of the committee, Mr. Shah also asked the panel to visit border areas, metro cities and industrial towns for an assessment of changes because of illegal migration and other unnatural causes. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force crashed at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning during a routine sortie, claiming the lives of five air warriors. The Indian Air Force IAF has expressed grief at the loss of lives. In a social media post, IAF said Squadron Leader Prashant Singh, Flight Lieutenant Shubham Kumar, Sergeant Jitendra Sharma, Agniveer Vayu Khemaram Kumawat and Agniveer Vayu Danish Alam made the supreme sacrifice in the line of duty. The IAF said that a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. Defence Minister Rajnath Singh has also expressed grief at the loss of five air warriors. In a social media post, Mr. Singh said their courage and service to the nation will always be remembered with pride and gratitude. He also conveyed his heartfelt condolences to the bereaved families and said the nation stands firmly with them in this hour of grief. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. The government has appointed Lieutenant General Dheeraj Seth as the next Chief of Army Staff with effect from the 30th of this month. He is presently serving as the Vice Chief of the Army Staff. The present Chief of the Army Staff, General Upendra Dwivedi, is retiring from service the same day. The Defence Ministry said in a statement that Lieutenant General Dheeraj Seth was commissioned into the Armoured Corps in December 1986 and has an extensive experience across the operational, strategic, capability development and institutional domains, contributing significantly to the Indian Army's combat effectiveness and long-term transformation over a distinguished military career spanning nearly four decades. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Narendra Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today we focus on the steps taken by the government to strengthen and celebrate the nation's cultural legacy.
3: Over the last 12 years, India's cultural journey has flourished. Government has undertaken numerous initiatives both nationally and internationally that have instilled a deep sense of pride in the country's cultural heritage among its people. The making of Kashi Vishwanath Corridor, Mahakal Lok Project, redevelopment of Maa Kamakhya Temple, reconstruction of Juna Somnath Temple and establishment of Ram Temple in Ayodhya are the major highlights of the Modi government. Under the museum grant scheme, the nation's cultural infrastructure has been upgraded by establishing 21 new museums and modernizing 23 existing ones. Over the years,

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर

0: बोले अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार, तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई, डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया। कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

पेश प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने के सुप्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई पर।

वसंत देसाई का जन्म महाराष्ट्र के जिला सावंतवाड़ी के गांव सोनावड़े में 1912 में हुआ। उनका बचपन सिंधुदुर्ग जिले के कस्बा कुडाल में बीता, जो कि महाराष्ट्र के कोंकण का जाना माना प्रदेश है। यहाँ वो अपने मामा के पास पढ़ाई लिखाई के हेतु भेजे गए थे। महाराष्ट्र के इस कोंकण प्रदेश में दशावतारी नाटकों का चलन प्राचीन काल से ही है। इसका प्रभाव वसंत देसाई के बाल मानस पर पड़ना लाजमी था। अनेक नाटकों में वे बतौर अभिनेता और गायक भाग लेने लगे थे। 1929 में अगली पढ़ाई के लिए वे कोल्हापुर पहुंचे। वहां पर इनका परिचय हुआ मराठी और हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ फिल्मकार चित्रपति शांताराम राजाराम वनकुदुरे, जी हां, वी शांताराम जी से, जो प्रभात फिल्म कंपनी के सह संस्थापक थे।

हारमोनियम बजाया करते। एक बार वी शांताराम जी के कानों पर जब ये आवाज पड़ी तो वो चकित हुए और फिर उन्होंने संगीत विभाग में बतौर असिस्टेंट के रूप में वसंत देसाई को भेज दिया। महान संगीतकार गोविंद राव टेंबे के संगीत निर्देशन में प्रभात फिल्म कंपनी ने जो पहली बोलती फिल्म बनाई अयोध्या राजा, उसके वो सहायक संगीत निर्देशक थे। ये फिल्म हिंदी में अयोध्या का राजा नाम से बनी थी। जैसा कि वी शांताराम जी हमेशा किया करते थे, जो भी फिल्म मराठी में बनाते उसका हिंदी संस्करण भी हुआ करता। इस दौर के दिग्गज संगीतकार केशवराव भोले और मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर, इनके भी वसंत देसाई सहायक रहे थे। वी शांताराम की बतौर निर्देशक जो पहली फिल्म थी उसका नाम था पड़ोसी, और मराठी में जो शेजारी नाम से बनी थी, इसके संगीतकार थे मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर। आगे बढ़ते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस प्यारे से गाने के साथ।

वसंत देसाई 1936 के आसपास मुंबई आ गए थे। यहाँ उन्होंने आंध्रयन चिशाड़ा, जो कि एसबी वर्तक लिखित नाटक था, इसका संगीत दिया था। एक और मराठी नाटक छाया को भी उन्होंने संगीत दिया था। वसंत देसाई को बतौर संगीतकार हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक मिला जेबीएच वाडिया की फिल्म शोभा में, साल था 1942। उन्हें सही मायनों में ख्याति प्राप्त हुई इसी साल यानी 1942 में आई फिल्म शकुंतला से। हुआ यूं कि वी शांताराम ने अक्टूबर 1942 में अपनी एक अलग फिल्म कंपनी बनाई, राजकमल स्टूडियोज। इसके बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी शकुंतला। शकुंतला का मुख्य किरदार किया था वी शांताराम की पत्नी जयश्री ने। चंद्रमोहन थे दुष्यंत और स्वयं वी शांताराम जी ने प्रियमवद की भूमिका निभाई थी। कुल 13 गाने थे इस फिल्म में और एक गाना फिल्म के संगीतकार वसंत देसाई ने भी गाया था। फिल्म काफी चली और वसंत देसाई को भी ख्याति प्राप्त हुई। वसंत देसाई का संगीत शास्त्रीय रागों की गरिमा लिए होता था और सहज मधुरता का रसीलापन लिए होता था। दोस्तों, वसंत देसाई मर्मज्ञ संगीतकार थे। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि कमर्शियल फिल्मों में उन्हें सफलता नहीं मिली। वो व्यावहारिक दुनिया से अनभिज्ञ थे, उनकी बारीकियों को वो नहीं समझते थे, इसलिए दुनियावी बातों की तरफ उनका ध्यान कम था। संगीत की बारीकियों की ओर उनका ध्यान मगर बहुत लगा हुआ होता था। उनकी नजर पैनी थी संगीत की तरफ। हीरे को जैसे जौहरी ही पहचानता है, वरिष्ठ संगीतकार

विश्वास को इस हीरे की पहचान थी। विविध भारती के संगीत सरिता में जब वे पधारे थे तो आपको भी जरूर याद होगा, वसंत देसाई की सांगीतिक बुद्धि की सराहना करते हुए उन्होंने बताया था कि आशीर्वाद फिल्म का ये जो गाना है जो लता जी ने गाया था, कैसे उन्होंने शुद्ध निषाद पर समाप्त किया था। आइए सुनते हैं इसी गाने को।

वसंत देसाई का हर गाना अपनी मिसाल आप है। 1950 में आई फिल्म दहेज का ये गाना सुनिए। जयश्री ने ये गाना गाया था, जो कानों में शहद घोलता है।

दोस्तों, वसंत देसाई ने मराठी फिल्मों का भी संगीत निर्देशन किया है। कुल 20 फिल्में उन्होंने की हैं। हर फिल्म का संगीत सुमधुर बन पड़ा है।

उनकी कुछ बहुचर्चित मराठी फिल्में हैं श्यामची आई, मोलकरण, स्वयंवर झाले सीतेचे, लक्ष्मण रेखा, तूच माझी राणी, कांचन गंगा, छोटा जवान, और इसके अलावा संगीत नाटकों को भी उन्होंने संगीत दिया है। आंधळ्यांची शाळा, छाया और देव दीनाघरी धावला।

वसंत देसाई अत्युच्च कोटि के संगीतकार थे। पौराणिक और पारंपरिक फिल्मों का उनका संगीत अमर है। सनन, सनन, सनन।

दोस्तों, किसी संगीत की महफिल में संगीत अपने परमोच्च आनंद लहरों से सबको मुग्ध कर रहा हो और अचानक सितार का तार टूट जाए या बिजली गुल हो जाए। ऐसा ही एक दिन अकस्मात वसंत देसाई के जीवन में आया और उनकी धड़कन का साज थम गया। दिन था 22 दिसंबर सन 1975। वसंत देसाई का संगीत अमर है, जिसके ध्वनि प्रकाश में जीवन के लंबे घने अंधेरे रास्ते भी उजाले से भरे हुए साफ दिखाई देंगे।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने संगीतकार वसंत देसाई पर। शोध स्वर और आलेख अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, देखिए मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
2: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए छुपा रुस्तम फिल्म का ये गाना। आवाजें हैं अलका याग्निक और साथी की।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एसपी वाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। इस गीत को फिल्म का नाम था पत्थर के फूल। अब लीजिए सुनिए आदमी खिलौना है इस फिल्म का गाना। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की।

लीजिए सुनिए अलका याग्निक, उदित नारायण और सबीर कुमार की आवाजों में इस गीत को। फिल्म का नाम है आज के सहनसा।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में प्रेम कहानी फिल्म का एक गाना। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है कार्यक्रम एक फनकार। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में कुछ गाने। कार्यक्रम के आरंभ में दीजिए सुनिए दो रास्ते फिल्म का ये गीत, आवाज लता मंगेशकर की है।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में कुछ चुनिंदा हिट सुपर हिट फिल्मी नगमे। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 11 बजने को है। आपसे कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवार्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरीटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट श्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी The news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Nice, marking the beginning of his six-day visit to France and Slovakia. Mr. Modi was accorded a warm welcome by senior French dignitaries. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with his Slovakian counterpart Robert Fico in Bratislava. After concluding his Slovakia visit, Prime Minister Modi will return to France to take part in the G7 summit in the eastern part of the country in Auvergne on the 16th and 17th of this month. The White House today said US President Donald Trump will meet Prime Minister Modi on Wednesday during the G7 summit. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. The five-day BRICS Agriculture Conference concluded at Indore in Madhya Pradesh today. At the end of the conference, the Indore Declaration was adopted unanimously. The declaration outlines key decisions on food security, farmers' welfare, climate-friendly farming, agricultural trade and use of smart technology in farming. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan said that BRICS nations represent nearly half the world's population and contribute around 42% of global agricultural output. He said, Indore Declaration is not just a document of agreement, but a symbol of the collective will and shared responsibility of BRICS nations. Union Home Minister Amit Shah today directed the High-Level Committee on Demographic Change to study the shift in population structure in border districts. Chairing the meeting of the committee, Mr. Shah also asked the panel to visit border areas, metro cities and industrial towns for an assessment of changes because of illegal migration and other unnatural causes. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force crashed at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning during a routine sortie, claiming the lives of five air warriors. The Indian Air Force IAF has expressed grief at the loss of the lives. The IAF said that a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. Defence Minister Rajnath Singh has also expressed grief at the loss of five air warriors. The government has appointed Lieutenant General Dheeraj Seth as the next Chief of the Army Staff with effect from 30th of this month. He is presently serving as the Vice Chief of the Army Staff. The present Chief of the Army Staff, General Upendra Dwivedi, is retiring from service the same day. Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that tensions arising from the conflict involving Iran, the United States and Israel have increased challenges in the global petroleum sector, leading to a rise in crude oil prices. Speaking to the media at Ludhiana in Punjab, Mr. Puri asserted that the centre has, however, taken measures to ensure that Indian citizens are not adversely affected by the increase in fuel prices. As part of the celebrations leading up to the International Day of Yoga IDY 2026, the Ministry of Ayush, in collaboration with the Morarji Desai National Institute of Yoga and Hebbled, will organize a landmark global online yoga event tomorrow. The online yoga session will be held from 6:15 a.m. to 7:35 a.m. and is expected to witness participation from more than 130 countries. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in a rain-affected first one-day international of the three-match series in Dharamshala, Himachal Pradesh. Chasing 195 runs, India overhauled the target in 22.5 overs. Indian skipper Shubman Gill scored unbeaten 84 of 66 balls. Earlier put into bat, Afghanistan were bowled out for 194 in 24.5 overs. And that is the end of this news bulletin.
3: यह आकाशवाणी का सहज भाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रांची के 11:10 और 11 हुए हैं। यहीं संपन्न होती है हमारी आज की सभा। श्रोताओं, कल प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे अपने दैनिक कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।